0: दादा, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ ऐसे और गीतों के बारे में जानना चाहते हैं जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित हैं, मगर उनका जन्म उस पर्टिकुलर राग में क्यों किया आपने? क्या लोकेशन थी, क्या सिचुएशन थी, क्या वजह थी, क्या कारण थे? ऐसे कुछ गीतों का रेफरेंस दीजिए।
1: ये लता जी ने बड़ा सुंदर ढंग से उन्होंने गाया है इसको। ये सीवी साहब की फिल्म फकीरा का गाना है।
0: जी वाह वाह।

0: क्या धुनी इसने यार रोशन साहब ने बनाई थी, वाह वाह, इस राग में मुझे ख्याल।
1: दादा कौन सा राग है ये?
0: भीमपलासी।
1: अरे वाह, सुनाइए।
0: भीम साहब का गाना था, आई थिंक रोशन साहब का ही था, मेरा दर्द न जाने कोई।
1: हाँ रोशन जी गाना था।
0: कहीं ना कहीं वो ऐसे कंपोजर थे यार, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जो है ना,
1: जी जी,
0: चाहे अनचाहे आ ही जाता है। हमारे तमाम सीनियर्स जो हमारे संगीत निर्देशक हैं ना,
1: जी जी,
0: क्या उन्होंने काम किया है, मास्टर श्याम सुंदर जी, नौशाद साहब, मदन साहब, रोशन जी, क्या और वरुण साहब,
1: लोग तो धरोहर बन गए हैं संगीत।
0: हाँ लाजो, और सब अपनी अपनी ऐसी पहचान बना के गए हैं,
1: राग एक ही रहा और अलग अलग कंपोजिशन बनते गए। कमाल,
0: एक भैरवी को ही ले लीजिए ना आप, शंकर जैक्सन, नौशाद साहब,
1: कितने असंख्य गाने बन गए।
0: हाँ, उस्ताद झंडे खान ने तो बारह के बारह गाने चित्रलेख हमें भैरवी बनाए थे।
1: हाँ, और वही राग मगर सबका स्वरूप अलग है, कितनी बड़ी बात है।
0: तो ये वो लता जी
1: बलासी ने आपको बता रहे थे।

0: घुंघरू की तरह इस श्रृंखला में आज आपने सिने जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन से प्रसिद्ध लेखक और गीतकार राजेश जौहरी की बातचीत सुनी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

FM 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। सवेरे के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज है भारतीय प्रसारण दिवस और इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। श्रोताओं, भारत में रेडियो और दूरदर्शन ने देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के सबसे प्रभावी माध्यम के रूप में प्रसारण सेवाओं ने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा है। इन्हीं सेवाओं के महत्व को सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को भारतीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा भारत में पहली नियमित रेडियो प्रसारण सेवा शुरू की गई थी। यह दिन भारतीय मीडिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: शुदा, जैसा कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को मुंबई से हुई, इसके बाद कोलकाता से भी प्रसारण आरंभ किया गया। प्रारंभिक वर्षों में प्रसारण का कार्य इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा किया जाता था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण ये कंपनी अधिक समय तक नहीं चल सकी। इसके बाद भारत सरकार ने प्रसारण सेवा का संचालन अपने हाथों में ले लिया और वर्ष 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना की। वर्ष 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। बाद में 1956 में इसे लोकप्रिय नाम आकाशवाणी मिला। श्रोताओं, दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुई और धीरे धीरे ये देश का प्रमुख टेलीविजन प्रसारण माध्यम बन गया।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओ, स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रसारण सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ। पहले रेडियो ही समाचार, कृषि, शिक्षा, संगीत और सरकारी योजनाओं की जानकारी का मुख्य माध्यम था। बाद में दूरदर्शन ने इस कार्य को और अधिक व्यापक बनाया। आज भारत में एफएम रेडियो, डिजिटल रेडियो, डीटीएच, केबल टीवी, इंटरनेट, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रसारण सेवाएं लोगों तक पहुंच रही है। श्रोताओं, डिजिटल तकनीक ने प्रसारण को अधिक आधुनिक, तेज और प्रभावी बना दिया है। अब लोग अपने मोबाइल फोन पर भी समाचार, रेडियो प्रोग्राम और टीवी चैनल्स आसानी से देख और सुन सकते हैं। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां रेडियो की पहुँच ना हो। भारत की बड़ी आबादी गाँवों में रहती है। रेडियो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का एक सस्ता और प्रभावी माध्यम है। किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा खेती की नई तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई, मौसम की जानकारी, पशुपालन और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रसारित की जाती है। इससे किसानों को आय बढ़ाने और आधुनिक खेती अपनाने में सहायता मिलती है।

शुद्धम भारतीय प्रसारण का देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने का कार्य

करता है। चुनाव, सरकारी योजनाएं, मौसम की जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी सलाह और राष्ट्रीय महत्व की खबरें प्रसारण माध्यमों से पूरे देश तक पहुंचती है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी भारतीय प्रसारण का काफी महत्व है। भारतीय प्रसारण के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विज्ञान, इतिहास, भाषा और कृषि संबंधी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों का स्वस्थ मनोरंजन करते हैं। भारतीय संस्कृति और भाषाओं के संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका है। देश की विभिन्न भाषाओं, लोकगीतों, लोक कलाओं, त्योहारों और परंपराओं को प्रसारण माध्यमों के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है। प्रसारण माध्यम पूरे देश के लोगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देशवासियों में एकता, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावनाओं को मजबूत करता है।

श्रोताओं, आपदा और आपातकाल में भी प्रसारण माध्यमों का काफी योगदान और महत्व रहता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, महामारी और अन्य संकटों के समय प्रसारण माध्यम लोगों तक आवश्यक सूचना शीघ्र पहुंचाते हैं। कोविड 19 महामारी के दौरान रेडियो, दूरदर्शन और अन्य प्रसारण माध्यमों ने लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देश, सरकारी घोषणाएं और जागरूकता संदेश पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रोताओं, डिजिटल इंडिया, 5G, AI, इंटरनेट, रेडियो और ऑनलाइन प्रसारण जैसी आधुनिक तकनीकों के कारण भारतीय प्रसारण का भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। आने वाले समय में प्रसारण सेवाएं और अधिक तेज, प्रभावी, इंटरैक्टिव तथा जन सुलभ होंगी। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और शासन व्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। बदलती तकनीक के साथ भारतीय प्रसारण निरंतर प्रगति कर रहा है और भविष्य में भी देश के विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। इसलिए हमें भारतीय प्रसारण दिवस के महत्व को समझते हुए विश्वसनीय, जिम्मेदार और सकारात्मक प्रसारण संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ अब कार्यक्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का ये पहला गीत आपने सुना सलामी फिल्म से, कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, संगीत था नदीम श्रवण का। इसी गीत संगीत रचना में अगला गीत सुनते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज में दीवाना फिल्म से। उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हम हो गए आपके। लीजिए इस फिल्म का ये गीत सुनते हैं उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

शुदों ये गीत अभी आपने सुना इश्क विश्क फिल्म से अलीशा चिनॉय और कुमार शानू की आवाज़ में। गीत के बोल थे समीर के, संगीत था अनु मलिक का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं तुम्हारी सुलू फिल्म से गुरु रंधावा की आवाज़ में।

शुदो, इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत कार्यक्रम में ही समाप्त होता है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर कर

0: रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मनलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और यह दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
5: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है।

0: 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझू में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
2: के में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई न हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जंतर मंतर पर फिर पथराव, 2 एसीपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के ठीक 8:15 हो रहे हैं। लीजिए पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे गुलाम अली की गाई गजलें।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुनी गुलाम अली की गायी गजलें। इसी के साथ हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है एनसीआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीन बाई मानिकपुरी जी ने।
2: लिखते हैं, वचन बोलने और कर्म करने की शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, लेकिन ध्यान रखें कि मन वचन कर्म से किसी का अहित न हो।
1: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, इसके लिए हमारा आभार। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, संतोष श्रीवास और शिव कुमारी रामदुलारी जी ने लिखा है।
1: अजीत जी, विमलेश जी, जय जोहार। मैं उमंग कार्यक्रम को लगातार सुन रहा हूँ
2: जी,
1: और मेरा प्रयास है और अधिक श्रोताओं को इस कार्यक्रम से जोड़ने का।
2: धन्यवाद आपके इस प्रयास के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र से डॉक्टर दिनेश काले जी का। वो लिखते हैं,
1: सर्वप्रिय

0: ये विमलेश जी और अजीत जी, सप्रेम अभिवादन। आप दोनों की प्रस्तुति में एनसीईआरटी का प्रोग्राम बहुत ही ज्ञानवर्धक हो जाता है। इसमें एक विशेष बात ये भी है कि आपका प्रोग्राम बहुत से स्टेशनों से ऑन एयर आता है, तो हर सुनने वाले को किसी भी स्टेशन पर मिलता ही है। आपका पुनश्च आभार एवं आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य की मैं शुभकामनाएं करता हूँ। आप दोनों और आपकी टीम को असीम दुआएं।
1: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और ईमेल भेजने के लिए।
0: अगला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल और गांव खिंदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी का।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में।
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा भारत के कुछ अनूठे मेलों और उत्सवों पर हो रही है।
1: इसी क्रम में आज हम बात करेंगे एक और उत्सव की। आइए आज चलते हैं झारखंड राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में। वहाँ का एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है बाहा। अजीत जी, श्रोताओं को पहले ये तो बता दें कि बाहा का अर्थ क्या होता है।
0: विमलेश जी, बाहा या बाहा शब्द संथाली और मुंडारी जनजातीय भाषा का शब्द है
1: जी।
0: तो इसी तरह का एक उत्सव है बाहा
1: जी।
0: ये उत्सव साल और महुआ के पेड़ों में फूलों के खिलने के समय मनाया जाता है
1: जी।
0: ये समय वसंत ऋतु का है और वहाँ की जनजातीय परंपरा में इसे नववर्ष माना जाता है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि ये उत्सव मार्च और अप्रैल के बीच पूर्णिमा के आसपास मनाया जाता है, क्योंकि इस समय साल और महुआ के पेड़ फूलों से लद जाते हैं। ये उत्सव पूरे धूमधाम से 2 से 3 दिनों तक मनाया जाता है। अजीत जी, अब प्रश्न ये है कि उत्सव कैसे मनाया जाता है।
0: विमलेश जी, इस अवसर पर गांव के युवा पुजारी या पहान या नायके के साथ जंगल जाते हैं
1: जी,
0: और वहाँ से साल और महुआ के फूल लेकर आते हैं। फिर उसे एक विशेष स्थान पर चढ़ाते हैं जिसे जाहिर स्थान कहा जाता है।
1: जाहिर स्थान का अर्थ होता है पवित्र स्थान। ये जगह कोई मंदिर या विशिष्ट इमारत नहीं होती है, बल्कि एक प्राकृतिक उपवन होता है। ये गांव के बाहर जंगल या खेतों के किनारे किसी शांत जगह पर होते हैं और उस दिन मरांगबुरु यानी ईश्वर या जाहिर आयु की पूजा की जाती है। इसके बाद होता है शानदार सामूहिक कार्यक्रम जिसमें स्त्री पुरुष फूलों से सजकर मांदल, ढोल, नगाड़े और बांसुरी की धुन पर नृत्य करते हैं।
0: इस दिन एक और बड़ी रोचक बात होती है, लोग रंगों से नहीं लेकिन सादे पानी से होली खेलते हैं
1: जी।
0: इसलिए इस उत्सव को फूलोत्सव के साथ साथ संथालों की होली भी कहा जाता है
1: जी।
0: सादे पानी में कभी कभी फूलों के रंगों का भी इस्तेमाल होता है।
1: इस समय लोग अपने घरों को लीप पोत कर साफ सुथरा करते हैं और दीवारों पर फूलों की रंगोलियां बनाते हैं। श्रोताओं, जनजातीय समाज में पर्यावरण संबंधी चेतना बहुत अधिक है और वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रकृति के प्रति जागरूक हैं। बाहा उत्सव प्रकृति पूजा और पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस उत्सव में लोग एक दूसरे को फूल देते हैं और अच्छी फसल, समृद्धि, सुख शांति और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी झारखंड के संथाली समुदाय के विशेष उत्सव बाहा की
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बाहा उत्सव में मुख्य रूप से किन पेड़ों के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है न्याय की कुर्सी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसके द्वारा राजा विक्रमादित्य का प्रशासन और मुख्य रूप से उनकी न्यायप्रियता का उल्लेख किया गया है। और ये भी चर्चा की गई है कि राजा की न्यायप्रियता का बाद की पीढ़ियों पर क्या असर पड़ा।
2: नमस्कार साथियों, बात उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी की है। इस नगरी को अवंती या अवंतिका भी कहते थे। नगर के बाहर एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वे बड़े उत्साहित हैं। भाग दौड़ हो रही है।
3: भाग माधव भाग, अरे मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कोई मुझे पकड़ के दिखाओ।
4: चलो पकड़ते हैं माधव को। पकड़ लेंगे।
2: और ये पकड़ लिया। भाग दौड़ में एक लड़का मैदान के बाहर खड़े एक टीले पर चढ़ने लगा। टीले के ऊपर पत्थर की एक बड़ी सी शिला थी। लड़का टीले पर चढ़ते हुए

0: फिसल कर गिर गया।
1: बस चढ़ गया। अरे नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब भी चढ़ूंगा, मैं चढ़ूंगा।
0: लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे पत्थर की शिला पर चढ़ गया और उस पर बैठ गया। तब तक उसके दूसरे मित्र भी वहाँ पहुँच गए। शिला पर बैठते ही उस लड़के के मन में एक नया और मजेदार विचार आया। वो शिला पर एक राजा की तरह बैठ गया और शान से बोला,
1: ये मेरा सिंहासन है और तुम सब हो मेरे दरबारी।
2: जी महाराज, जी महाराज।
1: तुम अपनी अपनी याचना लेकर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा न्याय करूँगा।
3: यह खेल तो बहुत मजेदार है।
0: बच्चों को ये बात पसंद आ गई। अब वे रोज उस शिला के पास जमा हो जाते। धीरे धीरे ये खेल इतना लोकप्रिय हो गया कि प्रायः पूरा गांव वहाँ जमा हो जाता था, बच्चों के खेल का आनंद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि दूसरे गांव के दो किसानों के बीच झगड़ा हो गया। मामला गंभीर था, पंचायत में भी फैसला नहीं हो पा रहा था। गांव वालों ने सोचा क्यों ना वहीं चला जाए। टीले के पास दरबार लगा हुआ था।
1: कहो, तुम्हारा प्रसंग क्या है?
4: महाराज, ये मेरा मित्र धर्मपाल है।
5: जी महाराज।
4: हमारा विवाद एक आम के पेड़ को लेकर है। उस पेड़ को मैंने लगाया है महाराज, लेकिन धर्मपाल कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि इसे मैंने लगाया है।
1: तो ये बात है, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है जो कहे कि ये वृक्ष तुमने लगाया है?
4: नहीं महाराज, मुझे पेड़ लगाते हुए किसी ने नहीं देखा था।
1: अच्छा, तो ये प्रकरण है, तो मेरा निर्णय है कि उस आम के वृक्ष को काट दिया जाए, आधा आधा दोनों में बांट दिया जाए।
4: नहीं नहीं महाराज, पेड़ को ना काटें, पेड़ को ना काटें महाराज, धर्मपाल को ही दे दें। मुझे बहुत दुख होगा यदि उसे काटा जाए।
1: तो अब मेरा अंतिम निर्णय सुनो, पेड़ विष्णुदत्त का ही है। पेड़ के प्रति वही इतना प्रेम रख सकता है जिसने उसे रोपा हो, सींचा हो और देखभाल करके बढ़ाया हो। सभा समाप्त होती है।
5: सचमुच इस लड़के में साक्षात प्रज्ञा वास करती है।
2: महाराज की जय, महाराज की जय।
0: तो सुना आपने साथियों, धीरे धीरे टीले वाले न्यायालय की चर्चा चारों ओर फैल गई और भीड़ की भीड़ वहाँ न्याय के लिए आने लगी। ये समाचार राजा तक भी पहुँचा। उसे बड़ा क्रोध आया, गरज कर बोला,
6: उसका ये तो साहस कि मेरे राज्य के लोगों का न्याय करे। अब स्वयं जाकर वहाँ देखेंगे।
0: राजा वेश बदलकर अपने दरबारियों के साथ वहाँ पहुँचा। खेल चल रहा था।
7: आज मैं राजा बनूंगी।
8: आज मैं राजा बनूंगा।
9: आज तो मैं राजा बनूंगा।
10: आज तो मैं ही राजा बनूंगा।
1: नहीं नहीं, आज मैं बनूंगा।
7: न्याय के लिए लोगों को प्रस्तुत किया जाए।
5: जी मैं रामलाल जी, मेरा प्रसंग है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने रात को मेरी फसल काट ली है।
7: क्या उन्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा है?
5: जी मेरे कुछ और पड़ोसियों ने देखा है।
8: हमने तो देखा है।
11: मेरी पड़ोसन ने भी देखा है।
7: सबको सुनने के बाद मेरा निर्णय है कि रामलाल को सारी फसल लौटा दी जाए।
5: महाराज की जय हो।
12: जय हो।
5: महाराज की जय
12: हो।
5: जय हो। जय हो।
0: न्याय की ऐसी बुद्धि देखकर वो चकित रह गया। लेकिन तभी किसी दरबारी ने बताया,
4: महाराज महाराज, जिस लड़के की चर्चा सुनकर हम यहाँ आए थे वो तो

0: बीमार पड़ा है और उसकी जगह पर ये लड़की बैठी है। मैं तो कई बार यहाँ छानबीन करने आ चुका हूँ महाराज, यहाँ बच्चे बदलते रहते हैं। हाँ, लेकिन महाराज न्याय सच्चाई से होता है।
1: तो क्या इस शिला में ही कोई चमत्कार है? इस शिला को खोदकर निकाल लिया जाए और मेरे महल में स्थापित किया जाए, हम इसी शिला पर बैठकर न्याय करेंगे।
2: शिला जब खोदकर निकाली गई, तो पता चला कि वो एक बहुत सुंदर सिंहासन था। उसके चारों पायों पर देवदूतों की सुंदर प्रतिमाएं जड़ी हुई थी। सिंहासन राजमहल में लाया गया। विद्वानों ने बताया कि ये कोई मामूली सिंहासन नहीं है, ये सदियों पुराना न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी सिंहासन पर बैठकर वे न्याय करते थे। सिंहासन राज दरबार में लगा दिया गया। अगले दिन राजा दरबार में आए और उस सिंहासन की ओर बढ़े कि तभी आवाज आई,
3: ठहरो, न्याय के इस सिंहासन पर बैठने से पहले ये पता कि क्या तुमने कभी चोरी नहीं की है?
1: चोरी?
2: राजा ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। पता चला कि ये आवाज सिंहासन के पाए में लगी हुई एक मूर्ति की थी। राजा ने लज्जा से सर झुका लिया, बोला,
1: ये सच है, मैंने एक बार अपने कर्मचारी की भूमि हड़प ली थी।
3: तुम्हें 3 दिनों तक पश्चाताप करना होगा और उसकी भूमि लौटानी होगी।
2: इतना कहकर वो मूर्ति आकाश की ओर उड़ गई। राजा ने 4th दिन फिर सिंहासन के पास आया। वो बैठने ही जा रहा था कि सिंहासन के पाए में लगी दूसरी मूर्ति बोल उठी,
3: ठहरो, सिंहासन पर बैठने से पहले ये बताओ कि क्या तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
1: झूठ?
2: राजा सकपकाया और पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा ने फिर उपवास और पूजा पाठ किया। तीसरी बार वो फिर सिंहासन पर बैठने के लिए हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। वो बस बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने पूछा,
3: बैठने से पहले ये बता कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई है?
1: चोट? वो
2: तीसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। अब अगले दिन आज राजा ने ठान लिया कि वो सिंहासन पर अवश्य ही बैठेगा। वो बैठने ही वाला था कि 4th मूर्ति बोल उठी,
3: ठहरो, जो बच्चे इस सिंहासन पर बैठते थे वे भूले भाले थे, उनके मन में कोई कलुष नहीं था। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो।
2: राजा को क्रोध आ गया,
1: अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता? मैं राजा हूँ, मुझसे अधिक धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा? मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। मैं बैठूंगा।
2: वो दृढ़ कदमों से सिंहासन की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसी समय 4th मूर्ति पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। और राजा उस सिंहासन पर बैठ ही

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम न्याय की कुर्सी। इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम लालच।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा बताया गया है कि लालच कितनी बुरी बला है।
2: अमृतवाला आ गया, क्या खूब रंग जमा गया, जो पिए मेरा पानी रहे गर्मी ना गिरानी, पिए मेरा ठंडा पानी। अमृत वाला आ गया, अपनी प्यास बुझाओ और थकान को दूर भगाओ। अमृत वाला आ गया, अमृत वाला आ गया।
3: अरे मशकू भाई,
4: जी जनाब,
3: जरा यहाँ आओ, इतनी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, गला सूख रहा है।
4: लीजिए जनाब।
3: लाइए। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया, प्यास बुझी। अच्छा ये लो, पैसे रखो।
4: जनाब थोड़े ज्यादा दे दिए, ये बाकी रख ले।
3: रखो रखो।
4: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया,
3: गर्मी में पानी पिलाया तुमने। रखो,
4: शुक्रिया
3: शुक्रिया।
2: ये अमृत वाला आ गया।
5: ये जानी पहचानी आवाज उस अधेड़ उम्र गरीब आदमी की होती थी, जो चमड़े की बड़ी सी मश्क पीठ पर लादे शहर की सड़कों पर पानी बेचा करता था। वो दिन भर यूं ही चिल्लाता रहता, तब कहीं जाकर चार पैसे कमाता था। उसका असल नाम तो शायद ही किसी को मालूम हो, लेकिन पेशे की निस्बत से लोग उसे मशकूब कहकर पुकारते थे। एक दिन मशकूब मायूसी के आलम में खड़ा कुछ सोच रहा था कि उसकी नजर एक अजनबी मुसाफिर पर पड़ी। मुसाफिर के धूल में अटे कपड़ों से लगता था कि वो एक लंबी मुसाफत तय करके आया है और खूब थका हुआ भी है। मुसाफिर ने मशकूब की तरफ देखा। मशकूब दिल ही दिल में खुश हुआ।
6: चलो एक ग्राहक तो हाथ लगा।
3: मशकूब भाई।
4: जी जनाब।
3: प्यास बहुत लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है।
4: अरे तो क्या हुआ, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है, अल्लाह मियां खुश होगा। आप पानी पीजिए पीजिए पीजिए।
3: लाओ। बस बस,
4: लगता है कहीं बाहर से आए हैं, यहाँ के तो नहीं लगते आप।
3: सही कहा मशकूब भाई।
4: रहने का कोई ठिकाना है क्या?
3: अभी तक तो कुछ नहीं।
4: अरे तो आप एक काम करें, जब तक चाहें इस गरीब के गरीब खाने पे आप रह सकते हैं।
3: अरे नहीं नहीं
4: नहीं, नहीं आप आइए आइए जनाब, आइए आइए आइए।
3: भाई
4: जी,
3: आप बड़े मेहरबान आदमी हैं।
4: क्या बात करते हैं,
3: आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है।
4: इसमें नेकी की क्या बात है?
3: आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ।
4: ये तो मेरा फर्ज था।
3: चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको एक मुजर्रब नुस्खा बता दूँ।
4: क्या क्या कहते हैं आप, मुजर्रब नुस्खा?
3: ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे वो बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा।
4: अच्छा,
3: उसकी बीमारी ख्वाह कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो।
4: ये तो बड़ा नेक काम है।
3: अब ये लीजिए।
4: ये किताब, ये किताब किस लिए?
3: इस किताब में उस दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है।
4: अच्छा,
3: हिदायत पर पूरा पूरा अमल कीजिए।
4: जी जी जी जनाब, मैं सभी हिदायत पर पूरा पूरा अमल करूँगा।
3: और याद रखिए कि किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत ना लीजिए।
4: तौबा तौबा तौबा,
3: वरना दवा का असर जाता रहेगा।
4: जी समझ गया, कभी गरीब से पैसे ना लूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस नुस्खे के लिए मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
6: अरे भाई, हकीम साहब की दवा में तो कमाल का असर है।
7: जनाब
8: लाजवाब इंसान है वो।
6: क्या बात करते
8: हैं, क्या बात, बहुत अच्छे इंसान।
5: मशकूब रोज बरोज खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया और शादी करके बड़े आराम से जिंदगी बसर करने

0: जूं जूं मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगा और वो सोचने लगा,
1: गरीबों को मुफ्त दवा देकर मैंने गलती की है। हाँ, सख्त गलती की है। अगर मैं ऐसी गलती ना करता तो आज शहर का सबसे दौलतमंद शख्स बन गया होता। ये तो बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे अमीरों से ही नहीं बल्कि गरीबों से भी दवा के पैसे लेने चाहिए। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा ही करूंगा।
0: अगले दिन एक बेहद गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया।
1: पैसा लाए हो?
2: यकीन मानिए, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है।
3: मुंह उठाए खाली हाथ चले आते हो?
2: खुदा के लिए, खुदा के लिए मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए। ये मेरा इकलौता बच्चा है हकीम साहब। खुदा के वास्ते इसकी जान बचा लीजिए हकीम साहब।
3: चलो बच्चे को उठाओ, उठाओ बच्चे को, बाहर निकलो।
2: मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए।
3: बच्चे को गोद में उठाओ।
2: बच्चे की जान बचा लीजिए हकीम
3: साहब। चलो निकलो बाहर, निकलो।
2: मर जाएगा ये।
3: उठो,
2: मर जाएगा हकीम साहब।
3: चलो निकलो।
0: गरीब बेचारा तो मायूस लौट गया, लेकिन उसके साथ ही हकीम की दवाओं का असर भी फौरन जायल हो गया। दवा को बेअसर पाकर वो किताब तलाश करने लगा। किताब गायब हो चुकी थी। मरता क्या ना करता, पुरानी मश्क की मरम्मत करवाई। अब फिर वही मश्क थी और वही मशकूब। शहर की वही सड़कें और मशकूब की वही सदाएं।
4: अमृत वाला आ गया। क्या हो?

0: दिन भर शहर की सड़कों पर चलते चलते वो बहुत कमजोर हो गया, लेकिन मश्क पीठ पर लादे वो बादस्तूर सड़कों पर घूमता रहा। एक दिन वो हस्बे मामूल गर्दालूद सड़कों पर चक्कर लगा रहा था कि दूर ही से उसने एक सांडनी सवार को देखा। मशकूब उसकी तरफ बढ़ा तो मुसाफिर ने कहा,
1: मशकूब भाई
2: जी,
1: मैं एक बेयारो मददगार मुसाफिर हूँ। रहने का कोई ठिकाना नहीं, अंधेरा छाने को है। एक रात के लिए अगर आप मुझे अपने घर ठहरने की इजाजत दें तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूंगा।
2: जरूर
1: भाई
2: जी,
1: आप बहुत नेक आदमी हैं। आपकी मेहमान नवाजी इनाम की मुस्तहिक है।
2: क्या बात करते हैं,
1: मगर इस वक्त पेश करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं।
2: अरे तो क्या हुआ?
1: खैर, जो कुछ भी है वो मैं आपको जरूर दूंगा।
2: क्या क्या कहते हैं आप?
1: मैं एक कीमियागर हूँ और सोना बनाने की तरकीब जानता हूँ।
2: अच्छा,
1: ये राज मैं आपको भी बता दूंगा, मगर याद रखिए कि सोना एक कौमी दौलत है। कौम के करोड़ों गरीब मजदूर जब मिलकर काम करते हैं तो देश की यही मिट्टी सोना उगलने लगती है। सोने को पैदा करने वाले दरअसल गरीब लोग हैं, इसलिए आपको भी अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद अपनी बाकी दौलत को गरीब आवाम की भलाई के कामों में लगाना होगा।
2: जी जी जी जनाब।
1: अब लीजिए ये किताब।
2: ये किताब किस लिए?
1: सोना बनाने के राज। मैं आपकी नजर करता हूँ, इसे संभाल कर रखिए।
2: जी समझ गया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ताउम्र आपका एहसान मंद रहूंगा।
0: उसी रात मुसाफिर और मशकूब ने मिलकर काम किया और सोने की कुछ ईंटें भी तैयार कर ली। सोने की ईंटों को देखकर मशकूब हैरत से बुत बना खड़ा रहा। मुसाफिर के चले जाने के बाद लालच ने एक बार फिर उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। कुछ ही अरसे बाद जब मशकूब

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। राज्य में जनवरी 2025 के बाद 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए। प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक

0: मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, साथ ही ईमानदारी से व्यापक चर्चा की जानी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और नीट के मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए सरकार का साथ दे।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से 3 महीने पहले शुरू किया गया संबल सखी अभियान महिला सशक्तिकरण का जन आंदोलन बन चुका है। श्री शर्मा कल शाम मुख्यमंत्री निवास पर संबल सखी यंग प्रोफेशनल से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संबल सखियों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प संबल सखियों के समर्पण से ही साकार होगा। मुख्यमंत्री ने संबल सखियों से संवाद करते हुए उनके विचार भी जाने। प्रदेश में जनवरी 2025 के बाद 1,56,000 से ज्यादा नए जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए हैं। साथ ही गिव अप अभियान के तहत करीब 93,00,000 सक्षम लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिव अप अभियान गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। श्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लगभग 4,46,00,000 लाभार्थियों की सीमा निर्धारित है। इस सीमा के पूरी हो जाने के कारण नए पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में नवंबर 2024 से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। श्री गोदारा ने बताया कि ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा उपलब्धियों में से एक है जो गिव अप अभियान के कारण संभव हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों से परामर्श कर इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इससे गंभीर एनीमिया की स्थिति को माइल्ड एनीमिया में बदला जा सकेगा और गर्भवतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए चलाए गए 5 दिन के अभियान के दौरान ये तथ्य सामने आया कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लक्षणों में अधिकतर एनीमिया से संबंधित है। श्रीमती राठौर ने कल स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में कम प्रगति वाले करौली, फलौदी, कोटपुतली बहरोड, जोधपुर, बालोतरा, खैरथल तेजारा, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर और डिग्स

0: जिले के सीएमएचओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। प्रदेश के सहकारी भंडारों को विभिन्न मापदंडों के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सभी महाप्रबंधकों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। शासन सचिव ने कल जयपुर में सहकारी भंडारों की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें भंडारों की मासिक रैंकिंग जारी करते हुए उन्होंने बताया कि अजमेर भंडार विभिन्न मापदंडों में पहले स्थान पर रहा है, वहीं बीकानेर दूसरे और कोटा तीसरे स्थान पर रहा है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 1927 में आज ही के दिन भारतीय प्रसारण कंपनी के अंतर्गत बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। 8 जून 1936 को भारतीय प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गई। ये दिन भारत के विकास, शिक्षा के प्रसार और सांस्कृतिक संरक्षण में प्रसारण की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। प्रसारण ने भारत के विकास में अहम योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रेडियो सूचना प्रसार और एकता को बढ़ावा देने का एक शक्तिशाली माध्यम था। स्वतंत्रता के बाद इसने ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता, स्वास्थ्य जागरूकता और कृषि ज्ञान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को सार्थक रूप से साकार करते हुए जनता को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने का काम कर रहा है। प्रदेश में मॉनसून के सक्रिय होने से कई जिलों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बारा, बूंदी, दौसा, झालावाड़, कोटा, पाली, राजसमंद और टोंक जिलों में कहीं कहीं भारी तो बारा जिले में अति भारी बरसात हुई। बांसवाड़ा में 7 इंच पानी बरसा। ब्यावर, भीलवाड़ा और अजमेर में तेज बरसात हुई। पाली में विभिन्न स्थानों पर तेज बारिश बरसने से झरने बहने लगे हैं। जालौर और जयपुर में भी रुक रुक कर बरसात का दौर जारी रहा। हनुमानगढ़ में मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तेज बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिले के कई स्कूलों में आज अवकाश घोषित किया गया है। जोधपुर में भी तेज बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। बाड़मेर के कुछ इलाकों में मध्यम से तेज पानी बरसा। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: तीसरे पहर मौसम का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराईं और बरसात का दौर शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान जिला मुख्यालय के अलावा चौहटन, धनाऊ और सेड़वा समेत कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हुई। शिव इलाके में तेज आंधी के चलते बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस बीच किसानों में खुशी की लहर है। वहीं तापमान में गिरावट आने से लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत मिली है। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर ने आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का और कई अन्य जिलों में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। केंद्र के अनुसार आज बांसवाड़ा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर और उदयपुर में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और अति भारी बरसात की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, नीट पेपर लीक मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा के लिए तैयार। राज्य में जनवरी 2025 के बाद 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़े गए। प्रदेश में उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रबंधन के लिए मिशन मोड पर काम करने के निर्देश। और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, आज 12 जिलों में अति भारी बरसात का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा की आवाजों में रांझना फिल्म का गाना। गीतकार हैं इरशाद कामिल और तर्ज या रहमान की।

0: पूरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने दिन लोग किया करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पांच गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बद्दू।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
4: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए,
7: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश जबड़िया जोड़ी फिल्म से राजा हसन, देवनेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजें हैं, शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची के बोल, और धुन बनाई है तनिष्क बागची ने।
8: तोहरी लच के जब कमरिया सारा जिला ही।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे राजा हसन, देव नेगी, प्रवेश मलिक और मोनाली ठाकुर की आवाजों में जबरिया जोड़ी फिल्म का गाना। गीतकार थे शब्बीर अहमद और तनिष्क बागची और संगीतकार थे तनिष्क बागची। इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں خیالوں میں
1: दोस्तों आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
2: आए आए सुल्तान इब्न सुल्तान इब्न सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
3: मां भाग रही तू मैं काले से डर गए क्या?
4: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें काले हैं तो क्या

0: हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्जाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, सुनो साहब, ओ भाई सुनो। अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम?
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा।
4: बाप

0: रुपया।
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है। रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है ना।

ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।

ஏன்

0: ताशा बदकम्मा दिल का ताशा बदकम्मा बदकम्मा
1: यंकन्ना
0: बदकम्मा बदकम्मा
2: बदकम्मा
3: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
4: वनकम जी
1: ओ पहुंचिए ना
4: अयो एक मिनट टाइम ना दीजिए खिड़की बंद करना
1: क्या है
4: खिड़की बंद करना जी
1: क्यों
4: ये वो बड़ा बड़ा आंख खोल के देखता ना
1: देखने दो सुनने दो जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है
4: आइयो यो पहला बोलना ना ऐसा बात डाई बोला तुम आना गाना गाना आना
5: तुम नहीं गाना तुम जाना हम गाना
4: ये हम जाना तुम गाना बाप का राज है या बोला ये हम तेरा गोला बनाना गोला या ताली दे रहे हैं गाना गाना
6: चल
4: चल तुम बदाना
3: दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे फिल्म पड़ोसन का संगीत काफी लोकप्रिय हुआ था संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन पहले ये गाना सुन लेते हैं इसके बाद हम आपको एक

0: 무엇인가
1: 으담
2: 아요
1: 으담
2: 나
1: 으담 담 담 록

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಚೋಡಗನ ಜಿ ಎಕ ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಪಕಡ ಕರಕ ಗಜೆ.

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोला या चतुर बोला गा।
1: एक पे कैसे रहती जब रिकॉर्डिंग में मौजूद हूँ मन्ना डे, किशोर कुमार और महमूद। तो भाई किस्सा ये है कि इस गाने की शक्ल ऐसी नहीं थी। पहले जो गीत लिखा गया था, जो संगीत रचना की गई थी, रिकॉर्डिंग के वक्त बदल ली गई थी। दरअसल उन दिनों रिकॉर्डिंग के दौरान सारे साजिंदे गायक मौजूद हुआ करते थे। महमूद साहब जो इस फिल्म के निर्माता थे और राहुल देव बर्मन साहब जो कि संगीतकार थे। महमूद साहब ने आर डी बर्मन को पूरी आजादी दे रखी थी। उस पर किशोर कुमार साहब गजब के फनकार, खुद गायक, गीतकार और संगीतकार, उन्हें भी खूब मजा आने लगा और गीत की शक्ल बदलते बदलते ऐसी हो गई। दोस्तों, संगीतकार राहुल देव बर्मन ने महमूद साहब के साथ फिल्म भूत बंगला में अभिनय भी किया है। जी हाँ, सुनते हैं इसे फिल्म का ये गाना, संगीत है राहुल देव बर्मन साहब का।
2: गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ रहना हो तो मानो मेरी बात।

0: ही है यही आओ ट्विच करे कहता मौसम जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया है। देखो बिटिया।
1: सत्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: साहब ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी हैं, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम।

दोस्तों, हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम। महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

इंटरनेशनल फकीर आए हैं।

0: जाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।
0: हमसे हारेगी दुनिया, होगी ना अपनी हार सनम। हम तुम सच्चे हैं दोनों, सच्चा हमारा प्यार सनम।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी अलवर के इसका चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं कुछ विज्ञापन।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हम एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि मुकेश हम सबके दिलों की धड़कन है। हम खुश हों या उदास हों, जिंदगी का कोई भी पहलू चल रहा हो, मुकेश के गाने हमारी जिंदगी में एक साथ चलते हैं और न जाने कितनी पीढ़ियों ने मुकेश की आवाज के साथ अपनी जिंदगी का सफर तय किया है। आज हम मुकेश की याद को नमन करते हुए एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस खास प्रोग्राम में दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, तो उनका तारुफ कराने से पहले उनकी आवाज सुनिए।
1: होठों पे सच्चाई।

0: बहती है,
1: जिस देश में गंगा बहती है,
0: जिस
1: जिस देश
0: देश
1: में
0: में
1: गंगा
0: गंगा
1: बहती
0: बहती
1: है।
0: है।
1: क्या बात है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और जिस देश में मुकेश की आवाज गूंजती है। तो स्वागत करते हैं जाने माने गायक मुख्तार शाह का।
2: नमस्कार विनोद भाई, और सभी सुनने वालों को भी आदाब।
1: और मुख्तार भाई के साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गोविंद मिश्र, जो मुकेश की आवाज हैं और बहुत प्यारे इंसान। बहुत स्वागत।
3: नमस्कार यूनुस भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद।
1: मुख्तार और गोविंद जी, आप दोनों सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जिंदगी में मुकेश कहाँ से शुरू होते हैं?
2: जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं जब म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ता था यूनुस भाई, तब वो हमेशा ऐसा गाने का शौक तो कुदरती तौर से था, तो गाना ऐसे ही गाया करते थे। टीचर कभी बोलते थे तो ऐसे कुछ भी रैंडम गाते थे, लेकिन वो मैं मुकेश जी के गाने संभव मुझे बहुत पसंद थे और वही मैं गाया करता था। और जब मैं हाई स्कूल में आया तब वो कभी कभी फिल्म के गाने बहुत मशहूर हुआ करते थे उन दिनों, मैं पल दो पल का शायर हूँ।
1: वाह वाह।
2: तो वो गाना मैं अक्सर गाया करता था जब भी ऐसा टाइम पास के तौर पे स्कूल के अंदर कोई वो पीरियड अगर फ्री है या कोई फंक्शन में गेस्ट नहीं आए हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए किसी को बुलाना है तो मुझे बुलाकर वो गाना गाने बोलते थे, तो मैं यही गाता था। तो मेरे जो दोस्त थे तो मुझे मुकेश मुख्तार की जगह मुकेश मुकेश बुलाने लगे।
1: वाह वाह।
2: इस तरह से मेरा जहन भी मुकेश जी की आवाज की तरफ ज्यादा।
1: ये किस शहर की बात है?
2: अहमदाबाद की, जहां मैं रहता हूँ।
1: मेरी
2: तो पैदाइश वहीं की।
1: तो अहमदाबाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए आपका जो झुकाव है वो मुकेश के गानों की तरफ हुआ।
2: जी।
1: अब गोविंद की तरफ बढ़ते हैं। गोविंद, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ?
3: जी मैं तो हमेशा दूसरे सिंगर्स के ही गाने गाता था, लेकिन क्या है कि कुछ जो जानकार लोग थे संगीत के और जहाँ पे मैं सीखता था, बेसिकली इलाहाबाद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, अब वो प्रयागराज हो गया है, तो वहां पर कुछ लोगों ने मुझे बोला कि आप मुकेश को ट्राई कीजिए, आपकी वॉइस जो है थोड़ा सा ऐसा सिमिलर आता है। तो मैंने धीरे धीरे धीरे धीरे सुनना शुरू किया, और मुझे याद है एक बार कॉम्पिटिशन में मुझे गाने का मौका मिला, तो तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, वो गाने का मौका मिला।
1: क्या बात है।
3: और वो गाने के साथ वो फर्स्ट प्राइज जब मुझे मिला तब थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सीरियस होता गया।
1: क्या बात है। तो वही गाना सुनाइए फिर।
3: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी।
1: क्या बात है, क्या बात है। एक और बात गोविंद, के इलाहाबाद शहर में पढ़ रहे थे और कंपटीशन वगैरह की तो बातें हुई, पढ़ क्या रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे?
3: बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ।
1: ओहो हो हो, ये इंजीनियरिंग और गायकी
3: दोनों अलग अलग है। अभी म्यूजिक का शौक था और 4 साल क्लासिकल ट्रेनिंग भी ली मैंने प्रयागराज संघ समिति से, और फैमिली में ऐसा कोई म्यूजिक में था नहीं, बट मेरा झुकाव थोड़ा उधर था तो
1: बगावत करनी पड़ी कि अब इंजीनियरिंग नहीं करेंगे।
3: कुछ सालों तक तो मुंबई में आने के बाद तो घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं शोज करता हूँ, मैंने हमेशा झूठी बोला कि मैं जॉब करता हूँ।
1: अच्छा, ये भी हुआ है?
3: हाँ, गांव में जनरली से मम्मी पापा को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मंथली जो भेजना भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कभी पूछा नहीं कि तुम क्या करते हो, कितनी सैलरी है, कहाँ का जॉब है। तो बस वो चलता रहा। धीरे धीरे जब ये फेसबुक और इंस्टा में और सारे सोशल मीडिया यूट्यूब में वीडियोज आने लगे तब थोड़ा हाईलाइट में हुआ, तब मैंने बताया कि भाई मैं शोज करता हूँ।
1: मतलब इंजीनियर नहीं है, सिंगर है।
3: नहीं जी, जी।
1: मुख्तार भाई, आपने क्या पढ़ाई की है भाई?
2: मैंने कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद फिर LLB किया।
1: अरे बाप रे बाप, ये क्या मामला है।
2: मतलब मैं ऑफिशियली ऐसे, मेरा तो एनरोलमेंट है एज ए लॉयर। जब पढ़ाई करता तभी मेरा दिल था बहुत यूनुस भाई के LLB करूंगा और वकील बनूंगा
1: जी।
2: तो वो मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, थोड़ा सा गाने का सफर शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम में।
1: हाँ हाँ।
2: और फिर मैं जब एडवोकेट हुआ तब मैंने 2 साल म्यूजिक छोड़ के वकालत भी की फुल टाइम।
1: ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल है। कोर्ट रूम में आप जो है वो जिरह कर रहे हैं, तो जिरह की बजाय गाना ज्यादा अच्छा लगता है।
2: लेकिन शायद ऐसा था, डेस्टिनी बोलते ना
1: जी, जी।
2: तो मैंने शुरुआत की, क्राइम साइड मेरा लीगल प्रैक्टिस है।
1: हाँ।
2: आज भी मतलब मेरा एनरोलमेंट है
1: जी।
2: और तो लेकिन वो जहन से कलाकार था तो क्राइम की प्रैक्टिस

0: इसके अंदर बहुत ज्यादा मन बहुत सेट हुआ नहीं, तो मैं धीरे धीरे थोड़ा उससे दूर होता गया। और कुछ हालात भी ऐसे हुए कि मुझे ऐसा चूज करना पड़ा कि या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी या ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो
1: हाँ
0: ऑफ कोर्स म्यूजिक मेरा पैशन था, तो वही फर्स्ट प्रायोरिटी
1: क्या
0: मेरा।
1: बात है। अच्छा, तमाम शहरों में बल्कि दुनिया भर में आप मुकेश को गाते हैं। बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आपको कई बार गाने पड़ते हैं
0: हाँ
1: क्योंकि वो पॉपुलर गाने हैं,
0: जी जी
1: पर मैं यहां चाहता हूं कि अपने मन का कुछ सुनाइए जो आपको कम गाने का मौका मिला।
0: अमूमन शोज में नहीं रखे जाते ऐसे बहुत सारे गाने जो बहुत खूबसूरत गाने, जैसे अगर मैं बताऊं तो सारंगा तेरी याद
1: क्या
0: में,
1: बात क्या बात, सरदार मलिक साहब का संगीत है
0: जी जी तो ये गाने अमूमन से कम होते हैं, जिक्र होता है जब कयामत का तेरे जलवों की बात होती है।
1: वाह वाह वाह,
0: तो ऐसे कुछ गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अमूमन कम गाने का मौका आता है।
1: एक गाना मुझे याद आ रहा है, पुकारो मुझे इनाम लेकर।
0: वाह क्या बात है, वो भी डांसिंग का ही म्यूजिक है।
1: ये डांसिंग का म्यूजिक
0: तो दो लाइनें हो
1: जरूर।

0: अब आप लोगों से एक बहुत ही जज्बाती सवाल मैं करने जा रहा हूँ कि अगर कभी आपकी मुकेश से मुलाकात होती तो क्या कहते आप?
1: ये इमेजिन करना ही एक अपने आप में थ्रिल है कि कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली के अपने जिंदगी के, हम तो बहुत छोटे थे जब उनका इंतकाल हो गया।
0: जी जी,
1: लेकिन यस कभी अगर मौका मिलता तो शायद उस वक्त हम स्पीचलेस हो जाते।
0: बिल्कुल,
1: क्या कहें कि आप बहुत अच्छा गाते हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, क्या कहें। तो मतलब वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही मुकेश जी की आवाज और उनकी पर्सनालिटी एक हमारे लिए आइडियोलॉजी की तरह है।
0: बिल्कुल। गोविंद आप बताइए।
2: मैं तो मुख्तार भाई बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलता उस टाइम पे अगर वो मिलते तो, क्योंकि जब भी हम गाते हैं उनको या सुनते हैं तो ये सीरियस बात है कि मार्क बंद करके जब भी उनको सुनते हैं तो मैं खाली एक ही चीज इमेजिन करता हूँ कि कैसे गाया होगा। इतने सरल स्वभाव के आदमी,
0: बिल्कुल
2: एकदम एकदम सीधा सीधा गाना और एकदम ना कोई ये वो ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ सीधा स्ट्रेट गा के एकदम दिल पे उतर जाना।
0: हाँ,
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता, उड़ता नहीं उनको।
0: क्या बात। अच्छा, मुकेश ने बहुत सारे भजन भी गाए हैं और कुछ तो गैर फिल्मी है, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे?
1: जी

0: क्या प्यारा भजन, क्या बात है। और यहाँ ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि मुकेश जी को रामचरितमानस जो है उससे बहुत लगाव था और उन्होंने पूरी रामचरित अपनी आवाज में रिकॉर्ड की थी। और जो फिल्म म्यूजिक के कदरदान हैं और जो मुकेश के भक्त हैं उनके लिए वो एक बहुत बड़े तोहफे की तरह है, एक बहुत जरूरी एक चीज है जो संग्रह में रखा जाना चाहिए। मुकेश जी को जब हम सुनते हैं तो कई बार ये एक चीज उभर के आती है कि वो सैड सॉन्ग्स के बादशाह हैं। आप लोग क्या मानते हैं कि क्या ये बात उनको सिर्फ सैड सॉन्ग्स तक महदूद करना या सैड सॉन्ग्स के बादशाह कहना सही है? मुख्तार भाई,
1: मैंने जैसा उनका इंटरव्यू में उनके जबान से ये सुना है कि उन्होंने

0: कहा कि भाई अगर मुझे 10 ऐसे लाइट सॉन्ग दिए जाए और एक अगर मुझे इमोशनल या सैड सॉन्ग दिया जाए तो मैं सैड सॉन्ग गाना ज्यादा पसंद करूंगा। कलाकार जो होता है, मेरा अमूमन मानना है कि हमेशा वो दिल से जुड़ा होता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो इंसान दिल से जुड़ा होता है उसको हमेशा इमोशंस और फीलिंग्स उनसे बहुत लगाव होता है, और इसीलिए सारे कलाकारों का मैंने देखा है ज्यादातर वो लोगों को सेंटिमेंटल या इमोशनल और सैड सॉन्ग्स ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: क्या बात है, ये बहुत प्यारी बात कही है कि जज्बाती होते हैं कलाकार, इसलिए जो सैड सॉन्ग्स है उनसे लगाव होता है। मुकेश जी को खास तौर पर सैड सॉन्ग से जोड़कर देखा जाता है। गोविंद आप ये मानते
2: हैं? यही इंटरव्यू, बिल्कुल यही इंटरव्यू मैंने भी सुना था मुकेश जी का, यही था कि 10 अगर रोमांटिक सॉन्ग मुझे दिया जाए और एक सैड नंबर दिया जाए तो मैं सैड को ही प्रेफर करूंगा।
0: लेकिन अच्छा। लेकिन उसके बावजूद मुकेश जी ने काफी सारे रोमांटिक गाने गाए हैं, और मैं तो इनफैक्ट बहुत मरतबा जब ऐसा सुनता हूँ कि जो ऑडियंस होता है कभी बोलता है कि अरे यार मुकेश जी का प्रोग्राम है तो फिर रोने वाले गाने होंगे, तो ये बातें सुन सुनकर मैंने एक पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया कि जिसका टाइटल रोमांटिक मुकेश।
1: क्या
0: तो मतलब 3 घंटे सारे गाने रोमांटिक और मुकेश जी के गाए हुए, तो लोगों को ऐसा होता है कि अच्छा इनके तो इतने सारे गाने रोमांटिक भी हैं।
1: ये बहुत जरूरी बात है, तो एक रोमांटिक गाना आप लोग दोनों मिलकर

0: था।
1: वैसे मुझे तो गाना वैसे वापस मुझे भी मनोज कुमार जी वाला ही याद आया था, तौबे मतवाली चाल, लेकिन मैं सोचा मनोज कुमार जी का ज्यादा वो हो जाएगा तो राज कपूर जी का गाना
0: क्या बात है।
1: ऐसा

0: रोमांटिक गानों की बात हो रही है और अभी मुख्तार भाई आपने कहा कि मनोज कुमार के ऊपर और राज कपूर के ऊपर मुकेश की आवाज तो इस गाने को चुना जाए, किन हीरोज के ऊपर राज कपूर को छोड़कर, क्योंकि वो तो मुकेश राज कपूर की आवाज तो थे ही, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुकेश की आवाज, ये सवाल गोविंद आपके पास भी आने वाला है।
1: अब मेरा मानना है कि अगर राज कपूर मनोज कुमार जी के बाद, मुझे पर्सनली फिरोज खान के ऊपर उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वाह, मुझे एक बड़ा प्यारा गाना याद आ गया है।
1: अच्छा,
0: लेकिन देखते हैं कि आप उसको गाते हैं कि नहीं।
1: और वैसे तो सुनील दत्त जी पर भी हैं उनके गाने, शशि कपूर जी पर काफी सारे गाने, जितेंद्र पर बहुत सारे गाने।
0: हाँ।
1: तो लेकिन मुझे पर्सनली मेरा मानना फिरोज खान में मुझे ज्यादा उनकी आवाज अच्छी।
0: तो कौन सा गाना चुन रहे हो आप?
1: जो तुमको हो।

0: क्या बात है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना सफर फिल्म से, और विविध भारती पर हम यही बात कहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात गाएंगे। हम अपने लिसनर्स की पसंद का बहुत खास ख्याल रखते हैं और इसीलिए आज मुकेश जी को नमन करते हुए हमने आप दोनों को बुलाया है। तो गोविंद, अब वही सवाल आपके पास आ रहा है,
1: शशि कपूर जी के ऊपर बहुत सारे फिल्माए गए उनके गाने,
0: वाह वाह,
1: जैसे फिल्म कभी कभी का,
0: हाँ

0: इतना अच्छा लग रहा है कि गानों की बारिश हो रही है और हम बहुत शिद्दत से मुकेश को याद कर रहे हैं। मुख्तार भाई, पूरी दुनिया में जाकर आप शोज करते हैं, मैं विदेशों में आपके शोज की बात करने जा रहा हूं, जहां कोई यादगार घटना बताइए।
1: यानी अमूमन तो जैसे हम अब्रॉड जो शोज करने जाते हैं तो ज्यादातर तो हमारा क्राउड जो होता है अपना एशियन, उसमें भी अपना इंडियन क्राउड और अड़ोस पड़ोस के देशों के भी लोग जो होते हैं हमारा हिंदी सिनेमा को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग ही प्रोग्राम देखने आते हैं। और यादगार में अगर मैं कहूँ तो मुझे हॉलैंड, नेदरलैंड एक ऐसी जगह लगती है कि जहां पर मैंने थ्रू आउट द वर्ल्ड देखा है कि रफी साहब की पॉपुलैरिटी सारे प्लेबैक सिंगर में सबसे ज्यादा है, एक्सेप्टेबिलिटी भी उनकी सबसे ज्यादा है, लेकिन नेदरलैंड और सूरीनाम, क्योंकि ज्यादातर नेदरलैंड से लोग जो है सूरीनाम से माइग्रेट होकर आए हैं, ये एक जगह मैंने ऐसी देखी जहां रफी साहब से कुछ ज्यादा मुकेश जी को लोग पसंद करते।
0: क्या बात है
1: ये देश, इसलिए मुझे वो देश बहुत अच्छा लगता है।
0: वाह गोविंद, जब आप गाते हैं तो फरमाइशें किस तरह के गानों की ज्यादा आती है?
2: सैड नंबर की ज्यादा आती है।
0: और उसमें भी कोई खास गाना जिसको आपको तकरीबन हर शो में गाना पड़ता है?
2: जाऊं कहां बताए दिल।
0: अच्छा,
2: इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है।
0: हाँ, बहुत ही जज्बाती गाना है।
2: हाँ, सारंगा तेरी याद में, सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये सब बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है।
0: सजनवा बैरी हो गए हमारे, ये गाना सुनते हैं।
2: सजन

0: कौन होगा जिसको इस फिल्म से प्यार ना होगा।
1: हाँ, हाँ,
0: तीसरी कसम फिल्म का कौन सा गाना है जो आपके दिल के करीब है?
1: वो गाने तो उस फिल्म के सारे ही अच्छे थे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जो दूसरे दो गाने जो बहुत पॉपुलर हैं, सज्जन रे झूठ मत बोलो और दुनिया बनाने वाले, वो गाने भी इक्वली इतने अच्छे और मुझे पसंद है।
0: अच्छा, तो दुनिया बनाने वाले सुनते हैं आपसे।

0: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार एल्बम रहा है जिसमें बहुत कमाल की गजलें हैं, हमसे भागा ना करो गजालों की तरह, मेरे महबूब नहीं ये नहीं। मुकेश जी ने गैर फिल्मी एल्बम बहुत सारे किए और वो दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगर्स अपनी पसंद के गानों के लिए गैर फिल्मी एल्बम्स करते थे। लता जी ने किए, आशा जी ने किए, मंदाडे ने बहुत सारे किए, रफी साहब की गजलें मौजूद हैं। तो अच्छा, गोविंद मुकेश के ही गाने आप सिर्फ सुनते हैं या जब सुनने की बारी आती है तो?
1: मैं सच बोलूं तो ऑनियर आज एक्सेप्ट कर रहा हूं कि जब मेरा शो होता है, जब रिहर्सल होता है, रिहर्सल के एक दिन पहले ही मैं मुकेश जी को एकदम सीरियस होकर सुनता हूं।
0: अच्छा,
1: नहीं तो मेरे फेवरेट हमेशा रफी साहब रहे हैं।
0: और क्या बात है,
1: रफी साहब को मैं बहुत सुनता हूँ।
0: तो फिर अब मैं ये चाहता हूँ कि रफी साहब का एक गाना आप सुनें। ये तो अलग ही हो जाएगा मामला, है ना।
1: हो आज मौसम बड़ा

यार ये जो है ना ये अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, मुझे आइडिया आ गया। अब मुख्तार भाई आपको भी रफी का गाना गाना पड़ेगा। ऐसा किसी ने किया नहीं होगा लेकिन यहाँ तो होगा ये।

0: क्या बात है, पहली बार आपसे हमने रफी साहब को सुना कि
1: मैंने भी अच्छा मैंने भी
0: ये देखिए, ये ऐसा सिर्फ गुजराती में ही पॉसिबल है, ऐसा शोज में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब अगर लोगों ने सुन लिया तो
2: हो सकता है कभी ऐसा कुछ फरमाइश आ जाए।
0: अच्छा, जब आप फुर्सत में होते हैं तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुकेश के गाने सुन रहे हों, तो किन किन कलाकारों के गाने सुन रहे होते हैं?
2: मैं रफ़ी साहब सभी के फेवरेट रहे हैं, उनके गाने में बहुत सारी वैरायटीज हैं, और ऑफ कोर्स मैं कभी किशोर कुमार जी के भी गाने कुछ मुझे पसंद हैं तो वो मैं सुनता हूँ अगर वक्त मिला तो।
0: गोविंद?
1: मैं गुलाम अली साहब को बहुत सुनता हूँ, खाली टाइम पे मैं गुलाम अली साहब को ही सिर्फ सुनता हूँ, बहुत मजा आता है उनकी हरकतों को, उनको सब एकदम ऐसा डूब जाता हूँ पूरी तरह से।
0: वहां हमने गजलों की बातें की तो यहाँ पर भी जो है, लेकिन अब ये कह के फंस गए गुरु
2: मैं सोची रहा था।
1: सोच सोच के जो है
0: चुपके चुपके रात दिन
1: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके

0: आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन।
1: एक पूरा दौर रहा है गजलों का, जब गुलाम अली के कैसेट्स, कौन होगा जिसके कलेक्शन में नहीं हुआ करते होंगे।
2: एग्जैक्टली
1: आप लोग बहुत शोज करते हैं और ट्रैवल भी करते हैं अपने शोज के लिए। मुकेश की आवाज में अलग अलग गानों की अदायगी लाइव ऑडियंस के सामने कितने दबाव और तनाव की बात होती है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और हर दिन एक जैसा तो नहीं होता है।
2: एग्जैक्टली तनाव तो रहता है जब ये, क्योंकि कमर्शियल प्रोग्राम्स करने रहते हैं जहां लोग एक्सपेक्टेशन लेकर आते हैं आपके साथ के गानों के, एक तो वॉइस के अंदर रिजेम्बलेंस और उसके बाद उनके उनको गाना, तो उसका टेंशन तो हमेशा रहता है। इतने सारे, मतलब इतने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, इतने सारे प्रोग्राम कर चुके हैं थाउजेंड्स में, लेकिन अभी भी गाने का, और स्पेशल जब पहला गाना गाने स्टेज पर जा रहे होते हैं तो दिल ऐसा अंदर से धड़क तो रहा ही होता
1: क्या कि
2: भाई लोग एक्सेप्ट कर लें, आवाज ठीक से निकल जाए, आवाज चल जाए। क्योंकि वो हमारा क्रिएशन तो है नहीं, हम किसी और का गाया हुआ गाना है और मुकेश जी की आवाज को उसको कॉपी करना है। तो वो थोड़ा सा भी अगर ऐसा सोचते, अगर 5-10% भी अगर उसको जस्टिफाई कर सके तो, और मैं मेरे ख्याल से उतना ही करते हैं जिसके बदौलत लोग इतना प्यार देते हैं।
1: आप 5-10% नहीं करते हैं, आप इसका उल्टा करते हैं, मतलब 99% 100% करते हैं। गोविंद कितना टेंशन होता है शो से पहले?
0: टेंशन तो बहुत रहता है, और जैसा मुख्तार भाई ने बोला, पहले गाने के लिए सच में बहुत टेंशन रहता है।
1: हाँ।
0: जैसे धक धक धक धक करता रहता है, और मैं तो ग्रीन रूम में हुआ, मेरा जब नंबर आने लगा, जैसे पहला गाना मेरा ही है तो मुझे टेंशन पहले स्टार्ट हो जाता है।
1: अच्छा।
0: और मैं कर्टन के सामने खड़ा भगवान को बोलता रहता हूँ, आप संभाल लेना, आप स्टेज संभाल लेना, बस और कुछ नहीं।
1: अच्छा, इस टेंशन को ईज करने के लिए क्या तरीका है आप लोगों का? गहरी गहरी सांस लेना, क्या करते हैं? जैसे इन्होंने कहा भगवान से कहते हैं भाई संभाल लेना,
2: ये तो सबसे बड़ी बात ही है। टेंशन को ईज करने के लिए
1: ऊपर वाले को
2: हाँ, उसको तो रिक्वेस्ट करना ही रहता है कि भाई संभालना।
1: बिल्कुल। एक चीज, हाँ, ये सवाल पहले आएगा कि मैंने आपको कई जगह गाते हुए देखा है कि आप लिरिक्स के साथ नहीं गाते, अमूमन आपको सब गाने याद हैं।
2: जी,
1: ये कितनी चैलेंजिंग बात होती है? ऐसा नहीं लगता है कि कभी कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया?
2: नहीं, क्या है कि बचपन से एक गाने का जो शौक रहा, तो पुराने दौर में जब हम छोटे थे तो हम लोगों को

0: पता है हम फिल्म में जब जैसे देखने जाते तो स्टोरी भी पूरी याद होती थी
1: बिल्कुल,
0: और अपने दोस्तों में कभी डिस्कस करते थे कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो गाने भी उसी वक्त से मुझे ये सारे गाने, इनसे इतना लगाव था, इतने दिल से जुड़े रहे इन गीतों के साथ, वो तब से याद हैं। तो वो आज तक ऐसे एक सिस्टम कुदरत ने अंदर इतनी मेहरबानी की है कि वो एक सेट रखा है कि मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं कभी ऐसा सोच कर भी नहीं जाता हूँ कि अच्छा इसका पहला अंतरा क्या है, सेकंड क्या है, वो स्टेज पे याद आते जाता है, वो
1: चलता चला जाता है।
0: हाँ,
1: तो कभी मैंने आपको लिरिक्स के साथ गाते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने कहा कि ये बात जो है ये तो पूछनी जरूरी है कि कितने गानों का खजाना दिमाग में जमा कर रखा।
0: और वो मैंने क्या है कि कभी रखा भी नहीं रेफरेंस के लिए, मैं कागज इसीलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि जिस दिन साइकोलॉजी एक बैक ऑफ द माइंड मैंने मैसेज दे दिया कि अब भाई एक रेफरेंस के लिए है तो वो नजर वहां जाएगी। कहते ना कि अब जैसे बैंडेज खरीदते तो आपको चोट लगती है।
1: अरे
0: खरीदना ही नहीं चाहिए बैंडेज।
1: गोविंद कितने गाने याद रहते हैं और डायरी की जरूरत पड़ती है?
2: हाँ कभी कभी पड़ती है, जैसे मुख्तार भाई ने बोला भी कि थोड़ा रेफरेंस के लिए ना वो दिमाग में मेरे बैठ गया है, वो चीज कुछ लाइनों को देखना पड़ता है। मतलब बहुत बार गाया है लेकिन फिर भी वो देखना ही पड़ता है, होता है। लेकिन कुछ गाने बहुत याद है, कुछ गाने एकदम पूरे याद है, लेकिन कुछ गानों को जिनको मतलब अमूलन कभी नहीं गाया है या पहली दो बार गा रहा हूँ, तो दो तीन बार गाने के बाद तो वो याद ही हो जाता है।
1: फिर सालों से आप लोग शोज कर रहे हैं और एक तरह से शो जो है वो जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं, तब भी रिहर्सल कितनी मायने रखती है? हर शो के पहले एक रिहर्सल होती है।
0: मैं अब इन दिनों अभी काफी सारे मतलब रिहर्सल मैं स्किप करने लगा हूँ, बहुत नहीं जाता हूँ रिहर्सल में। लेकिन ये कभी जैसे प्यारे भाई का अगर कोई प्रोग्राम है या आनंद जी भाई के साथ कर रहे हैं, विजू भाई के साथ कर रहे हैं, तो वो रिहर्सल पर्टिकुलरली अटेंड करने जाता हूँ क्योंकि एक थोड़ा सा लर्निंग लेसन रहते हैं वहाँ पे। और बाकी अब म्यूजिशियंस और वो सब सारे इतने नोन हैं इतने सालों से, तो अब वो एक सबको एक लिस्ट दे दो और थोड़ा सा स्केल फोन पे डिस्कस कर लो तो काम वैसे चल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: अनलेस के कोई ऐसा रेयर गाना गा रहे हो तो थोड़ा सा बिगर देखना पड़ा।
1: गोविंद आप बताइए।
2: नहीं रिहर्सल तो ठीक है, जो अगर हम रेगुलर गाने गा रहे हैं तो उसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है क्योंकि सारे म्यूजिशियन भी वैसे ही हैं, और आज के टाइम पे चाहे सिंगर हो म्यूजिशियन हो सब इतना मेहनती है, सब मेहनत करते हैं, सब अपना 100% स्टेज पर देते हैं, चाहे वो सिंगर हो म्यूजिशियन हो साउंड हो कोई भी हो। लेकिन हाँ कुछ पर्टिकुलर कुछ अलग गाने मिल गए, कुछ कोरस वाले गाने मिल गए तो रिहर्सल की जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल मुख्तार भाई, बहुत सारे लेजेंड्स के साथ मैंने आपको शो करते हुए देखा है
0: जी,
1: तो जैसे प्यारे भाई ही हैं
0: जी, जी।
1: या आनंद जी भाई हैं या और तमाम लोग हैं, मतलब सिंगर्स भी बहुत सारे तमाम लोगों के साथ, उनकी कुछ यादें हैं, उनके साथ शो की यादें हमारे साथ बांटिए।
0: मैं मतलब मैंने कभी अपनी जिंदगी में जब छोटा था गाना मैंने शुरू किया अहमदाबाद में था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुदरत ऐसा मौका भी देगी कि ये लोगों के साथ मिलना होगा या इन लोगों के साथ कोई स्टेज पे खड़े रहने का मौका भी मिलेगा। तो मैं ऊपर वाले का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया। जैसा कि हम सुनते थे कि भाई ये जो लेजेंड्स होते हैं तो जब इनके साथ काम करो तो इनके काम करने का तरीका, इनकी डिटेलिंग, इनका ऑब्जर्वेशन, वो देखकर ही पता चलता है कि इसीलिए ये लोग महान हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं कि अगर प्यारे लाल जी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था तो सारे म्यूजिशियंस बजा रहे हैं और जैसा मैं सुनता था तो वो मेरे साथ बात भी कर रहे थे, और वो जब जुम्मा चुम्मा दे दे वाला म्यूजिक आगे का चल रहा था तो वो जैसे स्टॉप हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली चार कीबोर्ड वाले थे उसमें से एक ही कीबोर्ड वाले को उन्होंने बोला कि आप वो बजाइए, आप क्या बजा रहे थे, और वही इंसान गलती कर रहा था वो जगह पर।
1: इतनी बारीकी से,
0: बारीकी से जो सुनना
1: जी
0: ये,
1: और प्यारे भाई के बारे में ये बहुत मशहूर है कि वो 20 वायलिन में से भी एक को पहचान लेंगे कि तुम गलत बजा रहे थे। तो ये तो कमाल की बात है। उनके साथ बहुत रिहर्सल्स बहुत शोज किए हैं आपने, तो कोई एक गुरु मंत्र जो उन्होंने आपको दिया हो?
0: मुझे वो ऐसा कहते थे कि आपके थोड़े से जो लैंडिंग जहां नोट्स आपको करते हैं वो थोड़ा सस्टेन करना या उसको थोड़ा सा करेक्ट करना, जो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो एक उन्होंने मुझे बताया और वो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसा उन्होंने मुझे बताया है तो लैंडिंग नोट्स को जो गाना जहाँ से जो लाइन जहाँ खत्म होती है तो उसको जो सस्टेन करना, तो कोशिश करता हूँ वैसे ही करने की।
1: मुझे लगता है कि वो गाना जो आप कई बार प्यारे भाई के साथ स्टेज पर गा चुके हैं, वो जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली,
2: हाँ, हाँ, हाँ,
1: वो गाना सुनते हैं हमसे।

0: क्या बात है। इस गाने के बारे में जो एक ट्रिविया है वो भी बता दीजिए, द गुड द बैड द अगली।
1: वो जो म्यूजिक उन्होंने किया तो मैं, वो मुझे प्यारे भाई ने बताया कि हमने उसका बाकायदा पेड करके वो लिया हुआ म्यूजिक, गाया हुआ नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कमाल है कि इतनी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म और उसका जो म्यूजिक है, वो जो थीम है, वहां से उन्होंने
1: जी
0: क्या शानदार तरीके से उसको गाने में बदला है, ये बहुत बड़ी बात है, कमाल की बात है।
1: एग्जैक्टली यस।
0: तो ये गाना पूरा सुनते हैं रिकॉर्ड से।

0: गोविंद अब आपकी तरफ आते हैं, तमाम तरह के शोज किए हैं, तो को सिंगर्स के साथ कुछ दिलचस्प अनुभव? कभी ऐसा होता है कि लाइंस भूल जाते हैं लोग या ऐसा कुछ?
1: हाँ, एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभी तो होता है, और काफी सारे फीमेल सिंगर के साथ जब मैंने गाए तो कई लोग, कई फीमेल सिंगर ऐसी थी जिन्होंने कोई कोई गाने में लाइन भूल जाती थी, तो वो याद मुझे रहता था, तो मैं खाली उस इशारा करके मैं संभाल लूंगा, मैं गा लूंगा, दो लाइन तीन लाइन आगे गा के फिर उनका सपोर्ट करता कि अभी तुम गाओ।
0: क्या बात है, क्या बात है, ये भी करना पड़ता है। सर आप भी ऐसा करते हैं?
2: नहीं, आमतौर से ऐसा कभी, हाँ यस ऑफ कोर्स, अगर को सिंगर अगर है, कहीं हमारी गलती हो गई तो शायद उसने संभाल लिया, उसकी गलती हुई तो हमने संभाल लिया, पब्लिक को नहीं पता चले एज लॉन्ग एज, तो वो तो कोशिश तो करनी पड़ती है।
1: हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया गाना हो जिसका रिहर्सल नहीं हुआ हो टाइम कम की वजह से, तो हमें फीमेल सिंगर को बोलना पड़ता है कि काउंटिंग करके मुझे बताना मेरा स्टार्ट कहाँ से होने वाला है।
0: वाह वाह,
1: तो बता के वो पहले खाली ऐसे टच कर देगी तो हम शुरू हो जाते हैं।
0: पब्लिक को समझ नहीं आता,
1: पब्लिक को समझ नहीं आता था।
0: एक चीज और बहुत ही जरूरी बात जो मुझे लगता है कि जो एस्पायरिंग सिंगर्स हैं उनके लिए बहुत काम की होगी, और वो ये है कि आप दोनों लोग स्टेज पर जब परफॉर्म करते हैं तो बहुत अदाबाजी के साथ नहीं करते हैं कि उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नीचे झुक गए, तिरछे हो गए, टेढ़ा मुंह कर लिया, आप लोग बहुत सलीके से और बहुत नफासत के साथ गाते हैं।
2: तो ये मेरे ख्याल से हम जिनके गाने गाते हैं मुकेश साहब के, तो उनके गानों की डिमांड भी वही है कि अगर उनको उसी तरीके से गाना चाहिए जैसा हम गा रहे हैं, शायद अगर हो सकता किशोर कुमार जी के गाने गा रहे होते तो उसकी डिमांड वो होती कि उसके अंदर थोड़ी चंचल, थोड़ा सा उछल कूद, थोड़ा सा ऑडियंस में चले जाना, या वो वहां होता।
0: बिल्कुल गोविंद,
1: मैं तो मुकेश जी के वीडियोस जितने देखे हैं उसमें उन्होंने सब सीरियस होकर गाया है,
0: वो तो हारमोनियम
1: लेके होता है, लेकिन वो एंट्री कैसे करना है, कैसे खड़े होना है, वो चीज मैंने मुख्तार भाई से सीखा है।
0: मैंने
1: काफी शोज इनके साथ किए, तो मैंने इनको सिर्फ नोटिस किया है कि ये कैसे एंट्री कर रहे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे गा रहे हैं, कितनी सादगी से गा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो इसीलिए मैंने ये बात पूछी,
2: इसीलिए आज मॉडेस्टी
1: नहीं, मैं बस वो चीज इनसे ही मैंने सीखा है। और सिंगिंग में भी बोलूं तो मुकेश जी को मैं सुनता हूं, लेकिन मुकेश जी को सुनने के बाद एक बार इनको जरूर सुन लेता हूं।
0: क्या बात है,
1: इन्होंने कैसे गाया।
0: अब मैं चाहता हूं कि आप दोनों लोग मिलकर कोई गाना गाएं, तय कर लीजिए कि वो कौन सा गाना होगा। मुखड़ा अंतरा, दूसरा अंतरा भी हम सुनना चाहेंगे जितना आप गा सकते हैं। तो बताइए कि आप लोग कौन सा गाना चुन रहे हैं जिसमें एक शुरू करेगा, दूसरा उस गाने को आगे बढ़ाएगा, फिर अंतरे आएंगे।
2: यस, एक बहुत ही सच्चाई के पर लिखा हुआ जो गाना है, सज्जन रे झूठ मत बोलो।
0: क्या बात, शैलेंद्र जी का गाना, फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन।
2: सज्जन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सज्जन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे

क्या बात है, कितना शानदार माहौल आप लोगों ने बनाया, कितना अच्छा लगा। ये गाना भी ऐसा है जो एक जिंदगी का जरूरी सबक सिखाता है। जी।

पार्श्वगायक मुकेश की याद में आज हमने एक विशेष पेशकश आपके सामने रखी। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे गायक

0: मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, इनसे बात की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आपने सुना इस बातचीत का पहला भाग। मुकेश जी से जुड़ी बातें और यादें इतनी सारी हैं कि इस कार्यक्रम का अगला भाग भी हम लेकर आ रहे हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन शाम 4 बजे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को पेश किया जुबैर खान ने। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज पिटारा लाया था
0: आज के मेहमान।
1: आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं ये विज्ञापन।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लीजिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, अभी आपने बैक टू बैक दो कलाम सुने। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में कलाम उम्मीद होगी कोई, जिसे हमने लिया था दिल पड़ोसी है एल्बम से। इसके ठीक पहले आपने सुना शायराना एल्बम से मिर्जा गालिब का कलाम, जिसे गाया था जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं एल्बम यारों रब से दुआ करो, इसका कलाम अखिल सचदेव ने गाया है इसे। रश्मि विराग और प्रवीण भारद्वाज ने लिखा, मीत ब्रदर्स और निखिल विनय की तर्ज है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। हमारी अगली पेशकश शुभा मुदगल की आवाज में एल्बम अली मोरे अंगना से। शुभा मुदगल की आवाज है और गीत भी उन्हीं की रचना है और संगीत है जवाहर वत्तल का।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। श्रोताओ, एक विशेष सूचना, जुलाई मास की 23 तारीख को हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से कार्यक्रम चल रहा है रंग तरंग। लीजिए सुनिए शोभा गुड्डू की आवाज में ये रचना। इसे लिया है हमने एल्बम द जीनियस ऑफ शोभा गुड्डू से और इसे संगीतबद्ध भी किया है शोभा गुड्डू ने ही। एक पारंपरिक

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पांच गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल, जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
2: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
5: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सुनिए
8: विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए रूना लैला की आवाज में बज़्मे लैला एल्बम का ये कलाम। प्रवीण शाकिर ने लिखा इसे, निसार बज्मी ने संगीतबद्ध किया है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत की आवाज में लम्हे फिल्म का ये गीत, और अब आपको सुना रहे हैं के गौतम की आवाज में गाना।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए आकृति ककर की आवाज में आ देखें जरा इस फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आदेश श्रीवास्तव और वसुंधरा की आवाजों में आंखें इस फिल्म से प्रसून जोशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है आदेश श्रीवास्तव ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्र मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नेते बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने के बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
1: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न हो।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर और छात्र विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान किसी भी सदस्य को किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि ये सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। श्री बिरला ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है कि वो नीट पेपर पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर विशेष रूप से चर्चा की गई। सिक्किम सरकार ने नामचीन

0: बारे में सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए सूचना और व्यवस्था प्रमुख के नेतृत्व में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने इससे पहले ही उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। अब तक सुरंग से 22 शव बरामद किए जा चुके हैं। बचाव अभियान अब भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा स्नेहिल अभिवादन। आज इस कार्यक्रम में आप सभी के लिए गीता दत्त के गाए कुछ फिल्मी गीत। गीता दत्त और साथियों की आवाजों में फिल्म मिस मैरी का गीत सुनिए। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हेमंत कुमार।

कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ, गायिका गीता दत्त, और ये फिल्म है साहेब बीबी और गुलाम।

0: हम आकाशवाणी अलवर के साइज का चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, सुनते हैं ये विज्ञापन।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: लीजिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

कार्यक्रम का अगला गीत ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, आवाजें गीता दत्त, मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और
1: आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए
4: कैफी आजमी की गीत रचना SD बर्मन के संगीत निर्देशन में हम आपको सुनवा रहे हैं। स्वर गीता दत्त का है और ये फिल्म है कागज के फूल।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बाजी से चुना है। आवाज गीता दत्त की, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और

कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म बाजी से चुना है। आवाज गीता दत्त की, गीत रचना साहिर लुधियानवी की है और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: कॉलिंग।
1: और लीजिए अब एक सूचना सुनिए। जुलाई मास की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज गीता दत्त की और ये फिल्म है लड़की।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने फिल्म आर पार का गीत सुना। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और धुन बनाई थी ओपी नैयर ने।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं। 3?
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।

और आइए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का गीत, स्वर हैं गीता दत्त और मन्ना डे के, रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा हुआ हमने चुना है। आवाजें गीता दत्त और साथियों की। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: दोस्तों, आज की एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंफी को, और इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। तो आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे। आप सभी जुड़िएगा विविध भारती से, और इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। तो ये थी हमारे सभी श्रोताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, और आइए अब सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में फिल्म CID का गीत। गीतकार जानिसार अख्तर, संगीतकार OP नैयर।

कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि ये निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने कहा कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाग ले रहे हैं। उनके अलावा पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मॉनसून की सक्रियता से कई स्थानों पर भारी बरसात हुई। ब्यावर क्षेत्र में लगातार हुई तेज बारिश से खेत, सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। वहीं बरसाती नदियां और नाले उफान पर रहे। ब्यावर के अलावा अजमेर और भीलवाड़ा सहित कई जिलों में 3 से 5 इंच तक बारिश हुई। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर, नागौर, बूंदी, अलवर और पाली के कई क्षेत्रों में भी 2 इंच तक बरसात हुई। बारिश के कारण लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली लेकिन

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर दोहराया कि सरकार के लिए देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वोपरि है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने घोषणा की कि सरकार पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए त्वरित अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री ने

जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में अहम योगदान दिया है। वर्ष 1956 में राष्ट्रीय प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई, जिसमें फिल्मी गीतों को प्रमुख स्थान दिया गया। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुसार लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। पुलिस ने पूरे प्रदेश में 20 जुलाई से हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान 20 अगस्त तक चलेगा। इसके दौरान हार्डकोर अपराधियों, मादक पदार्थ तस्करों, साइबर अपराधियों, अवैध हथियार रखने वालों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की जा रही है। बीते 3 दिनों में विशेष अभियान के दौरान 1,259 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

हर कार्यक्रम में केएल सहगल साहब गूंजते थे और कुछ कार्यक्रमों में तो कुछ आकाशवाणियों में, आकाशवाणी के केंद्रों में तो केएल सहगल साहब का गीत आखिर में जरूर बजता था और उस गीत को सुनने के लिए न जाने कितने लोग उस आकाशवाणी केंद्र को सुनना पसंद करते थे। आपको भी वो याद ताजा होगी। फिलहाल हमारे जो श्रोता लिख रहे हैं उनका मैं वाचन करती हूं, उनके संदेशों का। आप लिखते हैं कि रेडियो केवल सूचना और मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक अंतरंग और भावनात्मक साथी है। ये दृष्टिहीन होने के बाद भी शब्दों के माध्यम से मस्तिष्क में सुंदर चित्र उकेरने की क्षमता रखता है। दृश्य श्रव्य माध्यमों के इस युग में रेडियो की खूबी ये है कि ये केवल ध्वनि पर निर्भर है। जब उद्घोषक अपनी गर्म जोशी भरी आवाज में श्रोता से बात करता है तो एक ऐसा आभासी जुड़ाव महसूस होता है मानो वो सीधे दिल से दिल तक पहुंच रहा हो। ये वो माध्यम है जो हमें बांधता भी है और आजादी भी देता है। रेडियो हमारा जीवन संगीत है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे या अब के बरस भेजो भैया कुछ गाने, इस तरह के आपने लिखे हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने, बहुत सारे गीत आपकी पसंद से आज बिल्कुल मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के कार्यक्रम का इंतजार है मंदाकिनी जोशी की आवाज में, मैं गाने सुनने को तैयार हूँ। नहीं भाई, हमारी आवाज में कोई गाना आप सुनना नहीं नहीं सुन पाएंगे। आज आप बड़े बड़े कलाकार जिन्हें हम बचपन से सुनते आए हैं उन कलाकारों को सुनना पसंद भी करेंगे और सुनेंगे भी। एक श्रोता लिखते हैं कि पार्श्व गायिका लता मंगेशकर ने भी रेडियो खरीदा था और रेडियो पर के एल सहगल के गाने वो सुना करती थी। और वही भारतीय प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति कहती हैं कि वे बचपन में रेडियो पर लता जी और मन्ना डे के गाने सुना करती थी और गुनगुनाया करती थी और रेडियो से बहुत कुछ सीखा उन्होंने। पहले रेडियो ही मनोरंजन का साधन था और दूसरा विकल्प नहीं था, प्राय सभी के घरों में दिखता था। और आज मोबाइल ऐप आ गया है लेकिन आज भी कार्यक्रमों को उसी अंदाज में सुना जाता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा मुझे आपने शुभाशीष दिया और लिखते हैं कि यथानाम तथागुण को सार्थक करने वाली आप, अपनी स्वर लहरियों के साथ जो सुंदर संगीत की गंगा बहेगी उसका आनंद ही अलग है। मंदाकिनी में डूबते उभरते कब समय निकल जाएगा पता ही नहीं चलता, सभी श्रोताओं के विचार सुनना भी कर्णप्रिय लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी इतना स्नेह देने के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के संगीत में सुरीला सफर में शामिल सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, आज के दिन का खास इंतजार है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नित नवनीत नवकल्पना नव रूप से सज्जित इबारत आज नई दिशा इंगित कर रही है। शैशव काल से उत्तरार्ध के सफर में बेतार वाणी आकाशवाणी का अवदान अतुलनीय है। सामयिक, सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर चुकी आकाशवाणी आज तकनीकी तब्दीलियों में भी ताल से ताल मिलाकर चैतन्य ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। संगीत प्रसारण से हिंदी प्रसार उल्लेखनीय अवदान है। देश की एकता अखंडता अक्षुण रखने में आकाशवाणी आज भी घर घर में है और नव चैतन्य ना जागृत करती मधुर संगीत में सफर वाकई जोशीला रहेगा। नव चैतन्यता जागृत करती मधुर संगीत में सफर वाकई जोशीला रहेगा, क्या बात है। आपने कितने सुंदर शब्दों में अपनी बात रखी है, शुक्रिया मेहरबानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हेमंत कुमार का संगीत है और बंकिम चंद्र की रचना है, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है आनंद मठ।

यह अवस्थी केएल सहगल की और फिल्म का नाम था स्ट्रीट सिंगर। पारंपरिक गीत रचना थी और संगीतकार थी आरसी बोराल। इस आवाज को भला हम कैसे भूल सकते हैं, और मुझे लगता है, हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी इस आवाज को सुनना चाहते थे कार्यक्रम की शुरुआत में। हमारे कई श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज तो भाई ये गाना जरूर बजने वाला है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए। तो जब रेडियो की बात हो, रेडियो की शुरुआत हो और केएल सहगल साहब की आवाज न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक समय ऐसा था जब

0: mataram, vande mataram, vande mataram, vande
1: mataram. जी तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज रेडियो प्रसारण दिवस है, आज रेडियो के सभी दीवाने श्रोताओं दोस्तों के लिए बहुत खुशी भरा दिन है। मेरे पापा रेडियो के बहुत शौकीन थे, घर में लंबे साइज वाला रेडियो जिसमें हरे रंग की लाइट वाला वॉल्व होता था, हम सभी परिवार वाले बड़े चाव से सुनना करते थे। 2001 में जालंधर रेडियो के FM स्टेशन पे फोन इन प्रोग्राम में मेरा बहुत बार फोन लगा। विविध भारती के हेलो फरमाइश में 4 बार अपनी फरमाइश फोन लगाकर पूरी कर चुका हूँ। तकरीबन अब 23 साल हो गए हैं विविध भारती पे फोन नहीं लगा, लेकिन कोशिश अभी भी जारी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा रचित काजी ठुमरी बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, ये ठुमरी जो अक्सर राग भैरवी में गाई जाती है, नवाब शाह द्वारा लखनऊ से निर्वासन के दौरान लिखी गई, जिसमें वे अपने शहर को दुल्हन की विदाई के रूपक के माध्यम से विदा कर रहे हैं। ये गीत केवल ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को दर्शाता है, जिसमें नैयर सांसारिक जीवन और पिया का देश आध्यात्मिक संसार का प्रतीक है। KL सहगल की फिल्म स्ट्रीट सिंगर और अन्य दिग्गज कलाकारों द्वारा गाए जाने के कारण ये गीत आज भी संगीत और भावनात्मक रूप से बहुत ही गहरा है, बहुत सुंदर। आपने उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब इस गीत को सुना जाता था और आज भी उतनी शिद्दत के साथ हमारे रेडियो प्रेमी इस गीत को सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि KL सहगल जी का ये गाना मेरे पिताश्री को बहुत पसंद था, सुबह 7 बजे खुलेगी सारे गीत प्रोग्राम अवश्य सुनते थे। ये गाना सुनकर मेरे पिताश्री की याद आ गई, अभी तो इस दुनिया में वो नहीं है, मेरे बचपन के दिन भी याद आ गए जब ये गाना सुनता हूँ, पुराने जमाने में खो जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाद आज के दिन के लिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज खास राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के दिन सुरीला सफर प्रोग्राम में आपने कार्यक्रम का आगाज महान गायक कुंदलाल सहगल जी से किया, ये बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं भी वो आखिर में KL सहगल का गीत बजने वाला प्रोग्राम जरूर सुना करती थी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इस आवाज को आज भी एक लोकप्रिय रेडियो पर कार्यक्रम के अंत में बजाया जाता है। और एक श्रोता का कहना है कि कुंदनलाल सहगल की आवाज में गाई गई सदाबहार ठुमरी मूल रूप से अवध के नवाब द्वारा रचित है, इसे राग भैरवी के सुरों में पिरोया गया और ये गीत आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी तो आज का ये सफर कितना संगीत में बनने वाला है ये तो हम सभी जानते हैं, और आज हम आपसे सिर्फ 2 सवाल नहीं करने वाले हैं दोस्तों, आज पूरे सफर में हम आपसे बातचीत करेंगे, दुनिया भर के सवाल करेंगे और आप लगातार हमें जवाब देते रहेंगे, क्यों है ना, आज का सफर तो ऐसा ही होने वाला है भाई। तो चलिए आज हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किस उम्र में रेडियो सुनना शुरू कर दिया था और क्या अब तक आप लगातार वो रेडियो सुन रहे हैं। और इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा गीत आपने रेडियो पर सुना अपने जीवन में।

दिन है और आज का दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक। और एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं सीधे दिल तक पहुंचती है, रेडियो उन्हीं आवाजों का नाम है जो अनजान होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसीलिए उसके साथ बिताया हर पल एक मीठी याद बन जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का टेक्स्ट बहुत ही भावुक करने वाला है, मैं उत्सुक हूं कि आज के शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर रेडियो की भूमिका के बारे में जानने के लिए भी मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन से ही रेडियो सुन रहे हैं जिसमें विविध भारतीय सेवा तो भारतीय संस्कृति और शुद्ध मनोरंजन का एक जीवंत प्रतीक है। आज के इंटरनेट और डिजिटल युग में भी विविध भारती अपनी सादगी, प्रामाणिकता और सुरीलेपन के कारण करोड़ों दिलों पर राज कर रही है। भूले बिस्ते गीत, सुरीला सफर, सखी सहेली और पिटारा जैसे कार्यक्रम मेरे सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर को हर घर तक पहुंचाने में आप सभी रेडियो उद्घोषकों की बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने अपनी जादुई आवाज से न सिर्फ हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे परिवार को एक साथ बैठकर रेडियो सुनने की एक अनूठी और बेहद खूबसूरत संस्कृति भी दी है। आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये खास दिन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और सभी साथी उद्घोषक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया और आभार कि आप लगातार आज इस सफर में हमारे साथ हैं और हमारे साथ है हमारा प्यारा साथी रेडियो। तो चलिए पुराना वो समय खंगालते हैं जब इस गीत को हम अक्सर सुना करते थे या हमारे माता पिता ने सुना होगा, हमारे दादा दादी ने सुना होगा। आपने भी सुना है कि नहीं बताइएगा मुझे इस गीत को सुनने के बाद। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए बता देती हूँ कि लता मंगेशकर की आवाज है, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, राजेंद्र कृष्ण की रचना और सलिल चौधरी की धुन।

जी आपको कुछ याद रहा? बताइए, ये गाना आपने कभी सुना था? याद कीजिए, आपने आपके माता पिता ने, दादा दादी ने, नाना नानी ने, आपके घर के अन्य सदस्यों ने इस गीत को जरूर सुना होगा। अगर सुना है तो बताइएगा। फिल्म प्रेम पत्र का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने कब सुना था और आपको ये गीत कैसा लगा था? हमारे श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भारतीय जनसंचार इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। 23 जुलाई 1927 को जब मुंबई से पहला व्यावसायिक रेडियो प्रसारण शुरू हुआ, तब किसी ने नहीं सोचा था कि मुट्ठी भर तरंगे एक पूरे राष्ट्र की आवाज बन जाएगी। आजादी की लड़ाई में रेडियो केवल सूचना प्रसारित करने का साधन नहीं था, बल्कि वो क्रांति की गुप्त आवाज थी। जब ब्रिटिश हुकूमत ने अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी, तब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित कांग्रेस रेडियो ने देशवासियों पर काफी खबरें आगे तक पहुंचाई थी और हमें सच्ची खबरों के बारे में पता चला था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज प्रसारित होने वाले सुरीला सफर कार्यक्रम में एक गीत जो अवश्य ही सुनाई देता है, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही जाए, स्वर्गीय कुंदन लाल सहगल जी की आवाज में वो आज सुनने को मिल जाएगा। बिल्कुल, आपको वो गीत सुनने को मिल भी गया है। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के बिना हमारा लोगों का जीवन बिल्कुल अधूरा है। और हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि सबसे ज्यादा गाना मैंने रेडियो पर ओल्ड इज गोल्ड सुना है। रफी साहब, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जी और गायकों की आवाज में मैं गीत सुनता हूँ। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि जब से रेडियो की समझ आई, आप पूछ रही हैं कि हमने रेडियो कब से सुना है, जब से रेडियो की समझ आई तब से ही सुना जा रहा है। एक श्रोता कहते हैं कि मैं छोटा था तब स्कूल से आकर तुरंत रेडियो ऑन करके गीत सुनता था, तब मुझे सुंजा आ ठंडी हवा। अच्छा, आपने सुंजा जी हाँ, वो है सुंजा आ ठंडी हवा, हाथी मेरे साथी का ये गीत आपको बहुत पसंद था। एक श्रोता लिखते हैं कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और रियल से अच्छा जो लगा रहता था एफएम ब्लूटूथ तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर हमें गर्व है। बेतार आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ये गीत हमें बेहद पसंद था रेडियो पर। अच्छा, हमने आपसे पूछा था कि आपने रेडियो में सबसे ज्यादा किस गीत को सुना है और आपको कौन सा गीत पसंद है। एक श्रोता कहते हैं कि हमने होश संभाला तब से रेडियो सुनना शुरू कर दिया, पर तब सिर्फ गीत सुनते थे। शायद 12 या 13 साल की उम्र थी, वो भी पापा की कारण से, पापा की वजह से उन गीतों का बड़ा शौक था उन्हें। शायद वो हमारे पास लगा शौक और आज तक वो जिंदा है और सदा रहेगा। एक श्रोता कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा बार रेडियो पर जो गीत सुना वो है बहारों फूल बरसा मेरा महबूब आया है। एक श्रोता का कहना है कि मैंने 10 साल की उम्र से सुनना शुरू कर दिया और अभी मैं 64 साल का हो गया हूं। मेरी रुचि अनुरूप मेरे बच्चे बीवी का भी लगाव है, रेडियो का विकल्प हो ही नहीं सकता है। एक श्रोता कहते हैं कि 4 साल की उम्र से सुन रही हूँ रेडियो, मेरे लिए मेरा हम सफर है। क्या बात है। और वहीं एक श्रोता कहते हैं कि 1995 से जब मेरे घर पर 2 सेल वाली रेडियो थी और रात में हवा महल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठकर सुना करते थे, तब से रेडियो मेरा दोस्त है और आगे भी रहेगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं।

जी हाँ बिल्कुल, हम उम्मीद तो बहुत कुछ करते हैं रेडियो से और रेडियो ने हमारी हर उम्मीद पूरी भी की है। तो बताइएगा कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, जैसा कि हमारे श्रोताओं ने कहा कि उन्होंने अपने यहाँ के जो केंद्र सुनाई देते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए फोन किया था, क्या आपने विविध भारती के लिए कभी फोन किया या आपके जो लोकल स्टेशन लगते हैं वहाँ पर हेलो फरमाइश के लिए क्या आपने कभी कॉल किया? अगर कॉल किया तो किस उद्घोषक से आपकी बात हुई, क्या बात हुई, कौन सा गीत सुनना चाहा था आपने? याद कीजिए उन पलों को जो आपने रेडियो की दुनिया में अपने अनमोल पल दिए हैं। और साथ ही बताइएगा कि जयमाला, हवा महल जैसे कार्यक्रम जो बरसों से सुने जा रहे हैं, आपने कब से इन्हें सुनना शुरू किया था और क्या लगातार आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं?

पलों को जो आपने रेडियो की दुनिया में अपने अनमोल पल दिए हैं, और साथ ही बताइएगा कि जयमाला, हवा महल जैसे कार्यक्रम जो बरसों से सुने जा रहे हैं, आपने कब से इन्हें सुनना शुरू किया था और क्या लगातार आप इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं? आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं प्यारा सा गीत, जिसे सुनकर हम अक्सर कहते हैं ना कि खुश हो जाया करते थे या हम चहक उठते थे इस गीत को सुनने के बाद। ये गीत है फिल्म प्रोफेसर का, आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत।

बताइएगा इस गीत को सुनकर कि क्या आपने इस गीत को कभी किसी के लिए गाया था या सोचा था?

0: तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज
1: तो आपको याद आया कि ये गीत आपने कब गाया था? क्या किसी महफिल में आपने इस गाने को गाया था या आपके लिए किसी ने गाया था? याद कीजिए वो पल जिंदगी के जब ऐसा कुछ घटित हुआ होगा और हमें लिख डालिए कि हाँ ये गीत मैंने किसी खास कार्यक्रम में गाया था। और हम गाते भी हैं अक्सर, हमारे जहन में बहुत सारे ख्यालात कल्पनाएं होती हैं। कई बार कोई गीत हमें किसी खास इंसान के लिए पसंद आता है, कई बार कोई गीत हम अपने लिए पसंद करते हैं। कुछ घटनाएं हमें अंदर तक आह्लादित कर देती हैं, कुछ घटनाएं, कुछ बातें, कुछ रेडियो के कार्यक्रम हमारी आंखों में आंसू ले आते हैं। ऐसे कौन से कार्यक्रम थे आपने सुने होंगे जयमाला में, जब हम सैनिकों की बातें करते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति आकर जयमाला कार्यक्रम पेश करता है, तो आपको क्या लगा होगा? आपने क्या सोचा देश की रक्षा करने वाले उन सैनिकों के लिए? क्या कभी आपके मन में कोई विचार आया? रेडियो के जरिए क्या आपने अपनी बात कहने का कोई मौका ढूंढा? ये सभी बातें आज इस सफर में होने वाली है। आप अपना मन आज खुलकर रख दीजिए।

कि रेडियो की दुनिया आपके जीवन में क्या मायने रखती है। एक श्रोता लिखते हैं कि धन्यवाद, आज आपको बहुत बढ़िया इबारत और शब्दों को लिखकर आपने हमारे प्रश्न आसान कर दिए हैं। जी बिल्कुल आसान है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि हमारे श्रोता हमारी बात को समझ पाए और हमसे जुड़ पाए, है ना। वही कोशिश हमारे साथ और आप भी कोशिश करते हैं। देखिए ना, आज पूरा आपकी जिंदगी में जो रेडियो की महत्ता है उस पे आपने अपनी बातें लिख डाली हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये आकाशवाणी है कि धुन से दिलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की सभी को शुभकामनाएं। सूचना, मनोरंजन और ज्ञान को घर घर पहुंचाने वाले सभी को, प्रसारकों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल आपको याद होगा, आप सुनते भी होंगे, आज भी हम भी ऐसा ही करते थे कि जब रेडियो की वो जो ST जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं बजने वाली होती थी, हम उठ जाते थे और वो धुन सुनना एक अलग ही दुनिया में ले जाता था। आपको उस धुन को सुनना कैसा लगा, आप उस धुन को सुनकर क्या सोचते हैं, उसके बाद वंदे मातरम का गान आता है, वो सब आपके लिए क्या मायने रखता है, ये सभी सुनने के बाद जीवन कैसा हुआ आपका, क्या अंतर आया जीवन में, ये सभी विचार आज आप रखने वाले हैं, है ना। आज सुरीला सफर में हम सभी ये बातें करने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की पीढ़ी भले ही पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग एप्स की दीवानी हो, लेकिन जो जादू ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर घरघराहट के बीच से एक साफ आवाज ढूंढने में था, वो आज की क्लिक संस्कृति में कहा। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब हम शॉर्ट वेव में गाना ढूंढा करते थे, मीडियम वेव में गाना ढूंढा करते थे, बहुत सुंदर, आपने बहुत प्यारी यादें हमारे सामने साझा की है, रख दी है। आप लिखते हैं कि रेडियो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और जब तक इंसानी जज्बात और आवाज का रिश्ता कायम है, रेडियो हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बनकर गूंजता रहेगा। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत का पहला मनभावन भाग कह रहा है कि लिख डालो वो सुरीले सुहाने सुनहरे भावभीने गीत जिन्हें सुनकर हम चकित होकर रुक जाते हैं। जी हाँ, मंदाकिनी जी के चुने हुए शब्द लेकर ज्यादा से ज्यादा गायकों का समावेश करके गीत चुन लेना, कहना मान तो लिया है, अब देखते हैं कितने नगमे सफल हो पाते हैं। कोई बात नहीं, देखिए यहाँ सफल और असफल होने का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम मिलजुल कर इस राह को आसान करने का है, जो आप कर भी देते हैं और आपने संदेश लिखा भी है, बहुत अच्छा। आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और यकीनन यही गीत हमने भी चुने हैं, बहुत सारे गीत हमारे गीत से मिलते भी हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो की आवाज अपने पैर में गीतों के घुंघरू बांधकर कब मेरे मन पर बस गई, ये मैं जान ही न सकी। जब रेडियो सुनना शुरू किया था तो क्या जानती थी कि ये आवाज एक सच्चे हमसफर की तरह दिन रात साथ बन जाएगी। आसमान से ऐसी ही सतरंगी आवाजें तरंगों पर सवार होकर जमीन पर उतरती हैं और साथ लाती हैं रूहानी मनोरंजन की सौगात। इन सुरीली धड़कनों ने जब हर घर में अपना वजूद कायम किया तो नाम मिला विविध भारती। विविध भारती की खासियत यह है कि उसके बड़े से बड़े महल में सभी के लिए कुछ न कुछ अनमोल मोती के नगीने छिपे हैं। कौन सा नगीना कब आपके मन आत्मा पर जाकर जादू कर जाएगा, आप कह नहीं सकते। आज विविध भारती हम सभी की सांसों का हिस्सा है और अंतिम सांस तक बना रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से रेडियो सुन रहा हूं, अधिकतर रात में ही फटाफट होमवर्क करने के बाद सुनता था। अच्छा, बचपन में उन दिनों रेडियो पर रात 10:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम आता था। उन दिनों इस प्रोग्राम में कई उद्घोषक जो है अक्सर अपनी आवाज दिया करते थे और उनका अभिवादन करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता था। और आपने उद्घोषकों का नाम भी लिखा है कि उनकी जो प्रोग्राम शुरू करने की आदत है वो आपको बेहद अच्छी लगती है। और आप लिखते हैं कि फिर मैंने रेडियो का रिसर्च भी किया, कोरोना के समय घर पर रहना हुआ तो रेडियो का रिसर्च किया, फिर उन दिनों कई उद्घोषकों को मैंने सुना और उसके बाद उन उद्घोषकों को मैंने YouTube पर सर्च भी किया। क्या बात है आपकी उत्कंठा सर आंखों पर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है, इसलिए बधाई और शुभकामनाएं तो देने का दिन बनता ही है। एक श्रोता लिखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका के संदर्भ में बयान करना हमारे लिए तो संभव नहीं है क्योंकि हम उस दौर के नहीं है, लेकिन दादी नानी से कहते हुए बहुत कुछ सुना था कि चोरी छिपे रेडियो पर प्रसारण सुना जाता था। मेरे जीवन में रेडियो की भूमिका रही, लेखन में स्पीड बढ़ाने के लिए समाचार और गानों को लिखकर अभ्यास किया गया। उस दौर में जब सब हंसते थे लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, पर मेरी स्पीड लिखने में बहुत तेज थी, वो आज भी है। क्या बात है, आपने कितनी बड़ी बात लिख दी है कि रेडियो से आपने क्या सीखा है, जो एक स्टूडेंट के लिए कितना जरूरी होता है, यानी अपनी राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग को साफ और सुथरा बनाना, साथ ही अपनी स्पीड तेज करना। बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सलील चौधरी की धुन। ये गीत सुनने के बाद भी आपका मन क्या कल्पनाओं की उड़ान में अपने उड़ान भरता था, बताइएगा। कल्पनाओं की उड़ान कैसी होती थी आपके इस गीत को सुनने के बाद, हमें लगता है बहुत सुंदर गीत

हमारे श्रोता का लिखना है कि रेडियो हमारे लिए बहुत मायने रखता है और बहुत बहुत आज का दिन मुबारक। आज के द्वारा सुरीला सफर पेशकश का आनंद लिया जा रहा है और गीत भी कर्णप्रिय है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पहले की रेडियो शुरू होने की धुन बहुत मोहक थी, अच्छा जो जिसे हम सिग्नेचर ट्यून कहते हैं, संकेत ध्वनि, उसके बारे में आप लिखते हैं कि रेडियो पहले ही खोलकर रख लेती थी, पहले एक सीटी बजती थी और उसके बाद धुन बजना शुरू होती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि आप तो आज सभी श्रोताओं को एकदम खुश कर दे रही हैं, सभी के कमेंट शामिल कर रही हैं, आपको सैल्यूट है। आप सभी को भी सैल्यूट है कि आप भर भर कर अपने विचार हम तक पहुंचा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो पर गीत सुनते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं, इसलिए मेरे लिए रेडियो बहुत खास है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ये गाना सबसे पहले मैंने रेडियो में सुना था, उसके बाद ये गाना आज भी मुझे याद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम रेडियो तब से सुन रहे हैं जब हमारे घर में रेडियो नहीं था और पॉकेट रेडियो खरीदने के लिए गुल्लक में पैसे जोड़ते थे। जब मेला आएगा तब उस मेले से जाकर रेडियो लेकर आता था और कभी कभी पैसे कम पड़ जाते थे तो क्योंकि घर के हालात थोड़े से बिगड़े हुए थे जिन्हें मैंने खुद ही सुधारा और बाद में बहुत सारे प्रोग्राम विविध भारती के सुने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि लव यू जिंदगी डियर जिंदगी ये गाना हमने रेडियो पर बहुत बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आपका अच्छा बोलना बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रारंभिक धुन

रोमांचित कर देती थी, किंतु जब भी बिजली कड़कती थी बड़े लोग रेडियो बंद कर दिया करते थे, बोलते थे कि रेडियो जल जाएगा, ऐसा कहा जाता था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं बचपन से ही रेडियो सुन रहा हूं और अभी मेरे घर में हर कमरे में छोटे बड़े लगभग 13 रेडियो हैं। बचपन में पिताजी ने फिलिप्स का रेडियो लिया था जिसे हम सब पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर प्रोग्राम सुनते थे, और विविध भारती मेरा मनपसंद चैनल है। सुबह 6 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक कोशिश करते हैं कि सभी कार्यक्रम सुने जाएं और हम उन सभी कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं। वहीं हमारे श्रोता ने कहा है कि आज का ये कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आ रहा है और आज के इस कार्यक्रम को हम अंत तक सुनेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रेडियो के प्रति मेरी दीवानगी का ये आलम है कि मैं आकाशवाणी लखनऊ, आकाशवाणी इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, और आकाशवाणी भोपाल के दर्शन कर चुका हूं। 1981 में 17 वर्ष की आयु में मैंने आकाशवाणी लखनऊ के दर्शन किए। वहां के तत्कालीन लोकप्रिय समाचार वाचक से मैंने मुलाकात की और आकाशवाणी लखनऊ में भी जाकर मैंने वहां के कई लोगों से मुलाकात की और उनका शब्दों में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्या बताऊं। आकाशवाणी लखनऊ को देखने का रोमांच आज भी मेरे दिमाग में जीवित है। कभी मौका मिला तो मैं मुंबई आऊंगा और विविध भारती देखूंगा और परिवार के प्रत्येक सदस्य से मिलना पसंद करूंगा। जी तो सुरीला सफर में अब हम आ गए हैं इस सोपान पर कि जहां हम दत्ताराम के संगीत निर्देशन में हसरत जयपुरी का लिखा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आवाज हमारे प्रिय गायक मुकेश की और फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आज सभी को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम में रेडियो की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। इसका जितना हम लिखे उतना ही कम है। आज इस कार्यक्रम में हम रेडियो में जो कार्यक्रम आ रहा है उससे सुनना पसंद करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हर साल 23 जुलाई को आज का दिन मनाया जाता है और ये दिन भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद दिलाता है, जब 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे, जो कि अब मुंबई स्टेशन से इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण किया था। इतिहास और सफरनामा पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से निजी कंपनी IBC द्वारा शुरुआत हुई थी और ऑल इंडिया रेडियो AIR द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने के बाद 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी कर दिया गया। विविध भारती साल 1957 में लोकप्रिय फिल्म संगीत के साथ विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई, जो घर घर में लोकप्रिय बनी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस युग में जब हर कोई स्क्रीन से चिपका हुआ है, तब भी रेडियो की मिठास और उसकी आत्मीयता कहीं न कहीं गूंजी रही है। मैं रेडियो को केवल एक संचार माध्यम नहीं बल्कि अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा मानती हूँ। ये वो साथी है जिसने बचपन से जवानी तक मेरे हर पड़ाव को संगीत में बनाया, ज्ञान से भरपूर किया और भावनाओं को शब्द दिए। वे दिन जब शाम होते ही घरों में रेडियो की आवाज गूंजती थी, BBC की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत और हवा महल की कहानियाँ, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये वो धागा था जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़े रखा। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। रेडियो से कोई चेहरा नहीं दिखता लेकिन आवाजों की आत्मीयता रिश्तों जैसी है। समय कितना भी बदले, रेडियो का जादू हमेशा जीवित रहेगा, धड़कता रहेगा उन दिलों में जो इसे सुनते नहीं महसूस करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस न केवल तकनीकी प्रगति का उत्सव मना रहा है बल्कि रेडियो की उस अटूट शक्ति को भी दर्शा रहा है जो एक विविधतापूर्ण राष्ट्र को सूचना पहुंचाने, शिक्षित करने, मनोरंजित करने और देश को एकजुट रखने में सक्षम है। भारत जैसे जैसे डिजिटल युग में आगे कदम बढ़ा रहा है, सार्वजनिक सेवा प्रसारण के सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि रेडियो भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण माध्यम बना रहेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज पहले तो रेडियो का भी लाइसेंस लेना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस में जाकर हम ये काम करते थे। बचपन से ही रेडियो सुनते आ रहे हैं। 1970 के बाद से क्रिकेट की कमेंट्री सुनते आए और 1982 के बाद टीवी जब आया तो तब भी हम विश्वसनीय साधन रेडियो को ही माना करते थे उन समाचारों को सुनने का। जी, तो आज बहुत सारे सवाल हम इस सफर में कर तो रहे हैं लेकिन सफर का वक्त भी तो खत्म होने वाला है, तो चलिए आपके विचार हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे गीत संगीत के माध्यम से। अब सुन लेते हैं ये गीत, हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम 20 साल बाद, शकील बदायूनी की रचना, हेमंत कुमार की ही धुन है। आपने इस गीत को बहुत बार गुनगुनाया होगा, याद करिए कब कब आपने रेडियो पर ये गीत सुना था और कब ये दिल आपके दिल की धड़कन बन गया ये गीत।

जी जी डरिए मत, हम अभी कहीं नहीं गए हैं, देखिए लौट आए हैं फिर, क्योंकि अभी थोड़ा सा सफर में वक्त और है, थोड़ा और आगे हम चल सकते हैं। हम आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहेंगे। जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंफी को। इनसे बातचीत करेंगी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करने वाले हैं, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। और इसे आप अपने रेडियो से, रेडियो सेट पर सुन सकते हैं और मोबाइल ऐप पर जो कि न्यूज ऑन AIR ऐप है उस पर जाकर भी आप सुन सकते हैं। तो बने रहिएगा विविध भारती के साथ। हमारे श्रोता ने लिखा है कि पूरे मोहल्ले में सबसे पहले रेडियो हमारे घर पे आया था। सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त समाचार सुनने के लिए सभी लोग हमारे घर आया करते थे। वो अभी भी थोड़ा बहुत हमें याद है। खास मौके पर विशेष प्रसारण, आपदा संबंधी जानकारियां और मनोरंजक कार्यक्रम, सब कुछ उसके द्वारा मिलता था। बाकी के समय रेडियो बजता रहता था, तब पुराने गीत से हम बहुत कुछ सीखा करते थे। बहुत सारे गाने हमें आज भी कंठस्थ हैं। बड़े हुए तब पढ़ाई के वक्त भी छोटा रेडियो चुपके से रख लेते थे। मुझे याद है कि मुझे और दीदी डांट पड़ा करती थी कि हम रेडियो चालू करके सो जाते हैं, और फिर भी हम नहीं मानते थे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर की शुरुआत बहुत ही सुरीली है, वर्षा ऋतु है और बरसात के गाने सुनने को मिलेंगे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। भाई आज तो हम कुछ और ही बरसा रहे हैं, आपने सुना होगा कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और रेडियो का हमारे जीवन में, हमारी यात्रा में, हमारी जीवन यात्रा में क्या योगदान है, इससे हम सभी परिचित हैं और रेडियो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। रेडियो की हर वक्त ये भूमिका सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता मानते हैं। तो चलिए आखिरी सोपान पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत। अक्सर जब हम बहुत उदास निराश रहे जिंदगी में, तो इस गीत को हमने कई बार गुनगुनाया। SD बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी की रचना, किशोर कुमार की आवाज, फिल्म का नाम नया जमाना। याद कीजिए वो वक्त जब आप भी कहीं नाराज थे किसी से और आपने इस गीत को मन ही मन गुनगुनाया था या गाया भी होगा।

जी हाँ, देखा जाए तो रेडियो का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये दूर दराज के इलाकों में बिना इंटरनेट या बिजली के भी जन जागरूकता फैलाने, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने और स्थानीय संस्कृति को सहेजने में अहम भूमिका निभाता रहा है और निभाता रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि हम रेडियो की दुनिया में कायम रहेंगे, आज का ये सफर समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी को दे दें अब इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

0: Military Affairs Minister Kiran Rijiju. India calls for zero tolerance against terrorism at ASEAN ministerial meeting in Manila. India rejects Pakistan's remarks on the Indus Waters Treaty at UNSC, says treaty to stay in abeyance until cross-border terror ends. And Glasgow Commonwealth Games set to begin this evening, 125 Indian athletes to participate. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
2: आप जिस हिसाब से सदन में सरसा साते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार क्लियर कट बताया है सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार। ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
3: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पर चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी

0: पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूं कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
1: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
1: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा

0: बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वतारिणी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर आयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
1: सभी पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास संभावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा
2: रेगुलरली डिप्लॉयड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी।
0: श्री हरी ने कहा कि केंद्र शासित देश हमेशा भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोश बोन प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयोरकर बोर्डचवे से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का

कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत सुना। स्वर मोहम्मद रवि का था, फिल्म का नाम था आज और कल। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। जुलाई माह की 23 तारीख यानी आज हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं और इस अवसर पर आज विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज के विशेष इस सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण भी करेंगे, तो आप सभी जुड़े रहिएगा विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट और मोबाइल ऐप यानी न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म चित्रलेखा से लिया है। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा है और धुन बनाई है रोशन ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चित्रलेखा। एक विशेष सूचना हम आपको दे दें, जुलाई माह की 23 तारीख को यानी आज ही हम प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर आज विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी को। इनसे बातचीत करेंगी हमारी रेडियो सखी ममता सिंह। आज की इस विशेष सखी सहेली कार्यक्रम का हम फेसबुक लाइव प्रसारण करेंगे, तो आप सभी जुड़िए विविध भारती से। इसे आप अपने रेडियो सेट पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। ये थी एक महत्वपूर्ण सूचना और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म लीडर का दो गाना, स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के, गीत रचना शकील बदायूनी की है और तर्ज नौशाद साहब की।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, जीएस कोहली का संगीत, फारूक केसर के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम शिकारी।

सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज है 23 तारीख राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: सलाम, सबका सलाम। आज इस अवसर पर विशेष सखी सहेली में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी जी को। आप राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आपका बचपन बीता, रेडियो के लगाव ने उन्हें आज इस ओहदे तक पहुंचाया। तो चलिए हम सभी मिलकर मीनाक्षी जी का विविध भारती के सजीव प्रसारण में हम स्वागत करते हैं, और इस प्रोग्राम को हम फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं। और फेसबुक लाइव की जिम्मेदारी संभाली है जुबैर खान हमारे प्रोड्यूसर और अनुश्री पाठक इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। मीनाक्षी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती स्टूडियो में आके, और आज प्रसारण दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि विविध भारती के सभी श्रोताओं से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आज इस प्रोग्राम के जरिए।
0: जी
1: धन्यवाद।
0: तो भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और विविध भारती की पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहला प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से मुंबई सिटी में।
0: जी।
1: और प्रसारण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि वैसे तो आज संचार के कई माध्यम है हमारे पास, इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है।
0: जी।
1: फिर भी मुझे लगता है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। रेडियो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और भरोसेमंद साथी है सबका। तो आज प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस ब्यूटीफुल मीडियम से आप सभी जुड़े रहे हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ताकत से अवगत कराएं। और आज इस प्रसारण दिवस पर रेडियो के लिए मैंने कुछ 2-3 लाइंस बनाई है, वो मैं बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: डिजिटल की भीड़ में आज भी अपना एक मुकाम है।
0: क्या बात है।
1: गाड़ी से लेकर मोबाइल तक अपनी एक पहचान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: स्क्रीन से थकी आंखों को देता ये आराम है। पुराना होकर भी रेडियो आज भी जवान है।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने उत्साहित हैं, उमंग में डूबे हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आई है, हमारे श्रोता ढेर सारी बातें लिख रहे हैं, और लगातार सभी श्रोता आपका स्वागत कर रहे हैं खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे स्वागत के लिए?
1: बस मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी।
0: जी।
1: वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं, और मैं ममता जी से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेश इस प्रोग्राम में शामिल करें वो।
0: तो अगर हम सिलसिला शुरू करेंगे तो शायद हमें खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन हम बीच बीच में टिप्पणियां श्रोताओं के शामिल करते रहेंगे। देखिए ना, हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है

0: कार्यनिष्ठा, कुशल प्रबंधन और कलात्मक सोच का अद्भुत संगम। हमारी महानिदेशक अपनी निष्ठा और प्रतिभा से हर कामकाजी महिला को प्रेरित करती हैं। परिवार और करियर का अद्भुत संतुलन, कुशल नेतृत्व और एक चित्रकार की संवेदनशील सोच। हमारी महानिदेशक जी केवल एक बेहतरीन प्रशासक ही नहीं बल्कि हर एक के लिए एक प्रेरणापुंज है। ये आपको निजी तौर पर भी जानते हैं मेरे ख्याल से।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: तो इन्होंने आपके लिए ये खास बात लिखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का ये जो समय है, डिजिटल है, तो आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है, आप कैसे देखती हैं?
1: जी हाँ।
0: खास तौर से आकाशवाणी की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगी?
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि आज हमारे पास जन संपर्क के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, फिर भी रेडियो की इम्पोर्टेंस है आज के दौर में भी, विशेषकर आकाशवाणी की।
0: जी,
1: तो इसमें मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, भरोसे की बात है, मुझे लगता है आकाशवाणी पर जो भी इंफॉर्मेशन और न्यूज जाती है
0: जी,
1: उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। साथ ही आकाशवाणी ने हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण में बहुत काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक कंसर्ट्स और जो हमारे विविध कार्यक्रम है, जैसे कि विविध भारती हमारा चैनल है
0: जी, जी,
1: तो हमारे जो कार्यक्रम में जो विविधता है वो पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर में सभी लोगों का साथ दिया है
0: जी।
1: तीसरी एक बात ये भी है कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई डिजास्टर वाली जो कंडीशन, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसे में जो बाकी संचार के जो मीडियम है वो थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है
0: जी,
1: लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमेशा बना रहता है सभी के साथ, और इसके थ्रू कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है
0: जी,
1: और जनता तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंचाई गई है
0: जी।
1: तो आकाशवाणी की प्रासंगिकता तो हमेशा बनी रहेगी, मुझे लगता है।
0: जी बिल्कुल सही कह रही है। और अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कुछ यूं कि रेडियो जैसे हमारा साथी बन जाता है, विविध भारती खास तौर से कभी दादी बनके, कभी नानी बनके, कभी माँ, कभी बहन, भाई, भाभी बनके आपका साथ निभाती है। दुख के पलों में वो फाहा लगाती है और खुशियों के पल में जैसे लगता है कि खुशी मना रही हमारे साथ। कोई एक गाना बजता है जब विविध भारती से और हमारे श्रोता कहते हैं कि जैसे लगता है कि ये तो आज हमारे घर ये खुशी का मौका है और आपने ये गाना बजाया तो हमारा साथी बन गया। तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए चुनौती भी होती है, खुशी भी होती है। तो अब जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जब गीत संगीत का साथ ना हो तो फीकी सी अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर एक गाना बनता है, बताइए कौन सा गाना सुना है?
1: बिल्कुल
0: जिंदगी प्यार का गीत है।
1: या, बहुत सुंदर, आपने मेरी पसंद पहचान ली ममता जी। हाँ?
0: सुनते हैं
1: जरूर से, प्ले करिए।
0: सौतन फिल्म का ये गाना।

0: आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं, जो उप महानिदेशक है आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था, फिर एफएम आया, फिर एसएमएस का जमाना आया, फिर टेलीफोन, फोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई, तो मीडियम वेव एफएम तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है और आज एफएम इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव ही चलते थे, और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफ़ी लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं, क्योंकि आयनोस्फेयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या बीबीसी रेडियो उस समय जो चलते थे शॉर्टवेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग भी चलता था, उसमें भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्टेट में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है।
0: जी,
1: लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया एफएम, और एफएम ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया।
0: जी,
1: और एफएम में सबसे बहुत अच्छी चीज है कि आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए एफएम उसके बाद से कंटिन्यूअसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि जो एफएम के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं।
0: जी,
1: तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली एफएम ट्रांसमीटर का, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए एफएम ट्रांसमीटर को लगाना होता है।
0: जी जी,
1: उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फोन में हम सारे रेडियो चैनल सुन सकते हैं। और आज प्रसारण दिवस पे जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो मुझे जरूर से मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारा आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, जिस पर आप पूरे भारत के सभी आकाशवाणी चैनल, जो कि विभिन्न भाषाओं में है, आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग उसका सुन सकते हैं।
0: जी जी,
1: तो मैं आज इस दिन सबसे ये कहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करिए, और फिर आकाशवाणी का और विविध भारती के सभी प्रोग्राम्स का आप न केवल अपना देश, विश्व के किसी भी कोने से आप इसका आनंद उठा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना श्रोता कैसे आनंद उठा रहे हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हम पोस्टर डाला है, और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत

0: के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा है मन में। सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे। पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे ही बड़े हुए हैं, रेडियो सुन सुन के, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ रेडियो की आवाज सुनाई पड़ रही होती थी, माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा करें अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बड़ोदरा से हूँ, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूँ कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज के जरिए कल्पनाओं के एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहा हूं तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला, और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में अव्वल रही और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी, धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप।
1: तो ममता जी, मैं जो भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी। और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुँची हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है। और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, और स्पेशली साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का काफी मुझे इंटरेस्ट था। तो जब टेंथ के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, टेंथ के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर। तो साइंस मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस नहीं लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफी दिलचस्पी थी तो मैंने ये लिया। और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़े से चैलेंजिंग ऐसे मिल जाती थी बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं मैथ्स में, चल पाएगी कि नहीं। तो मुझे जो वो चीज थी बहुत ही एक जैसे बोलते हैं ना कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है,
0: चुनौती के रूप में लिया,
1: चुनौती के रूप में। और फिर मैंने 11th 12th काफी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने फिर, याद है मुझे 11th 12th में मैंने बहुत मेहनत की जो सब्जेक्ट्स थे मेरे, और वहां पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर अलग अलग साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो टीचर थे ट्यूशन लेके। और फिर मैंने, चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी
0: जी, बिल्कुल।
1: और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया और
0: क्या बात है,
1: स्टेट लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है, तो उस समय जेई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था, हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट
0: जी।
1: तो उसमें मैं अपीयर हुई थी और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर जोधपुर में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ, एक बात मैं बताऊंगी कि चूंकि जब उस समय ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में और दूसरा लड़कियों को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी,
0: शहर से बाहर नहीं जाना
1: झिझक रहती थी
0: जी जी,
1: तो वो एक चैलेंज था। तो काफी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता कन्विंस हो गए और मुझे इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफर और वो बचपन के दिन।

0: जो बचपन में तो मुझे याद है, मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी और मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता था।
1: क्या बात
0: उसकी
1: है।
0: कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे तो घर पे थोड़ा मैं जैसे उस समय इतना टीवी भी नहीं था तो ये सब हॉबीज मेरी थी उस समय भी।
1: तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी। तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है, तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई
0: नहीं,
1: आपने, या कोई डांट मार खाई हो तो वो भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं
0: नहीं, नहीं
1: को। जी
0: इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा। हाँ
1: जी जी तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ
0: जी,
1: जीती
0: हाँ
1: थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ठीक है, बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दे कि हम यहां पहुंच सकते हैं। और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं, तो अब यहां पर एक गाना आना चाहिए।
0: जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
1: कौन सा गाना बताइए? रोजा फिल्म का गाना सुनवाएं।
0: ठीक है, रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी।
1: जी बिल्कुल।

0: दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है। और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ मीनाक्षी जी। हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासतौर से सखियों के लिए, जहां पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये ना करो वो ना करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो जमाना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफी अलग रहा होगा, तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है?
1: कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी, और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी, तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग, तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है। बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ, वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह।
0: जी जी।
1: तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो उसमें एक सोलो डांस कॉम्पिटिशन भी रखा गया था, बॉयज के लिए था। तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी उसमें पार्ट लेना है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था कॉलेज डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या अच्छा। इस तरह की चीजें, क्योंकि जब भी समर वैकेशन होती थी हम लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहाँ पे ये सारी चीजें हम सीखते थे। तो जब मैंने फिर पता किया डांस कंपटीशन में मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसे कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज्ड,
0: जी
1: तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज के साथ ही आप पार्टिसिपेट कर लीजिए और उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो फिर मुझे लगा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, और जो आपने जो अभी गाना बजाया है दिल है छोटा सा, वही मेरी पसंद का गाना था उस समय। और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 डेज थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की, और फिर कॉम्पिटिशन वाला दिन आया। और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहाँ पे, और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी। और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइस का वक्त आया, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइस मुझे मिला, और 16 बॉयज थे मेरे साथ कंपटीशन में।
0: क्या बात है,
1: 16 बॉयज एंड आई वाज द ओनली गर्ल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बसती है।
0: क्या बात है।
1: और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो हम किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं।
0: जी।
1: तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का।

बिल्कुल सही बात है, और चैलेंजेस को लेना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती। और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है। यहाँ पर मीनाक्षी जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आते और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी है।

0: दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधीर श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑडियो डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की गहरी जानकारी है, मेरी शुभकामनाएं आपको। और भी बहुत सारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुड़िया की बात कहकर आपने खुशी दोगुनी कर दी, हम सभी बचपन की बातों से बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी जी आपने गुड़िया की बात कही थी उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी कहानी सुनकर कुछ कुछ अपनी बातें याद आ रही हैं स्कूल टाइम की, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रही हूं, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को, पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं, कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इन सभी श्रोताओं?
1: टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। और श्रोताओं के जो डाउट है, बिल्कुल जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है, तो बचपन में यही लगता था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है।
0: बिल्कुल, और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल अब हम आपसे जानना चाहते हैं कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई?
1: एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते थे। हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था और उस समय तो चूंकि शॉर्टवेव ही ज्यादा हम चलाते
0: थे। आपने कोई रेडियो तोड़ा तो नहीं था?
1: नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको ट्यूनिंग बार बार ज्यादा के करना पड़ता था जी। क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड शॉर्टवेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे, तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफी सुना करते थे और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था, तो रात को हमेशा हम एक घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है उसमें भी काफी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम
0: जी जी,
1: तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी और फिर बहुत ही वो ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है और काफी टफ एग्जाम होता है
0: जी।
1: और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट

0: है, उसमें डायरेक्टली क्लास वन ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है
1: जी।
0: तो उसका रिटर्न टेस्ट होता है और रिटर्न टेस्ट का के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है
1: जी,
0: और ये सारे प्रोसेस में करीब करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज निकलने के बाद ही मैंने ये एग्जाम में मैं अपीयर हुई और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद चूंकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज
1: जी,
0: तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया क्योंकि काफी ये एक जैसे बोलते हैं थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहाँ पे कर रहे हैं
1: जी,
0: तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा और आज मुंबई
1: जी,
0: तो 27 ईयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए और काफी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ।
1: जी बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं और हम सबके लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है। भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे, तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई ना कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा, तो जो भी बोलें तथ्यपरक बोलें। और देखिए हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन हैं। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफर मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका पर, जन जन को जोड़ने वाले और भी बहुत सारी बातें
0: अच्छा।
1: इन्होंने लिखी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आपके लिए कि आपके स्वागत और इंतजार था बहुत समय से। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल याद करने लायक है और ध्यान से सुनने लायक है। कुछ श्रोताओं ने रेडियो की चित्र भी लिख भेजे हैं कि, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सुन रहा हूँ और एक शिक्षक हूँ और सखी सहेली सुन रहा हूँ, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर वीबीएस अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, जरा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम ले।
0: श्योर श्योर,
1: कौन सा गाना हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का।
0: हाँ हाँ,
1: माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था, सुनते हैं यही गाना
0: जी।

0: को क्लीन करके और फिर उसको अच्छे से स्टोर किया है, तो वो काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा करने में, मेरे इंटरेस्ट का भी था और उसके लिए फिर मुझे रिकॉग्निशन और एक अवार्ड भी मिला, तो इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आया ममता जी।
1: जी, और ये सुनते हुए हमें बहुत मजा आ रहा है ये सब बातें कि आपका योगदान कितना ज्यादा रहा, और हमें पता है कि एक महिला के लिए एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना, एक साथ कई दायित्व निभाना कितना मुश्किल होता है हम सब महिलाओं के लिए। आप एक महिला है खुद, और महिलाओं के लिए किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचना काफी संघर्ष में होता है, चुनौतीपूर्ण भी होता है, तो आपने किस तरह से ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाया, और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी बताइए, और किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया, क्योंकि हमने सुना है कि जब शुरुआती दौर में, करियर की शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया, एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ।
0: नहीं, बहुत आपके सवाल बहुत, एक मुझे पुरानी मेमोरी में फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार, और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करना है, और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है, उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है, तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे। तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी मेरी ओर से, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं तो पहला तो हम ऑफिस की चीज ऑफिस में रखें, घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें, और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे, अपने आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा मैं ये कहूंगी कि कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उसमें सबसे अहम चीज है कि डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं, बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज है, और लाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके ही आप अपने में काफी इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा।
1: जी,
0: उसके अलावा ममता जी मैं आपको दो चीजें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं वैसे ही एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें महिलाओं को काफी हेजिटेशन होता है, और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे सेक्शन से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए घर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए, और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी कि ये सब चीजें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज है, जो शौक है, वो भी वो पूरे करे, क्योंकि क्या होता है समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं।
1: जी,
0: और जब आप खुद करके देखेंगे वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं, क्योंकि फॉर एवरी वन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज इम्पॉर्टेंट,
1: बिल्कुल
0: दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, बैलेंसिंग इज द की।
1: जी, सही कह रही हैं आप, और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं, और वो बड़े बड़े

0: वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है। और एक दो शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है, तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी।
1: हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो डांसिंग का शौक भी अच्छी चीज है क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है
0: जी,
1: वो मैं कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी, क्योंकि
0: क्या बात है
1: अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए डांस के, तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए। और जिम में, जिम के लिए तो मैं मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं, तो काफी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम, तो वो माहौल वैसा ही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर से तो मैं ये जा ही रही हूँ। और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज का शौक था। स्कूल टाइम में मैंने एक दो क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और नेचुरली 11th 12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक पूरा नहीं कर पाई मैं, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की। और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है, कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग।
0: क्या बात है,
1: जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया। तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें करके कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें, कि आप कुछ ना कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ जिससे आप सीखें दूसरे सीखें। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि काफी चीजें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ।
0: जी जी,
1: बच्चे हैं चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं, तो उनसे भी मैं बहुत चीजें सीखती हूँ।
0: जी जी,
1: और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उसमें जो नई नई चीजें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूं और अपने आप को अपडेटेड रखूं।
0: जी, मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि ये सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अपने बच्चों से भी सीखें, और तकनीक के इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो। और अब यहाँ पर एक टिप्पणी एक दो अपने श्रोताओं तक पहुंचा रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है। क्या बात
1: क्या
0: है भाई,
1: हाँ?
0: आज भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद, वही अपनापन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे शहर से हुई है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से FM ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है। और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी, सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्म पत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा। बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं। यहाँ पर गाना है ये

0: ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे जरूर परवान दें, उसे जरूर पंख दें, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी हमें बताइए कि अंत में देशभर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी?
1: ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है, और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती है
0: जी,
1: परिस्थितियां तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं
0: जी।
1: तो लास्ट में मैं दो लाइन कहूंगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए,
0: क्या बात है,
1: न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए,
0: क्या बात है, बहुत।
1: तो जीवन में बहुत जरूरी है कि हम हर चीज का बैलेंस बनाए रखें, हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूंगी मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आई और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। जुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, और तेजश्री कामले, HR पाटले, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल, किरण बंग, समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, और कार्यक्रम के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर संतोष जाधव जी, और इंजीनियरिंग प्रमुख राजेश बेलदार जी और सोपान तायडे जी, आप सभी का हम शुक्रिया अदा करें आप सभी के सहयोग से। और सहयोग से के माध्यम से ही हम यहां तक पहुंचे और एक सजीव प्रसारण में आपसे हमने इतनी सारी बातें की, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब बस इतना ही कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप
0: नमस्कार,
1: बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं और जो रेडियो पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या रेडियो सेट के थ्रू देख रहे हैं। इसी

0: विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं आपका दोस्त यूनुस खान आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मुंबई में बारिश की झड़ी लगी है और जिस तरह की बारिश हो रही है उसके बीच विविध भारती के स्टूडियो से हम अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम की खासियत ये है कि पूरे देश के बल्कि विदेश के श्रोता भी हमसे जुड़ते हैं और कई ऐसे श्रोता हैं जो लंबे समय से कॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और बड़ी मुश्किल से उनका कॉल लगता है। ऐसा है विविध भारती के इस फोन इन कार्यक्रम से आपका प्यार। तो चलिए देखते हैं कि आज पहला कॉल किसका है। हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर मैं अब्दुल हमीद छेपा बोल रहा हूँ, जोधपुर राजस्थान से।
0: बताइए जी, क्या करते हैं हमीद भाई?
1: सर मैं बैंगल्स का काम करता हूँ सर, चूड़ी पे प्रिंट का काम है मेरा सर।
0: तो ये खानदानी काम है?
1: सर ये खानदानी काम है सर, खानदानी काम सर हमारा कपड़ों पर ब्लॉक प्रिंटिंग का है।
0: ये तो मुझे पता है कि जो छिपा समुदाय के लोग होते हैं ये ब्लॉक प्रिंटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में, है ना?
1: जी सर।
0: कितने सालों से ये काम चला आ रहा है और देश के किन किन राज्यों में आप लोग मौजूद हैं?
1: कई पीढ़ियों से हमारा ये काम चला आ रहा है सर, ये हमारा खानदानी काम है ब्लॉक प्रिंटिंग का।
0: जी।
1: राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों में ये छिपा समाज निवास करता है सर, ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य करता है।
0: आपने क्यों छोड़ दिया ये काम?
1: सर मैंने सर काम छोड़ा नहीं सर, मेरा शुरू से रुझान दूसरे काम में था और मैं चूड़ी के काम में मेरा रुझान लग गया और मैं चूड़ी पे प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर। जो राजस्थानी चूड़े बनते हैं हमारे, बड़ी से छोटी छोटी छोटी चूड़े बनते हैं, उन पे प्रिंटिंग का काम होता है सर।
0: ये लाख की चूड़ियाँ हैं या कांच की हैं?
1: ये सर कांच की चूड़ी भी होती है और प्लास्टिक की चूड़ी भी होती है सर।
0: अच्छा अच्छा, राजस्थान में तो लाख का काम बहुत ज्यादा होता है।
1: राजस्थान में सर लाख का काम जयपुर में ज्यादा होता है सर।
0: अच्छा अच्छा,
1: और हमारे राजस्थान की परंपरागत चूड़ी है ढालू मुंह की जिनको बोलते हैं।
0: जी जी।
1: यहाँ की महिलाएं पहनती हैं, बहुत आकर्षक लगते हैं सर पहने हुए वो की।
0: बहुत सारे चटक रंग होते हैं, है ना?
1: और राजस्थान तो सर चटक रंगों के लिए प्रसिद्ध है सर।
0: बिल्कुल, मुझे बहुत सारी जानकारियां मिल रही हैं आपसे बात करते हुए। मुझे ये बताइए कि जब ब्लॉक प्रिंटिंग का काम होता था तो चूड़ियों पर पेंट करने का काम आपने खुद सीखा, ईजाद किया, क्या मामला है?
1: सर चूड़ी पर पेंटिंग काम करने का काम मैंने खुद ने सीखा है सर। पहले मैं कहीं जाता था, वहाँ चूड़ी काटने का काम होता था, वहाँ पर उसने हमें बताया इस पे कुछ काम करो, तो मैंने अपने मर्जी से काम करके बताया जो आज तक चल रहा है अल्लाह के करम से।
0: क्या बात है, तो ये बहुत ही अनूठा काम है और कलाकार को अपनी कला से बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। दुनिया के किन किन देशों तक आपका काम पहुँच चुका है?
1: हिंदुस्तान में सर माल जाता है सर हमारा। अच्छा। मैं लेबर हूँ, मजदूरी करता हूँ, प्रिंटिंग का काम करता हूँ सर, और हमारे काम को गति देता है विविध भारती।
0: किस तरह से, ये भी बताइए
1: सर। विविध भारती में इतने मजेदार कार्यक्रम आते हैं, इतने मधुर गीत बजते हैं, इतनी अच्छी जानकारियाँ मिलती है, पूरे देश से हमें मिलने का मौका मिलता है सर एक ही प्लेटफॉर्म पर, जो ये काम सुचारू रूप से विविध भारती करती है।
0: क्या बात है, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर मुझे फिल्म राजकुमार का गाना सुनना है, तुमने पुकारा और हम चले आए।
0: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से एम ताहिर बोल रहा हूँ सर।
0: हाँ जी ताहिर जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर दुआएं हैं, नजर इनायत है, सब कुछ मस्त है, अल्लाह का करम है सर।
0: क्या बात है, आपके इलाके के बारे में बताइए।
1: सर इलाके के बारे में, ये एक सर पहाड़ी इलाका है सर ये हमारा बढ़ापुर, और चारों तरफ से यहाँ पे नदियाँ हैं, उसके ऊपर एक टापू पे बसा हुआ जैसा है।
0: क्या बात है, तो चारों तरफ कौन कौन सी नदियाँ हैं?
1: ये सर यहाँ पे खो है, वो नक्टा नदी कहलाती है, गुला नदी कहलाती है, और यहाँ से कुछ ही दूर, यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे पर्वतीय ये हिस्सा है।
0: क्या बात है, आप क्या काम करते हैं?
1: मैं सर एक शॉपकीपर हूँ आफ्टर ग्रेजुएशन।
0: ओके, और रेडियो से विविध भारती से जो नाता है आपका, उसके बारे में बताइए।
1: वो सर आप लोगों की पेशकश से काफी पुराना नाता है, जो बात रेडियो में है वो जितने भी प्रोग्राम और है, यानी कि मनोरंजन का साधन है, वो रेडियो के मुकाबले नहीं है सर।
0: क्या बात है, ये जानकर बहुत अच्छा लगा,
1: खास करके आपकी पेशकश।
0: जी शुक्रिया,
1: मैं आपसे पहली बार बात हुई लेकिन कार्यक्रम आपके मिस नहीं करता हूँ, आपकी जो पेश करने का अंदाज ही आकाशवाणी नजीबाबाद है सर हमारे पास में, यहाँ पे 20-30 किलोमीटर दूर में।
0: जी जी
1: जी हाँ, उसके पास से ही हूँ मैं, 20-30 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, हमारे नगर पंचायत से।
0: अच्छा, इन दिनों के कौन से प्रोग्राम है जो आपको याद रह गए हैं?
1: विविध भारती के सारे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जितने भी होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, और हेलो फरमाइश तो है ही, उसमें तो कोई दोराई नहीं।
0: आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है तवायफ, और गीत के बोल है सर तेरे प्यार की तमन्ना, और आवाज है महेंद्र कपूर जी की।
0: ये बीआर चोपड़ा की फिल्म थी, और अच्छे गाने की याद दिलाई है, बहुत कम बजता है ये गाना। पूरी हो रही है आपकी फरमाइश।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: सर जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: अच्छा, सबसे ज्यादा मजा तो इस बात से आया कि आप छिंदवाड़ा से बोल रहे हैं।
1: जी, और सर ये मीठी मीठी आवाज, ऐसा लग रहा है कि हमारे बड़े आदरणीय यूनुस खान जी बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने सही पहचाना।
1: और सर मैं आपसे बहुत बेताब था सर बातें करने के लिए। सर मेरी आपसे हेलो फरमाइश के माध्यम से सर 2 से 3 साल बाद बात हो रही सर आपसे मेरी।
0: बहुत ही बढ़िया। छिंदवाड़ा शहर से एक अलग तरह का लगाव रहा है, कभी हम वहाँ रहे हैं और आकाशवाणी से जुड़े भी रहे हैं वहाँ पर।
1: बिल्कुल सर जी, और आप हमारे आकाशवाणी छिंदवाड़ा पे आए थे सर जी, उसके बाद में दूसरे दिन आकाशवाणी का मेरे को जानकारी हुई सर, बहुत दुख हुआ मेरे को, ये लगा कि एक दिन पहले जान लेता था मेरे को आकाशवाणी।
0: जी मुलाकात होती। बिल्कुल बिल्कुल, क्या हालचाल है छिंदवाड़ा की, बारिश कैसी है?
1: हमारे यहाँ पे तो बारिश सर अभी 2 दिन से हो रही है सर जी, और अभी पानी थोड़ा थोड़ा गिर रहा है सर अभी तो।
0: अच्छा, बढ़िया है। और अब ये बताइए कि विविध भारती छिंदवाड़ा में तो FM पर सुनाई देती है ना?
1: जी बिल्कुल सर, हम ऐप के माध्यम से विविध भारती सुनते हैं सर जी, न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सर।
0: अच्छा, और सबसे ज्यादा पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है आपका?
1: सर जी मैं तो हेलो फरमाइश बहुत ज्यादा सुनता हूँ, और इसके बाद में हेलो सहेली भी सुनता हूँ सर जी, बहुत ही अच्छी प्रस्तुतिकरण होते हैं सर मुंबई आकाशवाणी के, और हमारे जो भी अनाउंसर है सर जी बहुत ही अच्छी वार्तालाप के साथ ये आज के फनकार सब बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: आज किस गाने की फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: जी सर आज मुझे सुनना है फिल्म का नाम है सर प्रेम रोग, और गीत के बोल रहेंगे सर जी भवरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया राजकुमार।
0: क्या बात है, बढ़िया गाने की फरमाइश आपने की है। ये फिल्म देखी है आपने?
1: जी जी सर, प्रेम रोग फिल्म सर बहुत ही अच्छी है सर जी, और इसके गाने बहुत ही अच्छे लगते हैं सर जी।
0: बढ़िया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, राज कपूर की ये फिल्म। शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो यूनुस जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं?
1: सर मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ, पर मैं आपका प्रोग्राम हमेशा सुनती रहती हूँ। सर पहले से मैं ये बोलना चाहती हूँ, जय जगन्नाथ, क्योंकि मैं पूरी ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ, इसलिए जय जगन्नाथ आपको।
0: जय जगन्नाथ।
1: और हमारा अभी रथ यात्रा गया है तो मैं प्रियदर्शनी मिश्रा बोल रही हूँ, अभी मैं शायरी बोलती हूँ। मोहब्बत के भी कुछ अंदाज होते हैं, जागते आँखों में भी कुछ ख्वाब होते हैं। जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, जरूरी नहीं गम में आंसू निकले, मुस्कुराते आँखों में भी सैलाब होते हैं।
0: क्या बात है, बेहतरीन। अब मुझे ये बताइए कि आपको विविध भारती से इतना लगाव रखती हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपने तय कर लिया था कि आज मुझसे बात करनी है।
1: सर आप जैसे स्टार कहाँ मिलेंगे, विविध भारती में मिलेंगे, इसलिए इतना लगाव है
0: जी। कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं प्रियदर्शनी को?
1: मुझे अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपका प्रोग्राम, जब आप आते हैं, मैं सच में बोल रही हूँ, दिल से बोल रही हूँ, आप मेरे जज्बात को समझ सकते हैं
0: जी, जी।
1: फिर मुझे हेलो सखी सहेली और गीतों से भरी कहानी, ये बहुत अच्छा लगता है। और आज के फनकार बहुत सारे हैं सर, जैसे मैंने विविध भारती, जैसे मेरे बचपन से विविध भारती सुनते आई हूँ।
0: अच्छा।
1: आज पूरा ओडिशा में हलचल मच जाएगा, मेरा लग गया फोन करके।
0: बिल्कुल,
1: पूरी यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है।
0: तो आप किस शहर में, आपने कहा आप जगन्नाथपुरी में?
1: भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से हैं।
0: तो
1: विविध भारती ऐसा क्या होता है ना, सभी कोई मिल जाते हैं, विविध भारती जैसा कोई स्टेशन नहीं मिलेगा हमें, जैसे लगता है हम ही बैठते हैं, हम ही बात करते हैं, हम ही सब कुछ है, क्योंकि आप एहसास नहीं करने देते हम पराए हैं।
0: बिल्कुल सही आप।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं जी?
1: मैं गिरीश कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, भोपाल न्यूज से बात कर रहे।
0: अच्छा अच्छा, बताइए जी भोपाल के क्या हालचाल हैं?
1: भोपाल में अच्छा है, इस वक्त हल्की हल्की बारिश है और मौसम भी बड़ा सुहाना है इस वक्त, और हरियाली छाई हुई है चारों तरफ और बड़ा अच्छा लगता है।

0: हमारे यहाँ भोपाल तालाब है जो आसपास बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब धीरे धीरे बरसात होती रहती है, रिमझिम वगैरह। बहुत अच्छा शहर है हरियाली पहाड़ियों के उसमें।
1: जी, जब बहुत तेज बारिश होती है तो भदभदा के गेट खुल जाते हैं।
0: जी हाँ, और जब ज्यादा बारिश होती है तो जो नदी है उसका पानी आ जाता है, तो उसमें पूरे के पूरे गेट खुलते हैं, तब एक अलग ही बड़ा दृश्य रहता है वहाँ का।
1: और सब लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाते हैं?
0: सब पिकनिक के लिए जाते हैं वहाँ पर।
1: तो इस बार अभी ऐसा मौका आया नहीं है?
0: नहीं, अभी गेट नहीं खुले, बारिश भी नहीं हुई है, हल्की रिमझिम रिमझिम टाइप की होती रहती है।
1: और बताइए अपने बारे में और भोपाल शहर के बारे में।
0: भोपाल शहर तो वैसे भी आप, बिरला मंदिर है, भोपाल तालाब है, सैर सपाटा है, बंदियार है, कई जगह है, और भोपाल के पास सांची है, और यहाँ भीमबेटका भी है अपने अब्दुल्लागंज के आगे
1: जी,
0: जहाँ पांडव वगैरह ने निवास किया था
1: जी,
0: और कई जगह है वहाँ।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही है। अच्छा, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
0: मैं उपकार फिल्म का मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
1: क्या बात है, ये बहुत ही शानदार गाना गुलशन बावरा का लिखा
0: जी, और मेरे को देशभक्ति फिल्में बहुत पसंद है।
1: अरे वाह,
0: फिल्में भी मैं देखता हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनवाते हैं आपको उपकार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर, नमस्ते। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यूनुस सर बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: अरे ये आवाज तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। आई एम ग्रेटफुल आपसे बात हो रही सर।
0: जी मुझे भी अच्छा लग रहा है।
1: फोन कनेक्ट हुआ है। तो सर विद भारती के बारे में अब कितना कुछ बताऊं उतना कम है, क्योंकि मेरे जीवन की जब शुरुआत हुई थी इंदौर आए थे हम, और जब गांव में रहते थे तब पिताजी सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, तो विविध भारती बीच बीच में कनेक्ट होता था, फिर मिडवे पे सुनते थे वो
0: जी।
1: उस समय से वो जो यादें हैं जिन्हें बयां करना इतना आसान नहीं होता है, वहां से एक जीवन के सपने बुनते गए। वो जो पुराने गाने आते थे, सुबह के प्रोग्राम आते थे, सखी सहेली, हेलो फरमाइश,

0: जीवन की जब शुरुआत हुई थी, इंदौर आए थे हम, और जब गांव में रहते थे तो पिताजी सुनते थे ट्रांजिस्टर पे, तो विविध भारती बीच बीच में कनेक्ट होता था, फिर मिडवे पे सुनते थे वो
1: जी।
0: उस समय से वो जो यादें हैं जिन्हें बयां करना इतना आसान नहीं होता है, वहां से एक जीवन के सपने बुनते गए। वो जो पुराने गाने आते थे, सुबह के प्रोग्राम आते थे, सखी सहेली, हेलो फरमाइश, सारी यादों ने एक मिलजुल के मेरे अंदर एक फिल्मीपना लेके आया था। मैं खुद FTII से एज ए स्क्रीन प्ले राइटर मैं पास आउट किया हूँ सर वहाँ पे।
1: क्या बात है।
0: जी जी जी, वो मेरा एक दौर था जब इस दुनिया मेरा कनेक्ट हुआ था, लेकिन फिर एक घटना होती है, मेरे फादर को कैंसर होता है
1: जी,
0: उसके बाद मेरी लाइफ में वापस एक यूटर्न आता है
1: जी।
0: और विविध भारती ने वैसा ही साथ निभाया, बल्कि और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते गए आपके द्वारा, एक से एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम मिले हैं। और शुरू से, क्योंकि मैं भी अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ, छोटा मोटा एज ए स्पीकर का रोल है मेरा, मैं भी ठीक ठाक करता हूँ, अपना रोल पे करता हूँ, तो वो आपका जो अदायगी, आपका जो अंदाज है, वो कहीं ना कहीं जहन में रहता है कि यूनुस सर कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे प्रोग्राम को पेश करते हैं। मतलब आप जब बात करते लगता है कि मैं रेडियो नहीं टीवी देख रहा हूँ, ऐसा फील होता है सर।
1: बहुत शुक्रिया। और आज की इस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं।
0: मेरा अभी क्योंकि जिस मौसम में है और जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही बरसात का माहौल बना है, तो एक रफी साहब का अनजाना मूवी का बड़ा ही प्यारा गाना है। आप बोले तो मैं गा के गुनगुनाऊं या ऐसे बता दूं?
1: नहीं नहीं बिल्कुल गाइए।
0: रिमझिम के गीत सावन गाए, हाय मीठी मीठी यादों में।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन कहाँ से?
1: सर संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ भोपाल मध्य प्रदेश से मैं प्रकाश जाबी बात कर रहा हूँ सर।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बस सब बढ़िया है, अस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं और मस्त रहते हैं।
0: बहुत बढ़िया।
1: पहली बार फोन लगा सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। निरंतर आपका कार्यक्रम सुनते रहते हैं, दिन भर हमारा रेडियो चालू रहता है शॉप पे। हमारे टेलरिंग का काम है तो काम के साथ हम लोगों का मनोरंजन बहुत बढ़िया आप लोग करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ विविध भारती को।
0: बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: सर मुझे धर्मात्मा फिल्म का गाना सुनना था। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ये वाला गाना सुनना था सर।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस गाने की आपने फरमाइश की। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ ग्रीन सिटी क्लीन सिटी से।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया
1: जी। सर बस बहुत अच्छा हूँ, और विविध भारती का जो हेलो फरमाइश है बड़ा ही लोकप्रिय और चर्चित प्रोग्राम है। एक बार जब मैंने इस प्रोग्राम में सुना, एक श्रोता का कॉल लगा और उन्होंने बताया कि 20 साल बाद मेरा कॉल लगा।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो बड़ा अचंभा लगा, भाई 20 साल से भी श्रोता कॉल लगा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे श्रोता होते हैं जो बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं, क्योंकि देश भर के श्रोता जब कॉल लगा रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनका फोन लग पाए।
1: बिल्कुल, और ये रेडियो के प्रति श्रोताओं का जुनून होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और वाकई मैं भी विविध भारती का पुराना लिस्नर हूँ और काफी समय से सुनता आ रहा हूँ। कोरोना काल में कुछ कार्यक्रम बंद हुए, लेकिन अब वो फिर से चालू हुए हैं, इसके लिए देश की सुरीली धड़कन को तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: किशोर दा की आवाज में मंजिल फिल्म से गीत है, रिम झिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए।

0: हेलो फरमाइश जी, बोलिए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, बोल रहे हैं बेंगलुरु से।
0: आपका नाम क्या है?
1: सीतारामन।
0: सीतारामन जी, कब से आप विविध भारती सुन रहे हैं?
1: हम तो 1957 से, हम पैदा हुए 1940 में
0: जी,
1: अभी हमारा 86 ईयर्स हो रहा है।
0: और पूरी जिंदगी विविध भारती के साथ बिताई है आपने?
1: विविध भारती का पंचरंगी कार्यक्रम ऐसा था पहले।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: उसके बाद में चेंज हो गया विविध भारती।
0: बिल्कुल, देश की सुरीली धड़कन हम बोलने लगे उसके बाद।
1: मिस्टर यूनिस खान बोल रहे क्या?
0: हाँ जी हाँ जी।
1: मेरी स्पेशल सरप्राइज है। और कैसे है?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। आप बताइए, विविध भारती से जो आपका लगाव रहा है उसके बारे में बताइए।
1: बहुत अच्छा लगाव है। हम तो पहले तो यही तो था, विविध भारती और रेडियो सिलोन। तो रेडियो सिलोन तो बाद में बंद हो गया, लेकिन विविध भारती जो है बहुत अच्छे से तरह चल रहा है।
0: आपको हिंदी सिखाने में विविध भारती ने क्या भूमिका निभाई है?
1: बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम तो ऐसा तो लग रहा है कि हमको जितना प्रोग्राम बज रहा है ना, वो कम है, और ज्यादा होना चाहिए।
0: अच्छा, क्या बात है। अच्छा, आज आप किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: हम तो गजल का।
0: कौन सा?
1: मोहम्मद रफी का है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। यही वाला गाना।
0: क्या बात है, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है, जरा सुनाइए कुछ।
1: पहले हम गाते थे, लेकिन बीच में क्या हो, गला खराब हो गया हमारा। बोल यहाँ पर गले में कैंसर हो गया था। बाद में से ट्रीटमेंट किया, ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो रेडिएशन ही चलते, हमारा गला का बॉक्स जो है खराब हो गया।
0: जी, हम समझ सकते हैं, और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात हुई।
1: नूर की आलत किसे पेश करूं, मुरादों की हसीनत किसे पेश करूं।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं कुशलेश वर्मा जयपुर राजस्थान से।
0: अच्छा अच्छा बोलिए, कैसे हैं जी?
1: मैं बढ़िया सर, बहुत टाइम से सोच रहा था आपसे बात करने की, लेकिन कई बार कॉल नहीं लगता है, मैंने कॉल करना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज कॉल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है
0: जी। आखिरकार मेहनत रंग लाई आपकी
1: जी।
0: जयपुर की क्या हाल है, बारिश हो रही है?
1: बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, रोज अलर्ट आता है कि भारी वर्षा की संभावना है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है बिल्कुल, क्योंकि बारिश जो है शायद सावन का इंतजार कर रही है, इस बार सावन लेट है तो बारिश भी सावन के साथ ही आने वाली है
0: जी। जबकि पिछले बरस तो क्या बारिश हुई थी जयपुर में,
1: पिछले बरस तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे बारिश के,
0: और इस बरस जो है वो बारिश लंबा इंतजार करवा रही है आपको।
1: बेहद लंबा इंतजार करा रही है, लोग तरस गए हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब गर्मी से ज्यादा ये वाला मौसम जो है वो परेशान कर रहा है
0: जी। बिल्कुल, आप क्या करते हैं जयपुर में?
1: मैं चाय का बिजनेस है छोटा सा, उसे रन कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जॉब करता था MNC कंपनी में।
0: अच्छा अच्छा, तो कारोबार अच्छा चल रहा है आपका?
1: हाँ, अभी मतलब नया स्टार्टअप है तो थोड़ा टाइम लग रहा है सेट होने में, धीरे जम जाएगा।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं वारिस फिल्म का गाना सुनना चाहूंगा, लता मंगेशकर जी की आवाज में, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम।
0: क्या बात है जी, ये उत्तम सिंह जी का संगीत और बहुत ही शानदार फिल्म। अच्छा लगा आपसे बात करके, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288 यानी 0222867 0288 और 0224002466 यानी 0224002662। आपको बता दें कि सोमवार को दिन में 11 बजे फोन कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं और जिन श्रोताओं के कॉल्स एक बार शामिल हो जाते हैं उनसे हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें ताकि नए श्रोताओं को मौका दिया जा सके। चलने से पहले आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर का था और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। तो अब अगली बार होगी मुलाकात, तब तक नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है। शाम के ठीक 5 बजे हैं। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन। किए गए वादे के अनुसार हम फिर से उपस्थित हैं आपके समक्ष लेकर कार्यक्रम का पिटारा। स्वीकार करें किरण का नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत बहुत खुश होंगे। आइए बिना समय गवाए हम और आप मिलकर करते हैं कार्यक्रम का आगाज। हाथ में सबके डिब्बा एक, धुमसा चिपका चिपका नेक, हम सुबह शाम बस इसको ताके, अपनों से हम दूरी आगे। खाना ठंडा, नींद उड़ाई, इसने दुनिया खूब घुमाई, बच्चे बूढ़े सब हैं लाचार, छीन लिया इसने घर बार। आंखें कमजोर और सिर दुखे, रास्ता छोड़े जो ना रुके, ज्ञान बहुत है इसमें माना, पर अपनों को ना तड़पाना। छोड़ो ना अब ये स्क्रीन की माया, जीवन का असली सुख पाया। बाहर देखो दुनिया हंसती, मत करो मोबाइल में मस्ती। आप बिल्कुल सही पहचाने, आज हम आपसे चर्चा करेंगे मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सखियों, आज के इस दौर में हम सब देख रहे हैं कि रिश्ते हो या हमारा जीवन, सब कुछ एक डिब्बे में समा चुका है। अपनों से दूरी बन गई है, नींद लोगों की समय पर पूरी नहीं हो पा रही है, इसके ज्यादा इस्तेमाल से मानसिक तनाव, एकाग्रता में कमी, और कई लोगों से तो हम यहाँ तक सुनते हैं कि उनके गर्दन में, हाथ पैरों में दर्द तक हो रहे हैं लगातार मोबाइल के कारण। इसके अलावा रेडिएशन का खतरा, आंखों का कमजोर होना, सोशल मीडिया की लत, ये चीजें तो अलग हैं। हम सभी इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो चिंता, डिप्रेशन और अकेलापन जैसी मानसिक समस्याएं हमें नज़र आने लगती हैं। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और अरे दोस्त रिश्तेदार देखो घूमने जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, अपने पार्टनर या अपने दोस्तों के साथ कितना खुश हैं, और हम हैं कि बस सबसे दुखी इंसान। ये सब जब हम देखते हैं तो अपना आत्मसम्मान कम होता देखते हैं। फोन की स्क्रीन से जो नीली रोशनी यानी ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को कम करती है, जिससे नींद नहीं आने जैसी परेशानियां हमें होने लगती हैं। लगातार छोटी स्क्रीन पर देखने से डिजिटल आई सिंड्रोम हो सकता है। इसका मतलब है कि आंखों में सूखापन आना, धुंधलापन और सिर दर्द की समस्या हमें होने लगती है। बार बार नोटिफिकेशन देखने की आदत से पढ़ाई या हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें ध्यान भी ठीक से हम नहीं लगा पाते। इसे नोमोफोबिया यानी मोबाइल की लत भी हम कह सकते हैं। घंटों तक झुक के स्क्रीन पर फोन चलाते रहने से गर्दन, कंधों, रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर समस्या होने की शिकायत आजकल बहुत सामने आ रही है। मोबाइल से रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है यानी जो ऊर्जा निकलती है ये हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत प्रभावित करती है। हम देख रहे हैं लोग फोन पर बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं और शारीरिक रूप से सुस्त होते जा रहे हैं, जिससे मोटापा और भी ना जाने कितनी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। ड्राइविंग करते समय बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, हेलमेट में लगाकर भी कई बच्चे मोबाइल पर बातें करते हैं। सड़क पर चलते समय फोन का उपयोग करने से सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। छोटी छोटी बातों या नंबरों को याद रखने के बजाय हम तुरंत फोन पर पूरी तरह निर्भर हो गए हैं। इससे हमारे दिमाग का जो काम करने की जो दिमाग की क्षमता है यानी मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। समाज से दूरी बढ़ रही है, वास्तविक जीवन के सामाजिक मेलजोल में कमी देखी जा रही है और लोग अपने परिवार और दोस्तों से कटने लगते हैं। कई परिवारों में देखा जाता है सभी मोबाइल में व्यस्त होते हैं, बच्चों को हम मना करते हैं लेकिन खुद हमेशा उसी पर निर्भर। अपने बच्चों को प्यार कीजिए, उन्हें वक्त दीजिए, ध्यान रखिए। हम हमारे बच्चों को जीवन में सिर्फ एक बार ही बड़ा होते देखते हैं, उन्हें बार बार बचपन जीने का मौका नहीं मिलता। उन्हें प्यार से उठाइए, पुचकारिए और गले लगाइए।

उनके लिए और अपनों के लिए समय निकालिए, उनसे मिलिए, बातें कीजिए, एक दूसरे के घर आइए जाइए, खाना खाते समय फोन दूर रखिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। नो फोन जोन का नियम घर में अपनाइए, यानी डाइनिंग टेबल और बेडरूम में फोन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना है, स्क्रीन टाइम सीमित करना है और फालतू नोटिफिकेशन बंद करें, जरूरी ना होने पर एप्स के अलर्ट ऑफ कर दें ताकि बार बार ध्यान ना भटके। समय कीमती है, ये लौट कर नहीं आता, इसलिए इसकी कीमत पहचानें। और अब हमें लगता है हमें कीमत समय की पहचाननी होगी और सुनना होगा एक प्यारा सा गीत। हमारी बहुत ही प्यारी श्रोता हैं रेणु यादव, उन्होंने गीत की फरमाइश की है, फिल्म का नाम है फना। तो आइए हम और आप रेणु जी के साथ मिलकर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बातचीत आपसे यूं ही लगातार जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से विराम का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आज 23 जुलाई का दिन है। आज है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, यानी भारतीय प्रसारण दिवस। आज ही के दिन 23 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। आज का दिन पूरे भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत की हमें याद दिलाता है। सखियों, 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी ने प्रसारित किया था। साल 1936 में इसका नाम भारतीय राज्य प्रसारण सेवा रखा गया और बाद में इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। ये दिन देश में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने में रेडियो और प्रसारण सेवाओं के बड़े काम को सम्मान देने का दिन है। AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो ने लोगों की राय बनाने, सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने और आपातकालीन संचार में बड़ी भूमिका निभाई है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो हमारी संस्कृति और एकता का प्रतीक है। रेडियो सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि घर, आंगन से लेकर खेत, खलियान, महल, अटारियों तक रेडियो की पहुँच है। रेडियो देश दुनिया और मौसम की खबर देता है, बच्चों को लोरियां, कहानियां सुनवाता है, गीत संगीत और जानकारियों से युवाओं में जोश भरता है और बुजुर्गों को भक्ति संगीत का आनंद देता है। महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों, युवा, खेती बाड़ी, आंगन, घर, समाज, सबकी जानकारी समय समय पर एक आम आदमी से लेकर खास आदमी तक पहुंचाता है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय रेडियो प्रोग्राम मन की बात आकाशवाणी से ही प्रसारित किया जाता है। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रमों के लिए विविध भारती सेवा वर्ष 1957 में शुरू हुई थी और आज भी ये करोड़ों रेडियो प्रेमियों का पसंदीदा रेडियो चैनल है। नई पीढ़ी और शहरी श्रोताओं के लिए भारत के हर कोने तक अपनी सेवाएं पहुंचा रहा है। रेडियो का असली जादू है उसकी सादगी और उसकी सहजता और सरलता, जो आज पलक झपकते ही पल भर में पूरी दुनिया से हमें जोड़ देता है। रेडियो का महत्व सिर्फ मनोरंजन तक सीमित बिल्कुल नहीं है। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी रेडियो ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद भी रेडियो देश के विकास का साथी बना। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए आकाशवाणी ने करोड़ों लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाई। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जब कई बार अन्य संचार माध्यम काम करना बंद कर देते थे, तब रेडियो ही तो था जो लोगों तक जरूरी जानकारियों और सूचनाएं को पहुंचाता था। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी वर्तमान समय में ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी आधुनिक तकनीकों के साथ आगे बढ़ रहा है। FM चैनलों के माध्यम से और FM चैनलों से लेकर डिजिटल प्रसारण तक रेडियो ने बदलते समय के साथ खुद को लगातार अपडेट किया है। आज आकाशवाणी देश की बड़ी आबादी तक पहुंच रखता है। कई भाषाओं

और बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो देर किस बात की, आप भी जुड़िए, जुड़े रहिए हमारे संग, आकाशवाणी के संग, क्योंकि आपका और हमारा रिश्ता भी तो आकाशवाणी के माध्यम से ही जुड़ा है, केवल एक आवाज के माध्यम से। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई।

0: बातचीत आपसे लगातार निरंतर यूं ही जारी रहेगी, हमें यहाँ एक और अंतराल लेना होगा।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: इस बरसात आपको करना है वृक्षारोपण। सखियों, बरसात के मौसम में वृक्षारोपण करना बहुत आसान और फायदेमंद होता है। सही तरीके से पौधा लगाने के लिए पहले हमें गड्ढा खोदना होता है, उसमें खाद मिलानी होती है और स्वस्थ पौधे का रोपण करना होता है। सही समय चुनें, यानी बारिश की पहली 2-3 अच्छी बौछारें होने के बाद ही पौधे लगाएं, ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी जो पौधे को चाहिए वो मिल सके। पौधे का आकार देख लीजिए और उस हिसाब से ही चौड़ाई और गहराई का हिसाब लगाकर ही आपको गड्ढा खोदना है और गड्ढे को कुछ दिनों के लिए खुला ही छोड़ना है। मिट्टी में आप गोबर की खाद या जैविक खाद भी मिलाकर तैयार करके डाल सकते हैं। नर्सरी से स्वस्थ पौधा लाकर गड्ढे के बीच में रखें, चारों तरफ से मिट्टी से अच्छी तरह दबाएं ताकि हवा ना जाए। पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां उसे पर्याप्त धूप मिले और वह बिजली के तारों या खंभों के बीच में ना आए। ये सुनिश्चित कर लीजिए कि पौधे के पास बारिश का पानी रुके नहीं, वरना जड़ें कमजोर हो जाएंगी, गल जाएंगी। पेड़ पौधे लगाते समय ध्यान रखें अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल पेड़ पौधे लगाएं, जैसे नीम, पीपल या अन्य वातावरण के अनुकूल ही हमें पौधारोपण इस बरसात करना है। पेड़ लगाइए और बड़ा होने तक उसकी सुरक्षा भी हमें करनी है। बरसात का मौसम है, सुंदर महीना है, आसपास पर बदरा छाए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आएं, मिलकर आओ हम सब पौधे लगाएं, इस धरा को स्वर्ग बनाएं। बरसात की बूंदें जब गिरती हैं धरती को तो ये खूबसूरत बनाती ही हैं, साथ ही हमारे मन को, हमारे तन को बहुत चंचल कर देती हैं। पेड़ लगाएं इस बरसात और जीवन बचाएं, चारों ओर हरियाली लाएं, सांसों को जो वायु दे शुद्ध, उन पेड़ पौधों से कैसा हमारा युद्ध। आज कसम हम सब हैं खाते, नित नए पौधे लगाते, और पौधों को केवल लगाकर ही नहीं छोड़ना है, उनका ख्याल भी रखना है और अपना ख्याल भी रखना है इस बरसात के सुहावने मौसम में। तो आइए इस बरसात के साथ सुन लेते हैं चलते चलते एक प्यारा सा गीत।

उम्मीद है आपको गीत बहुत पसंद आया होगा। सखियों, जीवन में सुख हो या दुख, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और इस जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जिए। और एक बात, हमारा कार्यक्रम सुनना बिल्कुल ना भूलें। आपकी रेडियो सखी किरण को फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, आपको एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में मौसम को भी, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत अच्छा है और इस मौसम में मोस्टली सब लोगों का मन करता है बाहर घूमने का। लेकिन लेकिन ध्यान रखिए, बाहर घूमने के साथ साथ अपनी सेहत का भी, क्योंकि बदलता मौसम है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। बिना देरी करे गरम गरम चाय के साथ शुरू करते हैं हमारे प्यारे से प्रोग्राम को। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है जानते हैं? बुरा वक्त हमें बताता है कि हमारे अच्छे वक्त में हमें किसके साथ होना चाहिए। सच है, जब हमारे बुरे वक्त में कुछ लोग हमारे साथ होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है उनको।

हमारी खुशियाँ और हमारे अच्छे वक्त में देखकर। वही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशियों में तो बहुत साथ देते हैं, जब लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड चल रही होती है तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, और जैसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो गायब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी खुशियों से भी गायब कर देना चाहिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब हमारे आसपास लोगों की कमी नहीं होती। हर कोई इंसान साथ हंसता है, फोटो खिंचवाता है, स्टेटस लगाता है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जैसे ही जिंदगी थोड़ा सा टेस्ट लेती है, भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है, और तभी समझ में आता है कि कौन सिर्फ ऑनलाइन था और कौन सच में ऑन योर साइड था। दोस्तों, जिंदगी का बुरा वक्त किसी सजा की तरह नहीं आता, वो आता है एक फिल्टर की तरह। वो दिखा देता है कि कौन सिर्फ आपकी हाइलाइट्स देखने आया था और कौन आपकी अनएडिटेड लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है। आजकल हम रोज स्टोरी अपडेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी स्टोरी से नहीं, आपके स्टोरी के पीछे की कहानी पता होती है। वो पूछते नहीं कि क्या हुआ, वो बस कहते हैं कि चल मैं हूं ना, साथ बैठकर बात करते हैं। और ट्रस्ट मी, कई बार ऐसे चार शब्द किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से कहीं ज्यादा ताकत देते हैं। दोस्तों, सक्सेस का असली मजा बड़ी गाड़ी

फोटो खिंचवाता है, स्टेटस लगाता है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जैसे ही जिंदगी थोड़ा सा टेस्ट लेती है, भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है और तभी समझ में आता है कि कौन सिर्फ ऑनलाइन था और कौन सच में ऑन योर साइड था। दोस्तों, जिंदगी का बुरा वक्त किसी सजा की तरह नहीं आता, वो आता है एक फिल्टर की तरह। वो दिखा देता है कि कौन सिर्फ आपकी हाइलाइट्स देखने आया था और कौन आपकी अनएडिटेड लाइफ का हिस्सा बनना चाहता है। आजकल हम रोज स्टोरी अपडेट करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें आपकी स्टोरी से नहीं, आपके स्टोरी के पीछे की कहानी पता होती है। वो पूछते नहीं कि क्या हुआ, वो बस कहते हैं कि चल मैं हूं ना, साथ बैठकर बात करते हैं। और ट्रस्ट मी, कई बार ऐसे चार शब्द किसी भी मोटिवेशनल स्पीच से कहीं ज्यादा ताकत देते हैं। दोस्तों, सक्सेस का असली मजा बड़ी गाड़ी खरीदने में नहीं है, महंगे कैफे में जाकर कॉफी पीने में नहीं है, बल्कि उस इंसान को साथ बिठाने में है जिसने आपके खाली जेब वाले दिन भी आपका हाथ नहीं छोड़ा। इसलिए जब जिंदगी आपको फिर से मुस्कुराने का मौका दे, जब आपकी मेहनत रंग लाए, जब सैलरी का पहला मैसेज आए या कोई भी सपना आपका पूरा हो जाए, तो सबसे पहले उन लोगों को याद कीजिए जो आपकी जीत से भी पहले आपके साथ खड़े थे। क्योंकि जो लोग बुरे वक्त में साथ खड़े रहते हैं, वही अच्छे वक्त की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनते हैं। इसलिए दोस्तों, जब भी जिंदगी मुस्कुराए तो उस मुस्कान को उन्हीं लोगों के साथ बांटिए जिन्होंने आपके आंसू भी देखे हैं। तो इसी के साथ चलिए साथ में खुश होते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 23 जुलाई को पूरे भारत में मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, एक ऐसा दिन जिसने भारत में आवाज़ की ताकत को एक नई पहचान दी। दोस्तों, 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। उस समय लोगों के पास टीवी नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं था और ना ही स्मार्टफोन। ऐसे में रेडियो ही वो जरिया था जो लोगों तक खबरें, गाने और ज़रूरी जानकारी पहुंचाता था। धीरे धीरे रेडियो हर घर का हिस्सा बन गया। सुबह की शुरुआत रेडियो से होती थी, खेतों में काम करते किसान रेडियो सुनते थे, बच्चे कहानियां सुनते थे और पूरा परिवार एक साथ बैठकर अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का इंतजार करता था। समय बदला, टेक्नोलॉजी बदली, लेकिन रेडियो की पहचान आज भी वही है। आज FM हो, ऑनलाइन रेडियो हो या पॉडकास्ट, आवाज़ का ये सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, रेडियो की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि महसूस भी होता है। एक अच्छी आवाज़ कभी कभी वो काम कर जाती है जो हजार तस्वीरें भी नहीं कर पाती। और अगर बात करें इसकी इतिहास की, तो भारत में रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई थी। इसके कुछ साल बाद यानी 1936 में सरकार ने रेडियो सेवा को एक नया रूप दिया और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। फिर 1957 में इसे एक नया नाम मिला, आकाशवाणी। ये नाम सुनते ही आज भी एक अपनापन सा महसूस होता है ना? दोस्तों, रेडियो ने सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं किया बल्कि देश को जोड़ने का काम भी किया। आज़ादी के बाद लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना, किसानों को खेती से जुड़ी सलाह देना, स्टूडेंट्स तक शिक्षा पहुंचाना और मुश्किल समय में सही जानकारी देना, इन सब में रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज भले ही हमारे हाथ में स्मार्टफोन हो, लेकिन रेडियो की आवाज़ आज भी लोगों के दिलों तक उसी जोश के साथ पहुँचती है।

0: दोस्तों, रिलेशनशिप को लेकर आपका क्या ख्याल है? अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? डिस्ट्रैक्टिव होते हैं या अट्रैक्टिव होते हैं? अब देखिए, रिलेशनशिप आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। सब लोग रिलेशनशिप में होते ही हैं, आप भी ज़रूर होंगे किसी ना किसी के साथ। तो इस बार हमने हमारे बिंदास बोल में बात करी है रिलेशनशिप को लेकर कुछ लोगों से। तो चलिए आइए जानते हैं कि उनके हिसाब से रिलेशनशिप कैसे होते हैं और रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है।
1: हेलो,
2: हाय
1: हाय, क्या नाम है आपका?
2: फरहान।
1: फरहान, मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ?
2: जी, कर सकते हो।
1: एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं?
2: अकॉर्डिंग टू मी तो अच्छे होते हैं।
1: आप मतलब पहले कभी रिलेशनशिप में रहे हो?
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: अभी करंट में हो?
2: नहीं, अभी तो नहीं।
1: ओके, आपको क्या लगता है कि रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है?
2: अकॉर्डिंग टू मी इट्स ट्रांसपेरेंसी, जिससे ग्रेजुअली लॉयल्टी और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो हाँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स।
1: और इसके अलावा कोई? और
2: इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, एफर्ट्स, लॉयल्टी और ट्रस्ट तो प्रायोरिटी है ही, बट उसके अलावा भी ये दोनों चीज़ें भी होनी चाहिए।
1: आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टनर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है?
2: बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इफ़ देर इज़ अगर पार्टनर्स के बीच ट्रांसपेरेंसी है और लॉयल्टी है, तो अंडरस्टैंडिंग और टाइम मैनेजमेंट अपने आप मैनेज हो जाता है अकॉर्डिंग टू मी। बट ट्रांसपेरेंट से बिल्ड ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ईच एंड एवरीथिंग।
1: अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप इन फ्यूचर कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहें, तो आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है जो सामने वाले में देखना पसंद करेंगे?
2: ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देखूँगा कि मेरी वाइब और मेरे थॉट्स मैच हों उससे, मेरी थॉट प्रोसेस, मेरी चीज़ें, इंटरेस्ट, एवरीथिंग वो मैच हो। बर्डन नहीं फील होना चाहिए बात करते टाइम, फन आना चाहिए, और इट्स फील पीस विद ईच अदर।
1: तो अकॉर्डिंग टू यू शक्ल से ज़्यादा वाइब मैच होनी चाहिए? ओके, दैट्स अ गुड थिंग। अगर आपको एक, जैसे आप रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तो मैं मान के चलती हूँ कि आप

0: रिलेशनशिप का अच्छा खासा आइडिया है। तो अगर आपसे कोई पीस ऑफ एडवाइस मांगना चाहूँ कि एक रिलेशनशिप को अच्छे से वर्कआउट कैसे करा जा सकता है जब चीज़ें गलत हो रही हों, तो वो क्या होगा?
1: कम्युनिकेशन
0: बात करना,
1: हाँ, और टाइम मैनेजमेंट
0: यानी चीज़ें सॉर्ट आउट करना।
1: हाँ।
0: ओके।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाय, क्या नाम है आपका?
1: हार्दिक।
0: हार्दिक, कैसे हैं आप?
1: आई एम गुड।
0: ओके, क्या करते हैं आप?
1: अभी हाल फिलहाल दो चीजें कर रहा हूँ, एक जॉब और एक स्टोर संभाल रहा हूँ।
0: ओके, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। हार्दिक, रिलेशनशिप को लेके आपके क्या थॉट्स है? इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग?
1: अ गुड थिंग।
0: ओके, हैव यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप?
1: काइंड ऑफ।
0: ओके, तो आपके काइंड ऑफ एक्सपीरियंस से आप हमें बताएंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिलेशनशिप एक अच्छी चीज़ है?
1: एक अपनापन रहता है, लाइक हमारे जो भी पार्टनर हैं उनके साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं, हम अपनी चीजें जो हैं, पर्सनल चीजें जो हैं, वो शेयर कर पाते हैं।
0: जी, जो हम हर किसी से शेयर नहीं करते हैं ना।
1: हाँ, करेक्ट।
0: ओके, तो आपने मतलब कभी ऐसा कुछ फेस नहीं करा है, मतलब प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में या कुछ भी ऐसा?
1: नहीं नहीं।
0: ओके, तो आप ओपन अप हैं कि आप आगे जाके रिलेशनशिप में एंटर करेंगे?
1: शायद।
0: शायद क्यों? आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप आपके करियर को मतलब इफेक्ट करता है?
1: हाँ।
0: ऐसा क्यों?
1: बहुत सारी चीजें हैं, लाइक अगर आज के टाइम के हिसाब से देखें तो रिलेशनशिप रिलेशनशिप नहीं है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट कह लो या एग्रीमेंट कह लो, वो है।
0: आप मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं?
1: क्योंकि अगर देखें
0: पार्टनर्स अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलता।
1: हाँ, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते इजीली एक दूसरे से, फिजिकल थिंग्स बहुत ज्यादा चाहिए आजकल के लोगों को, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, कमिटमेंट्स जो भी हैं वो पूरी नहीं कर पाते, एंड बहुत सारी चीजें इसके अलावा।
0: तो इसके अलावा आप ये भी मानते हैं कि मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है रिलेशनशिप में, दैट्स व्हाई रिलेशनशिप एक तरह से बर्डन फील होने लगता है?
1: आज के टाइम में एक्सपेक्टेशंस केवल एक ही चीज की होती है।
0: किस चीज की?
1: ऑब्वियसली लाइक है जो है फिजिकल चीजें।
0: ओके, तो फिर भी जैसे आपका जो भी एक्सपीरियंस है रिलेशनशिप्स और इन सब चीज़ों को लेके, कोई एक सिंगल एडवाइस जो आप अपने आगे रिलेशनशिप में अगर आप कभी आप आते हो तो उसमें फॉलो अप करना चाहते हो या अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो कि ये चीज़ तो भाई आप में होनी चाहिए?
1: देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें हमारे पार्टनर्स में मिल जाए।
0: जी,
1: बट हाँ एक चीज़ है, लाइक अपने पार्टनर को समझो।
0: जी,
1: वो जो बोलते हैं या वो जो चीज़ें, लाइक कुछ भी चीज़ है उसे ढंग से समझो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो और हाथ जोड़ के निवेदन, फिजिकल चीजों के पीछे मत भागो, बाकी तो सब बढ़िया है।

0: मतलब प्रायोरिटी पे रखें अपने पार्टनर को, ऐसा?
1: हाँ, कह सकते हैं।
0: ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच हार्दिक।
2: अंकान की फुमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: हाय
1: हाय, क्या नाम है आपका? ओके,
0: हर्षिता
1: हर्षिता, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हूँ, आप बताओ।
1: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर्षिता, क्या करते हैं आप?
0: मैं एचआर हूँ बाय प्रोफेशन।
1: ओके, दैट्स वेरी गुड। एक बात बताइए, आपको रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचते हैं?
0: मेरे लिए मतलब रिलेशनशिप इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड ट्रस्ट, मतलब विश्वास। ओके, सो आई डोंट थिंक कि बिना प्यार के वो रिश्ता चल सकता है। तो रिश्ते में पहले प्यार होना ज़रूरी है एंड थोड़ा सा फन, तभी वो मतलब लॉन्ग लास्टिंग चल सकता है।
1: अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आजकल जो जेंजी जिस तरीके से डेट करते हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं?
0: उनके तो बहुत नए नए टर्म्स आए, मुझे नहीं लगता कि हम मैं रिलेट करती हूँ उससे पर्सनली। जैसे कि आपको पता ही है, मतलब बेंचिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, सिचुएशनशिप,
1: जी जी
0: जिसमें मतलब अब बहुत कैजुअल हो, वैसे तो नहीं चलना चाहिए। उसको रिलेशनशिप तो नहीं बोल सकते, मुझे नहीं लगता वो लॉन्ग लास्ट होता है।
1: ओके, तो आपके अकॉर्डिंग है, वैसे आपका कोई रिलेशनशिप है?
0: रहा है, अभी नहीं है।
1: ओके, तो फिर एक बात बताइए, आपके अकॉर्डिंग ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है?
0: विश्वास और लॉयल्टी, मतलब अगर आप चीट करो, अगर आपके रिश्ते में विश्वास नहीं, तो आपका रिश्ता नहीं चल सकता।
1: और इसके अलावा कुछ और,
0: कंपैटिबिलिटी भी जरूरी
1: मतलब
0: है,
1: जैसे
0: मतलब इंसान को समझना, एक दूसरे को समझते हैं तो जिंदगी थोड़ी आसान लगती है।
1: अगर रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी भी है, ट्रस्ट भी है, लॉयल्टी भी है, उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में कुछ और ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो उसे ब्रेक कर सकते हैं?
0: हो सकता है, डिपेंड करता है, मतलब सिचुएशंस कर सकती है आई थिंक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी कोई सिचुएशन ऐसी आई जिसमें नहीं कर पाए, बट अगेन वो विश्वास वाली बात ही होती है कि अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो वैसा। पर हाँ, सिचुएशन कर सकती है, पर अगर ये मेन तीन चार चीज़ें हैं, प्यार, भरोसा, कंपैटिबिलिटी,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: यू नो
1: जी
0: अंडरस्टैंडिंग, तो वो चल जाती है रिश्ते।
1: तो एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि ईगो जो होता है वो रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है?
0: हाँ,
1: तो वो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है बुरा है?
0: बुरा है, मतलब हल्का सा हो, मतलब कभी कभार, वो भी अपने पार्टनर के लिए नहीं, लाइक यू नो किसी और के लिए, लाइक ऐसा कि उसका ईगो

0: रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए
1: जी, जी.
0: तो है, बट हाँ डेफिनेटली खुद के रिश्ते के लिए तो खराब है, नहीं okay. आना चाहिए.
1: ठीक है, तो अगर आप अगली बार कभी रिलेशनशिप में आती हैं तो आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जो आप करना चाहेंगे, मतलब कि इस चीज़ को मैं ज़रूर अपने रिलेशनशिप में प्रायोरिटी में रखूँगी?
0: हाँ, मतलब मैं पहले इंसान को जानना चाहूँगी. कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में रिश्ते में आ जाते हैं जस्ट बिकॉज हमें किसी के लुक्स पसंद है, किसी की आवाज़ पसंद है, वो नहीं. किसी को बाय पर्सन, मतलब आप किसी को, अगर आपका दिल अच्छा है उसका, मतलब वो पोटेंशियल से प्यार नहीं करना कि ये इंसान ऐसा बन सकता है तो मैं उससे प्यार करूँ, नहीं. जैसा है वो वैसा अगर आप प्यार करें तो मैं वैसा करना चाहूँगी. एक्सेप्टेंस.
1: ओके, थैंक यू वेरी मच.
0: थैंक यू.

0: हाय जी,
1: क्या नाम है आपका?
0: विवान।
1: विवान, क्या करते हैं आप?
0: मैं अभी बैचलर डिग्री परसू कर रहा हूँ।
1: ओके, किसी रिलेशनशिप में हैं आप अभी?
0: हाँ जी।
1: कैसा चल रहा है आपका रिलेशनशिप?
0: ठीक चल रहा है।
1: अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं आप रिलेशनशिप में?
0: प्रॉब्लम्स तो मैक्सिमम तो मेरी तरफ से ही हैं। मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इतना बात नहीं कर पाता ज़्यादा।
1: तो आपको लगता है ये चीज़ आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट करती है?
0: फिलहाल देखा जाए तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है।
1: लाइक लॉन्ग टर्म में कर सकती है?
0: हाँ, बिल्कुल कर सकती है।
1: अच्छा, तो एक बार बताइए, आपके पास ऐसी कोई चीज़ हो जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती हो?
0: अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है हमारे।
1: ओके, और फिर भी कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहते हो हमारे यूथ को, जैसे आजकल? वैसे पहले आप ये बताइए, आपको ऐसा लगता है कि आजकल के रिलेशनशिप्स पुराने रिश्तों से थोड़े डिफरेंट हैं?
0: हाँ, बहुत डिफरेंट है।
1: कैसे कैसे?
0: दो तरीके से हैं। एक तो इमोशनल वैल्यूएशन है लोगों की, वो थोड़ी बढ़ गई है, लाइक वैल्यू करने लग गए हैं एक दूसरे को।
1: जी।
0: दूसरा इसी चीज़ में एक कि इमोशनल की जगह फिजिकल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं।
1: जी।
0: और दोनों एंड से कर रहे हैं।
1: ओके।
0: एंड वही है, पहले तो क्या कहते हैं, घर वालों की ही रहती थी सारी, उसमें इंटरफेरेंस पूरी।
1: जी।
0: तो पर्सनल चॉइस नहीं होती थी, अब पर्सनल चॉइस है, तो इसमें भी दो पहलू जा रहे हैं इसके अंदर भी।
1: तो कोई ऐसी एडवाइस जो आप हमारे यूथ को देना चाहते हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर, बेटर बना सकें?
0: इसमें मैं बोलूँगा इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा देखें और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचें। अपने बारे में तो सोचना ही है, करियर तो बढ़ाना ही है, लेकिन दूसरे के प्रॉब्लम्स वगैरह उनको भी देखना चाहिए दोनों एंड से। एक भी एंड से अगर कमी होती है, लाइक उनको लगता है कि मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, मेरे को ये नहीं कर रहे हैं, कभी कभी बिजी भी हो सकता है इंसान।
1: जी जी। और तो आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में एक पार्टनर अपने बारे में कभी कभार ज़्यादा सोचता है?
0: हाँ, ईगो वाली बात एक आ जाती है कि मेरे से कैसे नहीं बात कर रहे हैं।
1: अच्छा।
0: या फिर मेरे लिए कैसे नहीं सोच रहा, या फिर कुछ भी इस हिसाब से ईगो वाली प्रॉब्लम दोनों की तरफ से ही आ जाती है। फिर एक भी मतलब सोच नहीं पाता, इस वजह से टूट जाते हैं।

मेरे हर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का युववाणी कार्यक्रम। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप लोगों से फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: अवनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीट पेपर लीक मामले पर फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने के निर्णय की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ये निर्णय युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया है।
1: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल

0: गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे दूसरी बार स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर श्री साइकिया ने सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद पुनः शुरू होने पर विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हंगामे के कारण राज्यसभा को भी दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में डॉ सिंह ने कहा कि रोड मैप के अनुसार मौजूदा 8.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के 2031-32 तक लगभग 22 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती हुई घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में औद्योगिक क्षमता से अधिक उत्पादन और कड़ी स्पर्धा के कारण लाभ कम हो गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में आज ठाणे, पालघर, नासिक और पुणे के घाट क्षेत्रों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी कोंकण, दक्षिणी कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में शनिवार तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। प्रशासन ने पुणे और कोंकण की ओर यात्रा करने वाले पर्यटकों से अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में जिम्बाब्वे ने भारत के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 5 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब आपको जानकारी देते हैं आज के शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर में यानी शाम 6:10 पर आप सुनेंगे कविता पाठ श्रीमती मोनिका जैव से। 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर सुनिए राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे। शाम 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी। किसानवाणी में आज आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम। कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाएं। 7:30 पर आप सुनेंगे कस्टमाइज्ड स्पॉन्सर प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। 8 आप सुनेंगे संसद समीक्षा। 8:15 पर सुनिए लोक संगीत। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। 9:15 पर सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम और 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। 11:05 पर आज की सभा समाप्त होगी।

लीजिए अब आपको जानकारी देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 6:05 पे आप सुनेंगे वंदनवार, 6:30 पे सुनिए झरोका, 6:35 पे आप सुनेंगे रामचरित मानस गान, 6:45 पे आप सुनेंगे संगीत सरिता। कल सुबह 7 बजे का समय रहेगा नमस्कार अलवर का। 7:30 पे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। सुबह 8 बजे समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:15 पे सुनिए सुगम संगीत। 8:30 पे आप सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से रिले किए जाएंगे। 9:10 पे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत, 5:30 पे सुनिए कार्यक्रम युवानी, 6 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, 6:05 पे आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, 6:10 का समय रहेगा फिल्म संगीत का, 6:30 पे सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पे सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम भारती, 7:30 पे सुनिए फिल्म संगीत, रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा, 8:15 पे सुनिए लोक संगीत, 8:45 पे सुनेंगे समाचार संध्या, रात 9:15 पे श्रोता सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, रात 10 बजे आप सुनेंगे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण, रात 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनते हैं कविता पाठ श्रीमती मोनिका जैफ से।

आकाशवाणी के श्रोताओं को मोनिका जैफ का नमस्कार। भाव जब दिल से निकलते हैं तो रचना बन जाती है, जब रचना दिलों तक पहुंचती है तो जिंदा दिली कविताएं बन जाती हैं। ऐसे ही एहसासों को पिरोते हुए स्वर रचनाएं प्रस्तुत हैं आपके समक्ष, जिसका शीर्षक है पृथ्वी।

अगली मेरी स्वरचना का शीर्षक है गर्मी, जनगणना और हमारे शिक्षक। हाय हाय ये गर्मी, ये मौसम और ये गर्मी, हाय हाय ये गर्मी और ये मौसम और ये गर्मी,

0: me. धन्यवाद, नमस्कार.
1: अभी आपने सुना है काव्य पाठ. ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है और लीजिए अब ये सुनते हैं गीत अनुराधा पौडवाल मोहम्मद अजीज की आवाज में. फिल्म है आई मिलन की रात. गीतकार है समीर और संगीत से सवारा है आनंद मिलिंद ने.

अभी आपने सुना ये गीत, थोड़ी देर में हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर से रिले करेंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। जयपुर में आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट में देश विदेश के विशेषज्ञ जुटे, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर मंथन हुआ। देश में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में करीब 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ राजस्थान सबसे अधिक लाभान्वित। और मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से शुरू हुआ, गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी।

समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में

0: दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी लगातार बाधित हुई। लोकसभा नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्षी दलों से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर दोनों सदनों में चर्चा के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
1: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं। ये

0: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दोहराया कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और इस बारे में विपक्षी सदस्यों को आश्वासन दे चुकी है।
2: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बीच पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटों में छात्र प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए 4 बार प्रस्ताव दिया गया। श्री सिंह ने कहा कि बिना संवाद के कोई समाधान नहीं निकलेगा। जयपुर में आज देश विदेश के विशेषज्ञों ने प्रदेश में ऊर्जा ट्रांसमिशन की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर मंथन किया। भारतीय उद्योग परिसंघ CII की ओर से आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट में नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा, निवेश और हरित विकास सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने हरित ऊर्जा उत्पादन को लेकर प्रदेश में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार की काफी संभावनाएं हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 5 लाख घरों को UAL मॉडल पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। मीडिया से बातचीत में मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है।
3: राजस्थान का जो फ्यूचर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म है इसके तहत लगभग 3,300 पावर परचेस एग्रीमेंट्स आगामी वर्ष में लागू किए जाएंगे। दूसरा है जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 5 लाख हाउस होल्ड्स को यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के तहत लिया जाएगा और साथ ही साथ जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर के तहत कई नए ट्रांसफार्मर 765 KV के एस्टेब्लिश होंगे। तो राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है पीएम कुसुम के तहत भारत में सर्वोपरि है और इस मोमेंटम को हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: CII राजस्थान के चेयरमैन रजनीश भंडारी ने कहा कि आने वाला समय ऊर्जा क्षेत्र का है। ऊर्जा से अधिक उत्पादन से ही देश ताकतवर बनेगा, साथ ही दक्षता के साथ ऊर्जा के उपयोग पर जोर देना होगा। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाई गई समिति की बैठक आज VC के जरिए हुई। कैबिनेट सचिव डॉ TV सोमनाथन ने ये बैठक ली। इसमें राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा और अन्य स्थानों के मुख्य सचिव जुड़े। डॉ सोमनाथन ने राज्यों को वायु प्रदूषण से संबंधित काम तय समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए, साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने, औद्योगिक प्रदूषण और वायु गुणवत्ता की नियमित निगरानी करने, पराली और बायोमास जलाने पर रोक लगाने सहित अन्य उपाय प्राथमिकता से लागू करने पर जोर दिया। बैठक में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि राजस्थान सरकार NCR क्षेत्र में 5,000 पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित करने के लिए काम कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। देश में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में करीब 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ राजस्थान सबसे आगे है। यहां समूचे रोड नेटवर्क का करीब 25% हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजस्थान एक्सप्रेसवे के निर्माण से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। समाचार कक्ष से हमारे सहयोगी सुदर्शन नाहर की एक रिपोर्ट।
4: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में कुल 10,389 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है। इनमें से 5,580 किलोमीटर पर

0: काम चल रहा है, वहीं 4,800 किलोमीटर से अधिक का काम पूरा हो चुका है। देश भर में वर्तमान में बने 1/4 नेशनल एक्सप्रेसवे राजस्थान से होकर गुजरते हैं। प्रमुख परियोजनाओं में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे और 9 नव घोषित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल हैं। इन महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से यात्रा का समय घटेगा, माल परिवहन तेज होगा और उद्योगों, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी नई रफ्तार मिलेगी। साथ ही राजस्थान का संपर्क देश के प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर से और मजबूत होगा, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।
1: पाली के रोहट में आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। रोहट थानाधिकारी ने बताया कि बांडाई मोड़ पर हुई इस दुर्घटना में पाली से जोधपुर जा रही राजस्थान रोडवेज की बस से पीछे आ रही तेज रफ्तार कार टकरा गई। इसमें सवार युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के मौके पर आज प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह के मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री लाना जारी रखेगा। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स का जिक्र करते हुए श्री द्विवेदी ने बताया इस प्लेटफॉर्म के 1,10,00,000 से अधिक यूजर हैं और लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं।
2: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, तत्कालीन बम्बई, आज जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के लिए।
1: संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के मौके पर आज जयपुर में भाजपा की ओर से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हुई। इसमें संत रविदास के समानता और भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से प्रदेश भर में सामाजिक समरसता संकल्प अभियान के तहत हरि कीर्तन, सत्संग और विचार गोष्ठियां रखी जाएंगी। कार्यशाला में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा उपस्थित रहे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। डीग के पूछरी का लौठा धाम में आज से मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत हुई। 30 जुलाई तक चलने वाले इस मेले में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्य मेला गुरु पूर्णिमा पर 29 जुलाई को भरेगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि मेले में भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा सहित छोटे बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है।
3: आज से डीग के पूछरी का लोठा धाम में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला की शुरुआत हो गई है। सप्त दिवसीय इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण के लिए परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा और सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही CCTV कैमरों और भारी पुलिस बल द्वारा सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डीग।
1: भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि श्री तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना प्रज्वलित की, साथ ही भावी पीढ़ियों को जनसेवा के लिए प्रेरित किया। आज ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की भी जयंती है। प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आजाद का अदम्य साहस और अटूट देशभक्ति भारत का गौरव है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी बाल गंगाधर तिलक को नमन करते हुए कहा कि स्वराज, स्वदेशी और राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत श्री तिलक के विचार सदैव देशहित की प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं मां भारती के सपूत चंद्रशेखर आजाद के ओजस्वी विचार और बलिदानी जीवन हमेशा राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देते रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामलों की जल्द सुनवाई और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की। जयपुर में आयोजित राजस्थान एनर्जी समिट में देश विदेश के विशेषज्ञ जुटे, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर मंथन हुआ। देश में बन रहे नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे में करीब 1200 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के साथ राजस्थान सबसे अधिक लाभान्वित। और

मुड़िया पूर्णिमा मेला आज से शुरू हुआ। गोवर्धन परिक्रमा के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके पिछले दिनों उदयपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने जनजातीय कल्याण योजनाओं की राज्य स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन करते हुए अधिकारियों को प्रत्येक पात्र परिवार तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने बनफूल स्टूडियो का अवलोकन कर जनजातीय कलाकारों से संवाद किया और राष्ट्रीय लैक्रोस टीम में चयनित प्रदेश के खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी उदयपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने चित्रकूट नगर स्थित राजकीय किशोर गृह में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री गहलोत ने पेंशन प्रकरण, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने विभागीय आवासीय छात्रावासों के जर्जर भवनों की मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बालोतरा से आयोजित ग्रीन फील्ड रिफाइनरी लोकार्पण और रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण उदयपुर जिले में भी बड़े उत्साह से देखा गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिले के 1,500 से अधिक नव चयनित कार्मिकों का स्वागत किया गया और 5 कार्मिकों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उदयपुर में जिला स्तरीय मुख्य आयोजन गांधी ग्राउंड में हुआ। योग दिवस के पूर्वाभ्यास और मुख्य कार्यक्रम में बुजुर्ग प्रतिभागियों की अग्रणी भूमिका रही और मंच पर योगाभ्यास कराने के लिए लगभग 60% स्थान वरिष्ठ नागरिकों को दिया गया। आयुर्वेद विभाग से नोडल अधिकारी डॉ भानु कुमार जैन ने बताया कि योग दिवस के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गांधी ग्राउंड के अलावा फतेह सागर की पाल और सहेलियों की बाड़ी में भी सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुए। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। उन्होंने निर्माणाधीन देवास चरण तृतीय और चतुर्थ पेयजल परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन सुरंग और बांध कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। लगभग 1,690 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से हर साल 1,000 MCFT पीने का पानी उपलब्ध होगा। राज्यपाल ने परियोजना प्रभावित के पुनर्वास को संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये परियोजना उदयपुर की दीर्घकालीन जल सुरक्षा, झीलों के संरक्षण और पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कोटड़ा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ सेई बांध की टनल की चौड़ाई बढ़ाने के निर्माण कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए आयोजित हो रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से स्थानीय लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिविरों को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। इन शिविरों में एक ही छत के नीचे 22 विभागों की सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पिछले दिनों खान और पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख सचिव और उदयपुर के प्रभारी सचिव टी रविकांत ने उदयपुर विकास और नगर निगम में आयोजित शहरी सेवा शिविरों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि आम जन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल, सुगम और समयबद्ध तरीके से मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों, पट्टा आवेदनों और अन्य जन समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारण किया जाए ताकि लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। RSEERT द्वारा जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम डाइट में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में उदयपुर और सलुम्बर जिले के सभी 20 ब्लॉक के 40 शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। इसके साथ

0: उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक उन जुड़िया मामला री बेगी सुनवाई और दोषियां न कड़ी सजा देवन सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रो ऐलान कीनो। जयपुर माए राखी जी राजस्थान एनर्जी समिट माए देश प्रदेश रा जानकार भेड़ा भ्या, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश रे बारा माए चर्चा करी जी। देश माए बन रहा नेशनल एक्सप्रेस वे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे मायू करीब 1200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क सागे राजस्थान न सब उम्बत तो फायदो मिलियो और मुड़िया पूर्णिमा मेलो आज शुरू भियो। गोवर्धन परिक्रमा सारू आखा देश में जात रूप उगण लग्या। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा वाला पेपर लीक करण रा काम में शामिल लोगों ने तुरंत कड़ी सजा दिरावण सारू फास्ट ट्रैक अदालतां खोलन रो ऐलान कीनो है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी विद्यार्थियों रा भविष्य री हिफाजत माथे सरकार रो खास ध्यान वेवन रो जिक्र करता थका कहो के देश रा नौजवाना रो भलो और भविष्य सबु खास है। वे अहलकारा ने ई बारा माए सगला जरूरी जतन करन रा हुकम दीना। प्रधानमंत्री कहो के नौजवाना रा भविष्य ने नुकसान पुगावन रे कोशिश करन वाला ने नी छोड़िया जावेला। संसद रा दुनियो सदना री कार्रवाई माए विपखरा हंगामा रे कारण आज ही अड़चन आई। लोकसभा नीट पेपर लीक मामला समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विरोध रे कारण आखा दिन सारू टाळती रीची, जदके राज्यसभा री कार्रवाई विपखरा सदस्यों का नियम करी ज्या शोर शराबा रे कारण टाळती रीची। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू विपक्षी पार्टियां नीट पेपर लीक मुद्दा माथे चर्चा करण माए मदद री अरज कीनी है। वह कहो कि सरकार ई मुद्दा माथे दुनियो सदना माए चर्चा री मर्जी जता चुकी है।
2: सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ही कहो कि सरकार चर्चा सारू तैयार है और इ बारा माए विपक्षा सदस्यों ने भरोसा दिलाईचियो है।
3: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
1: इविचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पेपर लीक मामला माए प्रदर्शन कर रहा विद्यार्थियों बातचीत सागे आगे आवन बाबत कहो है। वह कहो के लारला 24 घंटा माए विद्यार्थियों ना नुमाइंदा ने बातचीत सारू चार दफा प्रस्ताव दिया चिया। श्री सिंह कहो के बिना बातचीत कोई हल नहीं निकल सके है। जयपुर माए आज देश प्रदेश रा जानकार बिजली जुड़िए एक दूजी ठोड़ भेजन री नवी तकनीक ने बधाओ देवन रे बारा माए विचार किन्नो। भारतीय उद्योग परिसंघ CII री ओरू राखी जी राजस्थान एनर्जी समिट माए नवीकरणीय ऊर्जा सुरक्षा निवेश और हरित विकास समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे चर्चा करी जी। ए मौके मुख्य सचिव वी श्रीनिवास प्रदेश माए हरित ऊर्जा पैदा करण जुड़ी कोशिशां री जानकारी दीनी। वह कहो कि राज्य माए ऊर्जा हलका माए सुधार री घनी संभावना है। पीएम सूर्य घर योजना रा तहत 5,00,000 घरां ने UAL मॉडल माथे सूरज री रोशनी उं बिजली बनावण रा काम जोड़िया चावेला। खबरनवीसां सागे बातचीत करता थका मुख्य सचिव कहो कि प्रदेश माए ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर बनायो जा रियो है।
4: राजस्थान का जो फ्यूचर एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म है इसके तहत लगभग 3,300 पावर परचेस एग्रीमेंट्स आगामी वर्ष में लागू किए जाएंगे। दूसरा है जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 5,00,000

0: हाउस होल्ड्स को यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के तहत लिया जाएगा और साथ ही साथ जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर के तहत कई नए ट्रांसफार्मर 765 केवी के एस्टेब्लिश होंगे। तो राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है पीएम कुसुम के तहत भारत में सर्वोपरि है और इस मोमेंटम को हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं।
1: ई मौके सीआईआई राजस्थान रा चेयरमैन रजनीश भंडारी कहो के आवता वक्त माए बत्ती बिजली बनावण हुई देश मजबूत बनेला व दक्षता सागे बिजली काम लेवण मा थई जोर तीनो। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर माए वायु प्रदूषण री रोकथाम सारू बनाई जी समिति री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मीटिंग लीनी। इन माए राजस्थान समेत दिल्ली हरियाणा और दूजा राज्यों रा मुख्य सचिव जुड़िया। डॉक्टर सोमनाथन राज्य ने वायु प्रदूषण माथे काबू करण जुड़िया काम ते मियाद माए पूरा करण रा हुकम दीना। ईसा गई वे बिजलियों चलण वाली गाड़िया ने बधावो देवण कारखाना कानियों करी जे प्रदूषण और हवा री गुणवत्ता री लगातार निगरानी करण और पराली और बायोमास बाळबा माथे रोक लगावण समेत दूजा जतन करण माथे खास ध्यान देवण बाबत जोर तीनो। मीटिंग में प्रदेश का मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो कि राज्य सरकार एनसीआर हलका में जूना और हवा ने गंदी करण वाला 5000 गाड़िया ने न्यारा न्यारा दौर में हटावन सारू काम कर रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे रो 1192 किलोमीटर हिस्सों राजस्थान में बनाई चियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में राजस्थान ने एक्सप्रेस वे बनावन रो सबू बत्तो फायदो मिलियो है। पेश है समाचार कक्ष डॉक्टर सालेहा गाजी री रपट।
2: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय रे मुजब देश में कुल 10,389 किलोमीटर रा हाई स्पीड कॉरिडोर और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे ने मंजूरी दी जी है। आमाए 5,580 किलोमीटर माथे काम चाल रियो है जबकि 4,800 किलोमीटर बत्तो काम पूरो वे गयो है। देश रा मौजूदा दौर माए बनिया एक चौथाई नेशनल एक्सप्रेस वे राजस्थान वेर निकल रहा है। खास परियोजना माए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे और नौ नुवा ऐलान करीजा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे शामिल है। आखास सड़क परियोजनावा रे पूरे वे जावणु सफर रो बगत घटेला माल परिवहन तेज वेला और उद्योगा सैर सपाटा और खेती बाड़ी हल्का ने ई नुवी रफ्तार मिलेला। इस आगे राजस्थान रो जुड़ाव देश रा खास माली गलियारा मजबूत वेला जिणु निवेश और रोजगार रा नुवा मौका ही मिलेला।
1: पाली जिला रा रोहट माए आज तेज रफ्तार जा रही कार रे रोडवेज री बस पिछाड़ी टकरा जावण रे कारण तीन जना री मौत वेगी और एक जनो जख्मी फेंक्यो। रोहट रा थाना अधिकारी बतायो के हादसो बांडाई मोड़ के नफियो। रोडवेज री बस पाली जोधपुर जा रही ही। प्रसार भारती रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी कहो है कि लारला 99 साल माए प्रसारण रो विकास रेडियो टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग ताई वेक्यो है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस रे मौके आज आकाशवाणी समाचार सागे खास बातचीत रे दौरान श्री द्विवेदी कहो कि प्रसार भारती देश परदेश माए लोगा सारू हर भांत रो मनोरंजन करण वाली जानकारियां देवन वाली और भणाई लिखाई जुड़ी सामग्री पेश करतो रहेला। प्रसार भारती रा ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स रो जिक्र करता था कहा श्री द्विवेदी कहो के ई प्लेटफॉर्म ने काम लेवन वाला री तादाद 1,10,00,000 ने पार कर की है जो लगातार तेजी बढ़ रही है।
0: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया तत्कालीन बम्बई आज जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का स्मरण करने का और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के लिए।
1: डीग जिला रा पूंछरी का लौठा माए आज मुड़िया पूर्णिमा मेलो शुरू भयो। 30 जुलाई तक चलन वाला ई मेला माए आखा देश जात्रु गोवर्धन जीरी परिक्रमा सारू पूग रिया है।

0: खास मेलो गुरु पूर्णिमा रे मौके 29 जुलाई ने भरेला। मेला माए आवण वाला जातरुआ री मोटी तादाद न ध्यान राखता थका रेलवे और रोडवेज री ओरु खास रेलगाड़ियां और बसा चलाई जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज से डी के पूछरी का लोठा धाम में प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला की शुरुआत हो गई है। सप्त दिवसीय इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन परिक्रमा के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण के लिए परिक्रमा मार्ग पर ई रिक्शा और सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहनों पर रोक लगाई गई है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों और भारी पुलिस बल द्वारा सुरक्षा की कड़ी निगरानी की जा रही है। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, टी।
0: देश री आजादी री लड़ाई में खास काम करने वाला लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आज मारी जयंती रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाना श्रद्धा भाव सागर याद करता था का कहो कि तिलक राष्ट्रवाद री भावना जगाई और आवती पीढ़ियां ने जन सेवा री सीख दीनी। आज ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने वानी जयंती रे मौके याद करया जा रहा है। प्रधानमंत्री वाना श्रद्धा भाव सागर याद करता था का सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए मांडियो के आजाद री जबरदस्त हिम्मत और अटूट देशभक्ति भारत रो गौरव है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ही बाल गंगाधर तिलक ने नमन करता था का कहो कि स्वराज स्वदेशी और राष्ट्रीय चेतना रा दूत बाल गंगाधर तिलक रा विचार हमेशा देश रा भलारी सीख देता रहवेला। जद के माँ भारती रा सपूत चंद्रशेखर आजाद रा ओजस्वी विचार और बलिदानी जिंदगी हमेशा देश री सेवारी सीख देता रहवेला। आखिर माए खास समाचार एक फिर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक उन जुड़िया मामला री बेगी सुनवाई और दोषियां ने कड़ी सजा देवन सारू फास्ट ट्रैक कोर्ट बनावन रो ऐलान कीनो। जयपुर माए राखी जी राजस्थान एनर्जी समिट माए देश परदेश रा जानकार भेड़ा भिया। देश माए बन रहा नेशनल एक्सप्रेसवे और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे मायो करीब 1200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क सागर राजस्थान ने सब बत्तो फायदो मिलियो और मुड़िया पूर्णिमा मेलो आज शुरू थियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर संध्या के ठीक 7 बजे है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व पशुपालक भाई बहनों को विश्राम भाई की ओर से घनी घनी राम राम साहब। जैसा कि आज गुरुवार है और किसान वाणी में हम आपके लिए लेकर आए हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें विषय है पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाएं। विषय के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए मेहमान विशेषक पधारे हैं आप डॉक्टर प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग अलवर। श्रोताओं, आप भी पशुओं से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें अभी फ़ोन करें। हमारे स्टूडियो के नंबर हैं 0144, ये कोड नंबर लगाएं, 2940675। दूसरे नंबर हैं 0144270955। डॉक्टर प्रदीप सिंह जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: जब तक किसी श्रोता का फोन कॉल द्वारा हमसे संपर्क हो, आइए हमारे सभी श्रोताओं को और पशुपालक भाई जो भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको आप जानकारी दें इस समय पशुपालन विभाग की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं इसके बारे में।
1: जी विश्राम जी, देखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हमारे पशुपालक भाइयों को समय पे उनके पशुओं का उपचार हो, उनका बीमा इत्यादि हो, जो नस्ल सुधार कार्यक्रम है उनका उनको लाभ मिले। तो इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोनों ही सरकार पशुपालक भाइयों के लिए उनके लाभ के लिए अलग अलग योजनाएं संचालित कर रहे हैं। इनमें मुख्यतः जो योजनाएं हैं

0: जी,
1: जैसे हमारा राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन आरोग्य योजना है
0: जी,
1: जिसके द्वारा पशुओं का जो उपचार है वो निःशुल्क किया जाता है। दूसरा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी है
0: जी,
1: जो कि नाम से ही जाहिर है, इसमें पशुओं का बीमा किया जाता है। एक केंद्र सरकार की योजना है राष्ट्रीय पशुधन मिशन
0: जी,
1: तो उसमें भी अलग अलग तरह के हमारे पशु
0: जी
1: पालक भाइयों के लाभ की योजनाएं संचालित की जा रही है
0: जी। डॉक्टर साहब देखिए चर्चा जारी रहेगी, लेते हैं फोन कॉल। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार जी।
2: नमस्कार सर, नमस्कार।
0: कौन सर बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
2: मान सिंह मीना बोल रहा हूँ, तहसील सिकराया से, दौसा जिला
0: जी। मान सिंह जी, आप क्या जानकारी चाहते हैं पशु संबंधित?
2: जानकारी ये है, अपने गाय 10-12-13 दिन की होगी गई तो
0: जी,
2: तो वह कहीं झेर भी राइडो पर कोई हल्की फुल्की मात्रा में रहेगा, बहुत टूट गो मरोगा, बहुत काफी बाहर आ गया, बस बैठी हुई है टूट गो।
0: अच्छा जी,
2: जो हल्का फुल्का रहेगा वो विषय जैसा बैठे ना, जब हल्का हल्का मतलब बुर्चा टाइप में आएंगे, जब बदबू आए मतलब।
1: जी जी जी, बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात। देखिए उसके जो जेर का अगर थोड़ा बहुत भी कुछ बचता है ना बचदानी में, तो फिर वो हाँ इन्फेक्शन होके और फिर वहाँ पे वो मवाद बनती है, और फिर वो धीरे धीरे जब बैठते या पशु गोबर करेगा जोर लगाएगा तो वो बाहर निकलेगा। जी जी, तो उसके लिए वही है कि आप या तो हमारे नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि बेहतर इलाज तो वहीं पे, और क्योंकि बच्चेदानी का इन्फेक्शन है उसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ इंजेक्शन हैं, और बच्चेदानी के अंदर भी दवाई छोड़ते हैं उसमें, और वो कम से कम 4-5 दिन तक का इलाज रहेगा, तो ये आप अवश्य करवा लें। कुछ एक दवाइयाँ जो मुंह से देने की हैं, जो बचताने की सफाई के लिए हैं, वो आप ज़रूर किसी मेडिकल स्टोर से लेके आ सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप डॉक्टर साहब से संपर्क करके और वो पूरा इलाज करवाएं। देखो उनसे ये जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, और फिर आपका जो अगला जो जब वो हीट में आएगी, ताव में आएगी, तो फिर आपका उसको पशु को रुकने में भी समस्या आएगी इन्फेक्शन के कारण, तो इसका आप अभी इलाज करवा दें ताकि आगे कोई समस्या आपकी उसका समाधान हो जाए। थोड़ा बहुत दे सकते हो आप, कई बार ज्यादा गुड़ खिलाते हैं तो उससे ना वो अपन कहते हैं निमाही बनती है, ज्यादा जोर लगाना शुरू कर देता है पशु, तो कई बार बच्चेदानी का जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, तो वो एकदम से ज्यादा ना खिलाएं, थोड़ा बहुत दे सकते हैं आप।
0: मानसिंह जी फोन करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर साहब लेते हैं एक और फोन कॉल। हेलो, हेलो,
3: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
3: पीला ढाबा से उमराव यादव
0: जी। उमराव जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, फोन करने के लिए तो आपका शुक्रिया। आपकी क्या जानकारी आप लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में बताएं।
3: ऐसा है सर, एक भैंस है
0: जी,
3: वो लोई मूतती है,
0: यानी कि खून पेशाब में खून आ रहा
3: है। हाँ
0: जी,
1: कब से है ये समस्या?
3: ये आज 4-5 दिन हो गया था।
1: चारा वारा ले रही है आराम से?
3: चारा नहीं पकड़ रही सर।
1: नहीं पकड़ दी। देखिए 2-3 तरह की समस्याएं रहती हैं जिसमें ऐसा होता है, लेकिन अब चारा भी नहीं खा रही, तो हो सकता है उसका बुखार, अगर आपने चेक करवाया हो तो एक बीमारी है जिसमें बुखार भी रहता है साथ में, और पेशाब जो इस तरह का आप कह रहे खून आता है ना वो भी आता है, और वो बीमारी ज़्यादातर जो ये जू चीचड़ी वगैरह जो है ना इस तरह की मक्खियों के कारण रहती है, तो आप उसका तो इलाज बिल्कुल आपको डॉक्टर साहब से संपर्क करके ही करवाना पड़ेगा, उसकी विशेष दवाई है वही लगती है और उसी से उसका निराकरण संभव है, तो आप इसमें देर ना करें और जितना जल्दी हो उसके हमारे संस्था में जाके और डॉक्टर साहब से इलाज करवाएं।
3: अच्छा
1: जी,
3: कोई दवा फावा
1: नहीं, इसका इलाज इंजेक्शन वगैरह ही है, ऐसे कोई वैसी मेडिकल स्टोर से लेके आने की कोई दवाई इसमें काम करती नहीं है। जी
0: ठीक है उमराव जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब लेते हैं एक और फोन कॉल। हेलो,
4: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मैं नासिर खान बोल रहा हूँ, गांव बंडियारा तहसील कामा जिला डी से।
0: जी नासिर जी, आप भी हमारे नियमित श्रोता हैं, फोन करने के लिए आपका शुक्रिया। बताइए आप पशु संबंधित क्या जानकारी चाहते हैं?
4: सर मैं भैंस लेना चाहता हूँ, सरकार से स्कीम है कोई?
0: क्या बोल रहे थे
4: सर? मैं भैंस लेना चाहता हूँ, सरकार कोई स्कीम निकली है क्या, सरकारी पैसा देने के लिए
0: बताओ।

0: नहीं, देखिए गाय भैंस के लिए वर्तमान में खरीदने के लिए अभी कोई स्कीम नहीं है हमारे विभाग की तो।
1: अच्छा
0: और अगर आप सहायता चाह रहे हैं कि खरीदने में आपकी थोड़ा सहयोग मिले, तो आप किसी नज़दीकी आपकी बैंक शाखा जहाँ पे आपका अकाउंट है, खाता है,
1: हाँ
0: उन
1: जी
0: मैनेजर साहब से आप एक बार चर्चा करें। वो आपको लोन की जो सुविधा है ना, वो
1: हाँ ठीक
0: उसमें आप वो सहयोग कर देंगे, तो उसके थ्रू आप ये काम अपना कर सकते हैं।
1: है सर।
0: जी
2: नासिर जी फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब लेते हैं एक और फोन कॉल। हेलो
1: हाँ जी हेलो नमस्कार जी, मैं
2: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामधन सैनी बोल रहा हूँ अल्लेना से। मैं
2: जी रामधन जी, क्या जानकारी चाहते हैं आप पशु संबंधित?
1: टीकाकरण के बारे में जानकारी चाहता हूँ और इस समय कौन से टीकाकरण चल रहे हैं पशुओं में, और भैंस है मेरे पास और उनके क्या फायदे हैं उसके बारे में।
0: जी देखिए, फिलहाल जो वर्तमान में बात करें तो फिलहाल हमारे विभाग के द्वारा बरसात से पूर्व जो टीकाकरण किया गया था वो गलघोंटू का था, और एक लंगड़ा बुखार का भी कुछ जगह जहाँ पे इस तरह की अगर बीमारी रहती है तो वहाँ भी लगवाते हैं। उससे पूर्व में हमारे जो बांग है उसका एक अभियान संचालित किया गया था और वो टीके लगवाए गए थे। तो फिलहाल अगर आज के केवल समय की बात करें तो क्योंकि इस मौसम में गलघोंटू जो है उसी रोग प्रकोप की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसके टीके अगर आपके क्षेत्र में या आपके घर में पशुओं के नहीं लगे हैं तो आप हमारे पशु चिकित्सा संस्था से संपर्क करके उनको जरूर लगवा लें। और जहाँ तक आपने बात करी कि फ़ायदों की, तो देखिए टीके हम ज़्यादातर उन्हीं बीमारियों के लगवाते हैं जिनका होने के बाद में या तो इलाज संभव नहीं है या बहुत खर्चीला रहता है और पशु के बचने की संभावना थोड़ा कम रहती है। तो यही फ़ायदा है कि बचाव ही उपाय है, आप टीकाकरण पहले करवा लेंगे तो बाद में आपको समस्या नहीं रहेगी।
2: रामधन जी फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब देखिए चर्चा जारी रहेगी, इसी बीच किसान भाइयों को सुनवाते हैं ये संदेश। तो भाइयों

0: हो बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई फसल बीमित रहे
1: कटाई के बाद विधाई
0: ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
3: हाँ तो डॉक्टर साहब देखिए ये तो किसान भाइयों को सुनवाए संदेश और अब हमारे पशुपालक भाइयों को आप जानकारी दें मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है और इससे हमारे पशुपालक भाई हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं इसके बारे में।
4: जी देखिए राज्य सरकार द्वारा 2024 की बजट घोषणा में इस योजना की शुरुआत की गई थी और तब से लगातार सभी जिलों में ये योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पशुपालक अपने अधिकतम 2 गाय या 2 भैंस जो कि दूध देने वाली हो दुधारू हों या 10 भेड़ बकरी या ऊंट
3: जी
4: इनका बीमा निशुल्क करवा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इसमें कोई भी प्रीमियम पशुपालक के को हम नहीं लेते हैं उनसे
3: जी।
4: और ये निशुल्क होता है उनका बीमा पशुओं का। जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए है कि जन आधार कार्ड उस पशुपालक का या जो महिला है उनका आवश्यक है
3: जी। देखिए डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी लेते हैं फोन कॉल। हेलो
5: हेलो
3: हाँ जी नमस्कार साहब।
5: नमस्कार साहब मैं अमर सिंह चौधरी बोल रहा हूँ सर पिनान से रैणी तहसील जिला अलवर से।
3: जी पिनान से बोल रहे हो अमर सिंह जी आपका देखिए प्रोग्राम में हमारे कार्यक्रम में स्वागत है क्योंकि आप हमारे नियमित श्रोता हैं। क्या जानकारी चाहिए आपको पशु से संबंधित?
5: सर भैंस थी जिसका मैंने बीमा करवा रखा था वो बेच दी।
3: हाँ जी
5: और फिर दूसरी लिए जब मैंने उस किसान से पूछा था भाई इसका बीमा हिमा करवा रखा है ना तो उसने मना कर दिया कि भाई इसका तो नहीं हो रहा तो अब उसका बीमा करवाना पड़ेगा कि वो पुराना बीमा ही चलेगा क्या मामला रहेगा?
4: नहीं देखिए अमर सिंह जी ये जो बीमा योजना है इसमें जिस पशु का बीमा एक बार होता है तो ये बीमा दूसरे पशु पर नहीं जाता और अगर आपने पशु बेच दिया है तो ये

0: जो बीमा पॉलिसी है वो प्रभावी नहीं रहती। अच्छा, मतलब ओनर अगर बदल गया है, जी नहीं बिल्कुल नहीं, हाँ पशु मालिक अगर बदल गया तो ये जो पॉलिसी है ना वो ये मानो एक तरह से खत्म होती है। और अभी आपने चूंकि नया पशु लिया है तो उसका नया बीमा ही होगा इस पशु का, वो वही प्रक्रिया रहेगी जो पहले आपने बीमा करवाया था उस पशु के तरह ही।
1: जी ठीक है साहब, अमर सिंह जी फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब देखिए, आप जानकारी दे रहे थे मंगला पशु बीमा योजना के बारे में।
0: जी मैं कह रहा था कि जो जनाधार कार्ड है उसकी अनिवार्यता है इसमें, राजस्थान के वो निवासी हों, पशुपालक हमारे, जनाधार कार्ड उनका बना हुआ हो, बैंक में उनका खाता हो
1: जी,
0: और जो पशु जिनका वो बीमा करवाना चाह रहे हैं उनके वो जो टैग जो हम लगाते हैं ना बिल्ले कान में वो आवश्यक है। तो उसके लिए वो पहले पंजीकरण एक साइट है, एक ऐप भी है
1: जी,
0: उसके थ्रू चाहे वो ई मित्र पे जाके या स्वयं अपने मोबाइल से उसका पंजीकरण कर सकते हैं अपने पशु का
1: जी।
0: और फिर सब कुछ प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है, हमारे जो नज़दीकी डॉक्टर साहब हैं उनके उस मोबाइल ऐप पे ही उनको वो दिखता है पंजीकरण, वो उनके घर पे जाते हैं, घर पे जाके पशु का स्वास्थ्य परीक्षण करके और फिर वो उनकी पॉलिसी SIPF डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की जाती है
1: जी।
0: तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और पशुपालक भाई इसका लाभ ले में।
1: देखिए डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, लेते हैं फोन कॉल। हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं रामस्वरूप बोल रहा हूँ जी, अलवर से
1: जी। रामस्वरूप जी, पशु संबंधित क्या जानकारी आपको चाहिए बताइए।
2: मेरा निवेदन है सर, स्वर्ण कपिला गाय कामिल पेयर कैसे नस्ल है ये?
1: स्वर्ण कपिला गाय के बारे में जानकारी चाहिए,
2: कामिल पेयर कैसे नस्ल है, इस बारे में थोड़ी जानकारी दे दें मेहरबानी करके।
0: देखिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि ये हमारे राजस्थान की नस्ल तो है नहीं, है ना, तो और किसी दूसरे राज्य की ये नस्ल होगी और हमारी जो ब्रीडिंग पॉलिसी है राजस्थान राज्य की उसमें भी ना ही तो इसका जो सीमन है वो हमें सप्लाई होता है और ब्रीडिंग पॉलिसी में रिकमेंडेड भी नहीं है यहाँ पे उसको, हमारे यहाँ की जो जलवायु है उसके हिसाब से। तो अगर आप, और अगर आपको इस योजना की जानकारी ज़्यादा ही चाहिए तो या तो हम आपको कभी भी हमारे नज़दीकी संस्था में जाएं या फिर आजकल तो गूगल कर सकते हैं, इस तरह की सामान्य जानकारी तो सभी उपलब्ध गूगल पे रहती है।
1: तो देखिए रामस्वरूप जी फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब लेते हैं एक और फोन कॉल। हेलो,
3: हेलो,
1: हाँ जी राम राम साहब।
3: जी राम राम जी,
1: कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर?
3: हाँ जी मैं हनुमान साय बोल रहा हूँ, बामनवास कांकड़ से।
1: जी हनुमान साय जी आपका सवाल करिए।
3: एक भैंस के 3-4 दिन से अल्कोहल को होते हुए सूजन बढ़ रही है कान के नीचे से लेकर के गला तक।
0: जी
1: जी,
0: और कोई समस्या
3: नहीं? बस वो ही है, उसका भी चारे में कोई दिक्कत नहीं आ रही, मैंने कोई ऐसी वो तो नहीं है?
0: नहीं देखिए यहाँ पे ये जो सूजन है कान के नीचे और नीचे गले तक जो आती है ना, और चूंकि आप कह रहे हैं कि अभी चारे पानी में कोई समस्या है नहीं, पशु स्वस्थ दिखाई दे रहा है, तो गलघोटू की संभावना तो बिल्कुल ना के बराबर है। यहाँ पे एक दो दूसरी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल डिजीज जिनको हम बोलते हैं, और कई बार जो रसोली टाइप आप कहते हैं ना वो जब शुरू होती है तो भी इसी जगह पे सूजन स्टार्ट होती है,
3: जो गांठ
0: गांठ जो उठती है, हाँ हाँ, तो उनकी शुरुआती जो लक्षण है वो इसी तरह के रहते हैं। तो आप एक बार
3: पाड़ों के छोटे पाड़े का भी हो जाते कई बार ये गांठ
0: जी, कई बार एक एक नहीं, कई एक ही स्थान पे लाइन से भी होती है, 4-4, 5-5 गांठें हो जाती है एक ही जगह पे। तो वैसे तो अगर वो है तो फिर हम कहते हैं कि आयोडीन जो है ना वो खिलानी रहती है लगातार, ताकि इस तरह की बीमारी ना हो, और अगर कोई दूसरी बैक्टीरियल है तो फिर आपको एक बार हमारे किसी भी संस्था में डॉक्टर साहब से चेक करवा लें, उसको जांच कर लेंगे वो कि किस तरह की समस्या है, उसी हिसाब से वो उसका उपचार बताएंगे आपको।
3: आयोडीन में क्या दिया जाए उसमें विशेष तौर से अपने चारे में?
0: सर सिंपल जो पोटेशियम आयोडाइन आयोडीन जो है वो उपलब्ध रहती है मेडिकल स्टोर्स पे, वो अगर ऐसी समस्या है तो 8-10 ग्राम मुँह के द्वारा ही दी जाती है लगभग 5-7 दिन तक।

0: तो हनुमान साहब जी फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब देखिए, अब हमारे पशुपालक भाई हैं उनको आप जानकारी दें पशुधन मिशन क्या है और इसके जो लाभ हैं वो हमारे किसान भाई या पशुपालक भाई वो किस तरह से ले सकते हैं इसके बारे में।
1: जी देखिए, राष्ट्रीय पशुधन है ये, NLM के नाम से काफ़ी लोग जानते हैं इसको, और ये 2021 के आसपास केंद्र सरकार द्वारा योजना की शुरुआत की गई थी।
0: जी,
1: इसके तहत जो पशुपालक भाई पशुपालन को एक थोड़ा वृहद स्तर पे करना चाहते हैं छोटे स्तर की बजाय, उन लोगों को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंदर मुख्यतः जो भेड़ बकरी है
0: जी,
1: साथ में आपके सुअर पालन है या हैचरी की यूनिट अगर लगाते हैं, मतलब मुर्गी के अंडे से बच्चे निकाल के उनको बेचना, अभी बहुत ही कुछ 2-3 महीने पहले इसमें आपके अश्वंश मतलब घोड़ा गधा और उष्ट्रवंश ऊँटों को भी शामिल किया गया है
0: जी।
1: तो इस योजना में जो लागत है कुल उस प्रोजेक्ट की जो लागत है उसका 50% तक सब्सिडी सरकार के द्वारा दे रहती है। आप मान के चलिए अगर वो प्रोजेक्ट आपका 1 करोड़ का है तो 50 लाख की उसमें सब्सिडी रहेगी और बाकी 50 लाख में उस जो है उसमें टोटल 10% उस पशुपालक का हिस्सा है, और फिर अगर आपको आवश्यकता है तो आप बाकी राशि बैंक से लोन के रूप में ले सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न हमारे पशुपालक भाइयों की ओर से कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये क्या है और इसको हमारे किसान भाइयों किस तरह से अपना सकते हैं इसके बारे में बताएं।
1: जी देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड तो कृषि विभाग के द्वारा
0: पशुपालन का होता है ना।
1: जी जी, तो वो तो पूर्व से संचालित है, लेकिन कुछ वर्ष पहले केंद्र सरकार ने पशुओं के लिए भी इस योजना को शामिल किया था कि ताकि अगर किसी के पास कृषि योग्य भूमि नहीं है या खेती नहीं करते हैं लेकिन पशु अगर वो पाल रहे हैं तो उनको भी इस तरह की राहत देते हुए जो उनकी दैनिक आवश्यकताएं हैं पशुओं की, चाहे वो चारे संबंधी हैं चाहे बीमा संबंधी है या कोई शेडवेड निर्माण है, तो उनके लिए उनको 1,60,000 से 3 लाख तक का अल्पकालीन ऋण जिसको कहते हैं ना वो दे रहता है। उसका 7% इंटरेस्ट रहता है, अगर आप टाइम पे पे करते हैं तो आपको 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है, मतलब छूट मिलती है, तो केवल 3% ही आपका ब्याज लगता है हर साल आप टाइम पे भरें। जैसे KCC का है प्रक्रिया सारी वही है, इसलिए ये है कि आपके पास पशु होना अनिवार्य है, उनके कीमत के बेस पे आपको वो लागत के हिसाब से आपको ये ऋण दे रहता है।
0: जी तो देखिए डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रहेगी, इसी बीच किसान भाइयों के हित में सुनाते हैं ये संदेश, तो भाइयों सुनो।
2: प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: तो देखिए डॉक्टर साहब, ये तो किसान भाइयों को सुनवाए संदेश, और अब हमारे पशुपालक भाई हैं, उनको जानकारी दें। उससे पहले लेते हैं ये फोन कॉल। हेलो
4: जी, नमस्ते सर।
3: नमस्ते जी, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: सर मैं खेमचंद बात कर रहा हूँ, पूनखर से, मालाखेड़ा के पास से।
3: जी खेमचंद जी, आप पशु संबंधित क्या जानकारी चाहते हैं?
4: सर हमारे 9 महीने की गाभिन भैंस है सर। उसके सर कल पीड़ बोलते हैं ना अपन
5: जी,
4: सर वो 20 फुट लंबी करीब पीड़ निकली थी सर उसके
5: जी।
4: तो उसको सर कल एक एल्बेंडाजोल गोली भी दी सर, उसके बारे में सर जानकारी लेनी
5: जी। देखिए अगर वो इतना लंबा बता रहे हैं तो वो पीड़ नहीं है, पीड़ का जो लंबाई है वो छोटी रहती है काफ़ी। ये हिंदी में कहें तो फीताक्रमी होते हैं, टेप वर्म जो होते हैं, इनकी लंबाई ये आंतों में रहते हैं, और जितने आंत की लंबाई है कई बार इनकी लंबाई आंतों जितनी भी हो सकती है। ये वही है, कीड़ा है, पेट का कीड़ा, और इसके लिए जो एल्बेंडाजोल दी है

0: वो दवाई डॉक्टर साहब ने जो हमारे संस्थानों में फ्री में निःशुल्क उपलब्ध भी है, लेकिन वो एक बार देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब आपने खुद देख लिया और इतनी लंबी वो टेप और बाहर निकला है तो उसके दूसरे और जो बच्चे पैदा होते हैं इस तरह से, तो और भी हो सकती है संभावना पूरी। तो आपने जैसे अभी अगर एक बार दिया है तो 7 दिन बाद में, और आप बता रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है ना, 9 महीने की
1: जी, 1 महीने बाद
0: जी। तो देखिए सामान्यतः एल्बेंडाजोल को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं प्रेग्नेंट एनिमल्स में। तो दूसरा आप जैसे फेनबेंडाजोल है वो प्रेगनेंसी सेफ है, वो गर्भकाल में सुरक्षित रहती हैं, उसको आप दें और फिर 7 दिन बाद फिर दोबारा से दें, उसके बाद फिर वापस 21 दिन। इस तरह से कम 3 बार आप जब देंगे ना तो हम मान के चलेंगे कि लगभग अंदर से जो सारे उसके जो बच्चे हैं या छोटे अंडे वंडे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और आपका पशु पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा।
1: जी सर, वो उसकी जो लेंथ थी ना वो 20 फुट और मोटाई थी करीब सर 1 उंगली के बराबर, इतनी मोटी थी सर।
0: नहीं, रहते हैं ये इस तरह के टेप वर्म होते हैं वो, चूंकि अपने को जब देखते हैं तो मिट्टी में लग के ना उनकी शेप आपको अलग वैसी नहीं दिखती जैसी एक्चुअल में रहती है, लेकिन वो थोड़े चपटे से रहते हैं और इतने लंबे टेप वर्म ही होते हैं।
1: सर उससे इससे बच्चे को तो कोई नुकसान नहीं होगा?
0: नहीं, बच्चे को सीधे तौर पर कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर उस टेप वर्म के कारण आपके पशु के पोषण की कमी होती है तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा जो है वो हो सकता है पूर्णतः स्वस्थ ना रहे या कमजोर पैदा हो, इस तरह की संभावना बढ़ जाती है।
1: सर उसके लिए कोई और ट्रीटमेंट?
0: बिल्कुल, ये जो मैंने बताया इसके साथ साथ में आप पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो मिनरल मिक्सचर्स वगैरह जो है वो हमारे संस्थाओं में निःशुल्क उपलब्ध है, आप वो उसको देना स्टार्ट करें और साथ में कोई लीवर टॉनिक भी शुरू कर दें ताकि उसका लीवर के ऊपर जो अगर इफेक्ट आया है उसके कारण वो भी सुरक्षित रहे।
1: धन्यवाद।
2: तो खेमचंद जी, फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब देखिए, अब हमारे पशुपालक भाई उनको आप जानकार दें, आपके विभाग द्वारा मोबाइल वेटरनरी यूनिट चलाई जा रही है, इससे हमारे पशुपालक भाई हैं वो कैसे लाभ ले सकते हैं इसके बारे में बताएं।
0: जी देखिए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से यह योजना संचालित की जा रही है और सामान्यतः इसका नाम 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना बोलते हैं। आपने भी देखा होगा भगवा कलर की कुछ गाड़ियां हैं जो आपको कहीं ना कहीं रस्तों में चलते हुए दिखाई देती होंगी, उन पे लिखा भी रहता है। ये चल चिकित्सा वाहन है हमारे, चल पशु चिकित्सा वाहन, और ये 1962 पे कॉल करने से आपको ये सुविधा उपलब्ध रहती है। अगर किसी पशुपालक भाई का पशु अस्वस्थ है और उनको सहायता चाहिए तो वो इस नंबर पर कॉल करें, वो जो यूनिट है हमारी मोबाइल यूनिट उसमें एक डॉक्टर साहब रहते हैं, एक हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ में रहते हैं, वो आपके घर पे आएगी और सारा उपचार वो निशुल्क करके जाएंगे। इसके लिए आपसे कोई पैसा वो नहीं लेंगे। साथ में अभी कुछ जांचें भी उनके साथ में रही हैं, छोटी मोटी जो जांचें हैं वो भी आपके घर पे ही मौके पे करते हैं। तो योजना अच्छी है, दूरदराज के जहाँ पे हमारी वर्तमान में विभाग की पशु चिकित्सा संस्थाएँ संचालित नहीं हैं और उनको दूर से जब पशु कहीं दूर लेके जाते हैं दिक्कत रहती है, उनको ध्यान में रखते हुए योजना संचालित की जा रही है, तो इसका लाभ अवश्य लें
2: जी। तो डॉक्टर साहब, अब हमारे पशुपालक भाई हैं उनको आप जानकार दें, सेक्स और ट्रेड सीमन क्या है और इसका लाभ हमारे किसान भाई कैसे ले सकते हैं
0: जी बताएं। हाँ देखिए, नस्ल सुधार जो हमारा कार्यक्रम है विभाग का, उसमें पहले जो हमारा कन्वेंशनल सीमन जिसको हम कहा करते वो इस्तेमाल किया करते, लेकिन चूंकि उसके कारण जो नर की संख्या आधी आधी रहती नर और मादा की, और फिर आजकल क्योंकि खेती के काम में तो नर आ नहीं रहे
2: जी,
0: तो उस समस्या को देखते हुए अभी ये एक सेक्स ओटेड सीमन योजना शुरू की गई है जिसमें 90% तक जो है वो मादा ही पैदा होती हैं। तो इस योजना का जो उद्देश्य है वो यही है कि पशुपालक जब मादा ज़्यादा पैदा होंगी तो वो फिर वो उनके जो दूध की जो बढ़ोतरी है वो भी होगी, और जो नर पशु जो आज के दिन ज़्यादा उनसे मुनाफा कुछ होता नहीं है तो, और जो आवारा घूमते हैं निराश्रित जो गोवंश होता है वो हमें समस्या पैदा कर रहे हैं, उस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, साथ में पशुपालक भाइयों के मादा के कारण उनका जो आमदनी है वो भी बढ़ती है। और ये केवल मात्र सब्सिडाइज रेट पे 70 रुपये में हमारे विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो पशुपालक भाई इसका फायदा उठाएं।
2: तो डॉक्टर साहब देखिए, अगला हमारे पशुपालक भाइयों को प्रश्न है कि पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना क्या है, ये किस तरह से चल रही है और पशुपालक भाई किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में बताएं।
0: जी देखिए, यह योजना 2013 से संचालित की जा रही है, पुरानी योजना है। इसके अंदर जो हमारी जितनी भी पशु

0: चिकित्सा संस्थाएं हैं उनमें जो भी दवाइयां हैं आज के दिन लगभग 200 तरह की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। कोई उनसे पशुपालक से कोई भी राशि इसके एवज में नहीं ली जा रही। पहले पंजीकरण शुल्क लगा करता 5 रुपये, फिलहाल वो भी बंद है, तो बिल्कुल निःशुल्क है। आप अपने पशु को वहाँ पर लेके जाएँ और जो भी इलाज, चाहे वो इंजेक्शन हैं चाहे दूसरी दवाइयाँ हैं, वो सब आपको निःशुल्क मिलेंगी। तो इस योजना का उद्देश्य वही है कि जो पशुपालक भाई जिनके आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है और वो खर्चा अनाप से खर्चा करना पड़ रहा था पहले पशु के उपचार पे, तो अब उनका जो ये खर्चा है वो बिल्कुल पूरी तरह से शून्य करते हुए उनको सारी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अंत में हमारे पशुपालक भाई हैं उनको आप जानकारी दें कि जो अभी नवजात जो बछड़े हैं उनका जैसा कि वर्मी कीड़े यानी कि भाई और आंतरिक कीड़े होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या कर सकते हैं?
0: जी देखिए, सामान्यतः जो नए बच्चे जो पथड़ा पथड़ी पैदा होते हैं, तो ये जो अभी एक भाई ने प्रश्न किया था पीड़ का, वो जो है वो उनमें ज़्यादातर संभावना रहती है। तो 15 दिन का होते होते ही आप पहली बार उसको खुराक दें, उसके बाद फिर वापस डेढ़ एक महीने का हो तो फिर पुनः दे दें, और फिर 3 महीने का हो तो तीसरी खुराक दे दें। पेट के कीड़ों की हमारी संस्थाओं में उपलब्ध है, तो उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा इस समस्या से।
1: जी डॉक्टर साहब, देखिए आपने अपना अमूल्य समय दे करके हमारे श्रोताओं की पशुओं से संबंधित सभी समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया, और इसके अलावा पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उनके बारे में सभी तरह की जानकारी उनको दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, समय की बाध्यता, घड़ी की सुई समापन का इशारा करती हुई हमें जाने की इजाज़त दीजिए। जय जवान जय किसान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए आप सुनते हैं कस्टमाइज स्पॉन्सर प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस।
1: वी ब्रिंग यू अ टॉक ऑन एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस बाय एना एप्रिया, एसोसिएट लीगल सेंटर फॉर WTO स्टडीज IIFT। This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो इंडिया में कोई भी जूरिस्प्रूडेंस हो, वेदर इन्वायरमेंटल और अदरवाइज, द स्टार्टिंग पॉइंट इज ऑलवेज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी सब्जेक्ट के बारे में क्या बोलता है पहले हम ये देखते हैं, एंड देन वी सी, वी लुक एट द लॉज विच आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ द पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बट एक पेक्यूलियर बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि इसमें बहुत एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका मानना है कि इन्वायरमेंटल कॉन्स्टिट्यूशन इन्वायरमेंटली ब्लाइंड था इन द वेरी बिगिनिंग व्हेन इन 1950s इट वाज अडॉप्टेड, बिकॉज द टर्म इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये सारे टर्म्स नहीं थे उसमें। बट अदर स्कूल ऑफ थॉट ऑन द अदर हैंड, विच आई ऑल्सो अग्री विथ, सेज दैट साइलेंस ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डज नॉट मीन की कोई इंटेंट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन का एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। लेटर ऑन वील सी कैसे आर्टिकल 21, जो कि हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहा है, उसको ही यूज करके हमारी ह्यूमन राइट्स एंड राइट टू डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21 को यूज करके इन्वायरमेंटल राइट्स आगे इवॉल्व हुए हैं। और ये मेन प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एनवायरनमेंट के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 48A में, और फंडामेंटल ड्यूटी जो सिटीजन की होती है वो 51AG में मेंशन है। ऑल्दो ये दोनों ही राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो कि पार्ट 3 में होते हैं, लेकिन इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन डेवलपिंग एनवायरमेंटल ज्यूरिसप्रूडेंस। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की पहले आर्टिकल में ये लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ अ नेशन। सो ऑल्दो इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल कंसर्न ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फ्यू मोर प्रोविजन जो कि यूजुअली छूट जाता है लोगों के नोटिस से, क्योंकि 48A एंड 51AG आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। बट इफ यू लुक एट द प्रोविजन रिलेटिंग टू लोकल गवर्नमेंट विच इज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उसमें भी एक्सप्लिसिटली फंक्शंस में उनके मैंशनड होता है। इफ यू लुक एट पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,

Which talks about municipal cooperation, local government generally, ki you have to make a draft development plan for ecological conservation and environmental protection. So, jo district or metropolitan planning committees hain, unke respect mein specifically environment protection ka mention hai. तो ये ऑलरेडी हमारे भले ही वो मॉडर्न लेजिस्लेटिव सेंस में हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में नहीं रहा हो, वो 1972 के बाद आया हो, बट इंट्रिंसिकली इंडियन ज्यूरिसप्रूडेंस ऑलवेज हैड एन इम्पॉर्टेंट, इट ऑलवेज हैड गिवन इम्पॉर्टेंस टू एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन. सो इफ यू कैन सी 1972 में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद 1974 में वाटर एक्ट आया, 1980

0: always had an important it always had given importance to environmental preservation. So if you can see, 1972 mein conference hua, uske baad 1974 mein Water Act aaya, 1980 mein Forest Conservation Act, 1981 mein Air Conservation Air Prevention and Control of Pollution Act, and finally 1986 mein Environmental Protection Act, which is more of an umbrella act jisme sara environment ki sari cheeze cover hoti hain. But that came after the Bhopal gas tragedy. Specifically Central Pollution Boards jo hote hain, jo Water or Air Act ke under kaam karte hain, and EIA notifications jo ki Environmental Protection Act ke under se hi emanate karta hai. And then talking about international commitments, then again after Stockholm, India has become a part of all of these conventions. Convention of Biological Diversity, UNFCCC, Paris Agreement, in which many countries, many big countries of the world are exiting and entering it again and again, but India has been committed to its principles under Paris Agreement. Then Convention on Wetlands, Sites and Basel Conventions, jo wetlands ki baat karta hai. So also we know, so after adopting all of these international commitments, we have also, as far as possible, the parliament has also adopted it into our domestic law. So this is jurisprudence. When we talk about jurisprudence, it is all about law. So I'm talking about in a right based manner ki kitne tarike ke rights hain, environment law kahan kahan se aa sakta hai. So ye constitutional rights aur fundamental rights, kyunki like I mentioned in the very beginning, usme mentioned nahi tha constitution mein shuruaat mein, to wo dheere dheere develop hua through amendments, but usme supreme court ka particularly kafi important role raha hai. So starting with one of the cases, so it is something which people say in environmental law circles ki if we talk about the journey of environment law, wo kisi रिवर से या ट्री से नहीं शुरू हो रहा है, फॉरेस्ट से नहीं शुरू हो रहा है, वो एक ड्रेन से शुरू हो रहा है. बिकॉज दिस इज द केस ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद का केस, जिसमें देयर वाज एन ओपन सीवेज सिचुएशन, सैनिटरी इश्यूज थे एक छोटे से टाउन में मध्य प्रदेश के. वहाँ पे सिटीजन्स वेंट टू कोर्ट एंड दे आस्क्ड द मैजिस्ट्रेट टू इंटरवीन, बिकॉज स्टैट्यूटरी मैनर में सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था, विच इज नाउ बीएनएसएस, उसमें प्रोविजन थे कि पब्लिक न्यूजेंस के फॉर्म में कैसे उसको रिमूव किया जाए. बट वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी का और अथॉरिटीज़ का ये डिफेंस था कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है, वी डू नॉट हैव इनफ फंड्स टू फिक्स दिस प्रॉब्लम. और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि द सिटीजन्स हैव चोजन टू स्टे इन अ पोल्यूटेड एरिया, सो इट इज देयर चॉइस, नाउ दे हैव टू डील विद इट, सॉर्ट ऑफ इस तरह का अप्रोच था.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: We continue with the talk from the webinar of the Department of Justice on Environmental Jurisprudence.
2: सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पूरी जर्नी में है कुछ अगर तो वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन व्हेन द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड टेकिंग अप पिटिशंस बाय पर्संस हु वर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीगल कॉन्सेप्ट विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडाई। उसमें ये बोला जाता है कि जिस जो इंसान अफेक्टेड है वो ही कोर्ट में जा सकता है, बट बाई मीन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो कॉन्सेप्ट को थोड़ा रिलैक्स कर दिया गया। तो इवन इफ एनी पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड, इवन वेन दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट स्टेक इन द आउटकम, इवन दे कैन गो टू कोर्ट। तो पहला एस्पेक्ट तो ये था। दूसरा, कोर्ट ने ये करा कि लेटर्स और टेलीग्राम्स के फॉर्म में भी जो लेटर लिखा जाता था, बहुत सारे ओपन लेटर्स आते हैं न्यूज़पेपर में, आपने देखा होगा कि ओपन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे लेटर्स कभी कभी जाते थे जिसमें एक स्पेसिफिक लीगल प्रॉब्लम स्पेशली इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बताई हुई होती थी, कोर्ट ने उसको रिट पिटिशन के फॉर्म में खुद ही कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो इवन ए पर्सन हु इज नॉट एबल टू हायर अ लॉयर और उसको पूरी कोर्ट की वो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज नहीं पता है, उनकी बातें भी कोर्ट तक पहुँचने लग गई। थर्ड वॉज सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट लेने, नाउ एनजीटी ऑल्सो टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसमें अगर कोर्ट या किसी जज ने या कोर्ट की रजिस्ट्री ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट सॉरी न्यूज़पेपर्स में कोई इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की एक्टिविटी हो रही है विच इज नॉट मे बी कोर्ट के सामने अभी तक नहीं आई है, तो कोर्ट ने वो खुद से ही सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उस पर काम करना शुरू कर दिया। चौथी एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि एडवर्सरियल प्रोसीडिंग्स जिसमें ए वर्सेज बी का फॉर्मेट रहता है कोर्ट में, उसको हटाकर कोर्ट ने बोला कि एनवायरमेंटल मैटर्स में, क्योंकि तो कोर्ट मेड एक्सपर्ट लेवल कमिटीज और उनको बोला कि आप टाइम लीजिए साइंटिफिक इवैल्यूएशन करके हमें फाइंडिंग्स बताइए, बेस्ड ऑन दोज फाइंडिंग्स देन कोर्ट गेव वेरी रीजंट रिस्पॉन्सेस।

0: But in this monetary compensation, equitable remedies भी court देने लग गई as a result of environmental issues. अब जो दो main article की बात होती है rights chapter में, one is article 19 and one is article 21. Article 19 बहुत मैं short में बताऊंगी क्योंकि it is right to freedom of speech and expression, but उसमें court ने read किया हुआ है right to know. तो इसमें right to know court ने कैसे implement किया कि उसमें court ने अथॉरिटीज को कंपेल किया कि आप जो सैनिटेशन प्लान्स हैं अपने या बिल्डिंग बनाने की जो परमिशन स्लिप्स हैं वो सारे कुछ प्रोड्यूस करना, एंड द सिटीजंस हैव अ राइट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लान्स. तो उस तरह से कोर्ट ने इसको इंप्लीमेंट किया. एंड आर्टिकल 21 में आई विल बी अ लिटिल ब्रीफ. आर्टिकल 21 में देयर वर फ्यू केसेस, जैसे स्टार्टिंग में कोर्ट ने आर्टिकल 21 का नाम नहीं लिया लेकिन बात की कि देयर इज अ राइट टू लिव इन अन हेल्दी एनवायरमेंट. वो दून वैली का केस था, स्पेसिफिकली स्पीकिंग रूरल एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इस केस में मसूरी में माइनिंग हो रही थी तो उसको रोक करके कोर्ट ने बोला कि देयर इज अ राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट, बट उसमें आर्टिकल 21 मेंशन नहीं किया. बट इवेंचुअली आगे चल के दो तीन केसेस के बाद इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार का एक केस था जिसमें कोर्ट ने बोला कि राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरमेंट, होलसम एनवायरमेंट विथ फ्री क्लीन एयर एंड क्लीन वाटर इज द राइट अंडर आर्टिकल 21. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर कोई राइट आपका फंडामेंटल राइट बन जाता है तो एट द सेम टाइम यू गेट रेमेडी अंडर आर्टिकल 32. तो उसमें आप सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं. अगर कोई चीज आपकी फंडामेंटल राइट है तो बारिंग ऑल कोर्ट्स यू कैन डायरेक्टली गो टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट. And you must have heard the name of M.C. Mehta. He was a big-time environmentalist and litigator. तो इनके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं. जो लॉ स्कूल में जाते हैं वो तो काफी ज्यादा इनका नाम सुनते हैं. जनरली भी इन्वायरमेंट सर्कल्स में ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स. तो वंस यू गेट अ राइट, व्हाट एमसी मेहता डिड इज ही फाइल्ड पिटिशंस इन कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32, जिससे उनको एक्चुअल रेमेडी मिले. क्योंकि जब एक वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, सो नाउ द कोर्ट हैज एस्टैब्लिश्ड अ राइट अंडर आर्टिकल 21, सो देयर इज अ रेमेडी एज वेल इन्वॉल्वड. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ टू केसेस, गंगा पोल्यूशन केस एज एंड द ओलियम गैस लीक केस. So just to take one example, in the MC Mehta versus Union of India case, MC Mehta went to court and it said that ये tanneries से जो पानी, जो chemical factories और tanneries से जो waste निकल के पानी में जा रहा है, which is polluting the Ganga River, eventually the court had to order to shut down these tanneries. So this now right has taken in the form of a remedy as well. Indian Council for Enviro Legal Action, इसमें court ने पहली बार एक high level पे environmental remediation के लिए cost pay करने के लिए बोला chemical factories को. And the TN Godavarman case, like I already explained, इसमें court ने continuing mandamus issue किया, जिसमें court forest conservation का ये originally case था, और अभी तक इस पे orders और hearings होती हैं Supreme Court में. So these were the most fertile years of the Indian Constitution, जिसमें rights और remedies काफी ज़्यादा evolve किए गए.
1: You have been listening to a talk on environmental jurisprudence conducted by the Department of Justice. We slip into a short break.

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: You had been listening to a talk on environmental jurisprudence by Anna A. Priya, Associate Legal, Center for WTO Studies, IIFT. This talk was part of a webinar conducted by the Department of Justice.
2: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और लीजिए आप सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में जब जब फूल खिले फिल्म से गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर

0: महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत में लीजिए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में जुएल थी फिल्म से गीत। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीत से सवारा है SD वर्मन ने।

0: कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत में लीजिए आप सुनते हैं सुखविंदर सिंह अलका याग्निक की आवाज में दीवाने फिल्म से गीत। गीतकार है समीर और संगीत से सवारा है संजीव दर्शन ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली से।

रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल भी सदन चलने देने के लिए विपक्षी सदस्यों से अपील की थी। कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों के नेताओं से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर बातें की हैं कि आपका जो सुझाव है उस पर लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार चर्चा करना चाहती है, लेकिन इसमें सहयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की घोषणा पहले ही कर दी है। उन्होंने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि वे सदन में सहयोग करें और सदन को चलने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है। श्री रिजिजू ने विपक्षी दलों के नेताओं से पेपर लीक के मामले पर राजनीति न करने का आग्रह करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए चर्चा करनी चाहिए। इससे पहले सदन की कार्यवाही आज 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर हंगामा किया। शोरगुल और हंगामा देखकर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल को चलने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग उनके चैम्बर में आए और बातचीत से कोई समाधान निकाला जाए। नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा कराई जाएगी। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कहा कि सदस्य सदन की कार्यवाही चलने देना नहीं चाहते। उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी सदस्यों ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने हंगामे के बीच ही आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर बैठकर सदन की कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और इसीलिए उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। पीठासीन श्री सैकिया ने सदस्यों से नियम 377 के तहत मामले को उठाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि सदन को बार-बार बाधित करना सही नहीं है। बार-बार आग्रह के बावजूद हंगामा न थमने पर कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में आज एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की व्यापक समस्याएं दर्ज नहीं की गई हैं। मुख्य रूप से आम जनता की टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर चर्चा के माध्यम से इंजन के कार्य निष्पादन, माइलेज और वाहन के घिसाव से संबंधित कुछ चिंताएं जरूर सामने आई हैं। देश भर में E15 मिश्रित पेट्रोल का 3.5 वर्ष से अधिक समय से और E20 ईंधन का 2.5 वर्ष से अधिक समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हितधारकों के साथ परामर्श, क्षेत्र में परीक्षण और मिश्रण वृद्धि के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के माध्यम से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर E20 के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से एक अध्ययन किया गया था। अध्ययनों से कार और दोपहिया वाहनों के इंजनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं पाई गई। इन अध्ययनों से पुष्टि हुई कि E20 ईंधन से चलाने पर पुराने वाहनों के कार्य निष्पादन में भी कोई अधिक बदलाव नहीं आया और न ही उनमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। चालन क्षमता, स्टार्ट करने की क्षमता, धातु अनुकूलता और प्लास्टिक अनुकूलता जैसे मानदंडों में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। E20 ईंधन के उपयोग के कारण वाहन के माइलेज पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार, वाहन विनिर्माताओं और इंजन परीक्षण एजेंसियों ने भी यह स्पष्ट किया है कि वाहन का माइलेज सिर्फ ईंधन के प्रकार से नहीं बल्कि कई अन्य कारकों से प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को चरणबद्ध, सुनियोजित, वैज्ञानिक रूप से मान्य और परामर्श के माध्यम से लागू किया गया है। इसका उपयोग विश्व स्तर पर एक सदी से अधिक समय से हो रहा है और ब्राजील जैसे देश दशकों से उच्च एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने एक लिखित जवाब में कहा कि देश के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन संयुक्त रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड, संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। भारत के गतिशील भूजल संसाधनों के राष्ट्रीय संकलन 2025 के अनुसार कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण का आकलन लगभग 448 बिलियन घन मीटर किया गया। वार्षिक निष्करण योग्य भूजल संसाधन लगभग 407 बिलियन घन मीटर और कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 247 बिलियन घन मीटर आंका गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 और वर्ष 2025 के आकलनों की तुलना से ये ज्ञात होता है कि भूजल संसाधन परिदृश्य में समग्र सुधार हुआ है। सरकार ने अस्थिर भूजल निष्कर्षण की समस्या के समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा समय समय पर भूजल संसाधन का आकलन और भूजल स्तर की मॉनिटरिंग की जाती है। जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप और जल संचय जन भागीदारी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल निकायों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, जल बजटिंग और सामुदायिक नेतृत्व वाले भूजल प्रबंधन जैसे उपायों को भी बढ़ावा दिया जाता है। क्योंकि जल राज्य का विषय है इसलिए ये प्रयास स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। भारत सरकार द्वारा देश के हर जिले में कम से कम 75 जल निकायों के विकास और पुनरुद्धार के लिए मिशन अमृत सरोवर अभियान की शुरुआत की गई थी। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का विकास और पुनरुद्धार किया गया जिससे जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण

सहयोग मिला है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल भृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के चिन्हित मानचित्रण योग्य क्षेत्र को कवर किया गया है और संबंधित राज्य सरकारों के साथ जल भृत प्रबंधन योजनाएं साझा की गई हैं। इसके बाद जल की कमी वाले भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, तटीय और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजोल्यूशन वाली जल भृत जानकारी प्राप्त करने और प्रबंधन कार्यनीतियां तैयार करने के लिए नेक्यूम 2.0 कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने लिखे जवाब में बताया कि मार्च 1994 में भारतीय घरेलू विमानन को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया गया था। एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा निर्देशों के अनुपालन, हवाई अड्डा प्रचालक द्वारा आवंटित स्लॉट और डीजीए से आगे की मंजूरी के साथ किसी भी प्रकार के विमान के साथ क्षमता बढ़ाने और सेवा प्रदान करने तथा प्रचालन हेतु किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए ये एयरलाइन प्रचालक पर निर्भर है कि वो अपने परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर देश के किसी भी हवाई अड्डे से या हवाई अड्डे के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने बताया कि सरकार एक संतुलित, प्रतिस्पर्धी और लचीले नागर विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है ताकि किसी एक एयरलाइन में परिचालन संबंधी व्यवधानों से राष्ट्रीय संपर्क पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक प्राधिकरण है जिसका प्राथमिक लक्ष्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली परिपाटियों को समाप्त करना, प्रभुत्वशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में अन्य पक्षकारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि हवाई किराया सरकार के विनियमन के अधीन नहीं है और प्रत्येक विमान परिवहन उपक्रम को वायुयान नियमों का अनुपालन करते हुए परिचालन की लागत, सेवा की विशेषताओं, युक्तिसंगत लाभ समेत सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार सामान्यतः बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए हवाई किराए को विनियमित नहीं करती है, हालांकि ये सतर्क निगरानी की भूमिका को बनाए रखती है। सरकार केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करती है, जैसे कोविड महामारी के दौरान, महाकुंभ जैसे त्योहारों या पहलगाम की घटना और इंडिगो की उड़ान में व्यवधान जैसी परिस्थितियों के दौरान। इसके अलावा नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अत्यधिक हवाई किराए से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए एयर सेवा प्लेटफॉर्म पर समर्पित एयर फेयर शिकायत मॉड्यूल को विकसित किया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में मॉनसून सत्र के लगातार चौथे दिन आज भी गतिरोध कायम रहा। कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहने के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने आज फिर नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में चर्चा कराने पर अपनी सहमति जताई, जबकि विपक्ष ने कहा कि वो इस विषय पर तभी चर्चा में भाग लेगा जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाएगा। सदन में आज विपक्षी सदस्यों को आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करते देखा गया। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सदन में आज देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले दिनों बारिश सहित विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान गई। उन्होंने कहा कि देश में जून और जुलाई के दौरान विशेष रूप से असम, अरुणाचल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़, वज्रपात तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं

0: कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सभापति ने कहा कि इससे संपत्ति, फसलों और सार्वजनिक ढांचागत सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है। इन क्षेत्रों की वनस्पति और जीव जंतु भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित सरकारें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के कुशल सहयोग से बचाव और राहत के कामों में लगी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि बहुमूल्य जीवन की क्षति और लोगों का घायल होना निश्चित ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सदन शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है तथा घायलों और प्रभावित लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने और उनके पुनर्वास की प्रार्थना करता है। इसके बाद सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षणों का मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को सरकार का पक्ष रखने का अवसर दिया। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इतनी अच्छी पहल की गई है और इसे देखते हुए दोनों सदनों में चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल विरोध प्रदर्शन ही करना चाहता है, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर लीजिए, आप सुनते हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आज आप सुनेंगे मनोहर लाल और साथियों की आवाज में गाए लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप

0: महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
0: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मणप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा

0: जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वें राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा को तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बगैर समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वो खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का यह बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है।
3: एट द लेवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर,
4: प्रधानमंत्री द्वारा इस पर प्रतिक्रिया दी जा चुकी है। आज सुनवाई के लिए अदालती कार्रवाई शुरू करने और परीक्षा की पवित्रता भंग करने वाले लोगों को सजा दिलाने की घोषणा से बहुत पहले ही सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जिन्होंने वास्तव में यह अपराध किया था।
3: एक्चुअली कमिटेड दिस क्राइम।
1: उधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया गया है।
5: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय

0: का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
1: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। इस हंगामे की वजह से आज लोकसभा और राज्यसभा में कोई खास कामकाज नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह भरोसा दिलाए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वे पहले से शर्तें थोप रहे हैं और नीट पेपर लीक मामले पर बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस चर्चा से पीछे नहीं हट रही है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। लोकसभा में भी हालात ऐसे ही रहे। गतिरोध जारी रहने के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार एथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई भी व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा सत्यापन के बाद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंची। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजर डान के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
3: भारत ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित और निर्बाध रहने चाहिए। मनीला में 21वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि नाविकों, नागरिक जहाजों या बुनियादी ढांचे पर हमले किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। श्री जयशंकर ने आसियान की केंद्रीयता, क्षेत्रीय स्थिरता और एक स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। विदेश मंत्री ने आज फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर से मुलाकात की और आसियान की अध्यक्षता के लिए भारत के समर्थन से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत भारत फिलीपींस सहयोग में

0: मजबूती आ रही है। भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते बाजार के अवसर और बेहतर कारोबारी माहौल के चलते यूरोपीय कंपनियां इसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देख रही हैं। यूरोपीय मीडिया नेटवर्क यूरेक्टिव में प्रकाशित एक लेख के अनुसार भारत यूरोप की बढ़ती जरूरतों को पूरा करता है। भारत में तेजी से बढ़ता उपभोक्ता बाजार, बढ़ती घरेलू मांग और विनिर्माण क्षमता विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सबरीमला सोना घोटाला मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष पीएस प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया। पूर्व टीडीबी अध्यक्ष पर यह आरोप है कि उन्होंने सितंबर 2025 में सबरीमला मंदिर से सोने की परत चढ़े पैनलों को मरम्मत के लिए चेन्नई स्थित एक फर्म को स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार वापस लेने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अब से केवल नामित सरकारी अधिकारी ही ये प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर कहा है कि पिछले 99 वर्षों में प्रसारण का विकास रेडियो से टेलीविजन और अब डिजिटल स्ट्रीमिंग तक हुआ है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: आज से 99 साल पहले पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्ट भारत में किया गया, जिसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और ये दिन हमारे लिए एक मौका है उस दिन को याद करने का, स्मरण करने का, और साथ ही साथ प्रसार भारती की तरफ से अपने आप को राष्ट्र के प्रति और हमारे श्रोताओं और दर्शकों के प्रति अपने मेहनत को, अपने एफर्ट्स को दोबारा डेडिकेट करने के।
0: श्री द्विवेदी ने कहा कि प्रसार भारती देश विदेश में दर्शकों के लिए हर तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक और शैक्षिक सामग्री को लाना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स के लगभग 1.1 करोड़ उपयोगकर्ता हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई कस्बे और गांव जलमग्न हैं तथा रेल और सड़क परिवहन भी प्रभावित है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।
2: गुजरात में कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें खास करके दक्षिण और मध्य गुजरात के जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। नवसारी के खेरगाम में आज सुबह से शाम तक 16 इंच से अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि सूरत के उमरपाड़ा में 15 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। बाढ़ की परिस्थिति को देखते हुए उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने नवसारी पहुंचकर शीर्ष अधिकारियों के साथ डिजास्टर कंट्रोल रूम में आपातकालीन तैयारियों की समीक्षा की है। राहत और बचाव युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जहां एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित आश्रय स्थानों में पहुंचा रहे हैं। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अगले दो दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तर पूर्वी भारत में भी अगले कुछ दिनों तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। विभाग के अनुसार कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे और तेलंगाना में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। दिल्ली में कल बादल छाए रह सकते हैं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत आज रात ग्लासगो में होगी। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोगोहोइन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने वाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी

0: इस गेंद ने 50 रन की पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पत्र लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा की। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में गतिरोध जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुखारेस्ट में, रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डेन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। 23वीं राष्ट्रमंडल खेल आज रात ग्लासगो में शुरू होंगे और वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे के विरुद्ध पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत को 7 विकेट से जीत दिलाई। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government invites students protesting over NEET paper leak issue for talks. Prime Minister Narendra Modi announces fast track courts for paper leak cases. Deadlock continues in Parliament over NEET paper leak issue. President Draupadi Murmu to hold delegation level talks with her Romanian counterpart Nicușor Dan in Bucharest tonight. Normal life disrupted as heavy rainfall lashes several parts of Gujarat. Prime Minister Modi assures all possible help. 23rd Commonwealth Games set to begin at Glasgow tonight, and Vaibhav Suryavanshi steers India to 7-wicket victory in first T20 cricket match against Zimbabwe. Union Minister Dr. Jitendra Singh has appealed to the protesting students of the NEET paper leak issue to come for talks, saying government is ready for discussions on all issues. Talking to media, the minister said that in the last 24 hours, as many as 4 offers were made to the student representatives of the ongoing protest for a dialogue. He gave a standing invitation for discussions to the protesting youth, adding that Union Minister J.P. Nadda and he will be present during the dialogue. He also informed that the talks can be held with an open mind at the residence of Union Minister J.P. Nadda or at his office. He added that without a dialogue, a solution will not be found.
2: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं।
3: वी आर ऑलवेज रेडी फॉर डायलॉग। द डोर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ऑलवेज ओपन एंड यू आर वेलकम टू एंगेज इन डिस्कशंस एट एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। वी आर प्रिपेयर्ड टू डिस्कस एवरी इशू इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू द मूवमेंट एज वेल एज एनी अदर मैटर्स ऑफ कंसर्न। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर एंड सीनियर लीडर श्री जेपी नड्डा विल होल्ड डिस्कशंस एंड आई विल ऑल्सो बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द मीटिंग।
2: इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं।
1: अर्लियर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट द सेंटर विल सेट अप फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू एंश्योर स्विफ्ट एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर दोज इन्वॉल्व इन नीट पेपर लीक्स एंड असर्टिंग दैट प्रोटेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्यूचर रिमेन्स द गवर्नमेंट्स टॉप प्रायोरिटी। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ द यूथ ऑफ द कंट्री। His statement comes amid ongoing students' protest at Delhi's Jantar Mantar over NEET paper leak case. The Prime Minister said he has directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this regard. Both the Houses of Parliament have been adjourned for the day following the opposition's protest over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju appealed to the opposition parties, particularly the Congress, to cooperate in holding a discussion on the NEET paper leak issue. He added that the government has already conveyed its willingness to hold a discussion on the issue in both houses as per the date and duration desired by the opposition. Mr. Rijiju appealed to the Congress party not to impose conditions, stating that such conditions may be seen as an attempt to avoid discussion.
4: Today, I appealed on behalf of the entire NDA for a discussion on NEET. After meeting Mr. Kharge and some other opposition leaders, yesterday we were hopeful that a discussion on NEET would take place.

0: against Zimbabwe. And that is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़। लीजिए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: एक गीतकार जिसके गानों के बिना न हमारी सुबह होती है न होती है शाम।
1: ये शाम मस्तानी।
0: एक गीतकार जिसने कुछ गाने खुद भी गाए।
1: दिल इंसान का एक तरह।
0: आनंद बख्शी की यादें बांटेंगे उनके बेटे राकेश आनंद बख्शी।
2: पार्टीशन हुआ ऑगस्ट में, अक्टूबर में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स आर्मी में हैं, तो उनका जो कोड नेम था वो आजाद था।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 28 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आजा तेरी याद आई।
4: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। शैलेंद्र के लिखे गीत को सुरों में ढाला है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है लाखों में एक।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता महमूद पर।
1: आए आए सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, यानी के भाईजान, मालिक अक्ल ला महदूद, यानी के बादशाह महमूद तशरीफ ला रहे। हाय हाय हाय हाय हाय,
2: मां भाग रही थू मैं, काले से डर गए क्या?
3: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें काले हैं तो क्या?

0: గాలా తందానా, ఏ గొర్రె గాలా తందానా, ఏ రేషమి బాలా తందానా, ఏ సోలా సాలా తందానా, ఐ తేరే ఖయాలా తందానా, హమ్ తేరే తేరే తేరే చాహనే వాలే హై, హమ్ కాలే హై తో క్యా హువా దిల్ వాలే హై।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। यह फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई, प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने।

0: वाला चंदन, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं।
1: दोस्तों, महमूद को पहला मौका दिया था गुरदत्त साहब ने सीआईडी फिल्म में। इस फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला। एक छोटी सी भूमिका थी इसमें महमूद की। पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो जाती है, जिसका इल्ज़ाम फिल्म के नायक अर्थात देवानंद पर आता है। ये फिल्म आई थी 1956 में। बेहद कामयाब इस फिल्म के एक साल बाद ही गुरदत्त साहब ने अपनी एक और नायाब फिल्म बनाई प्यासा। इसमें उनके दो स्वार्थी भाइयों में से एक की भूमिका निभाई थी महमूद ने। उनके द्वारा बोला गया डायलॉग लोग आज भी नहीं भूलते।
2: हम भाई भाई नहीं जानते, हमें तो बस रुपया चाहिए, रुपया।
1: दोस्तों, इसी रुपए की बात को लेकर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी, सबसे बड़ा रुपया। दरअसल ये उनके वालिद मुमताज अली पर फिल्माए फिल्म सरगम के एक गीत के मुखड़े से मिलता जुलता टाइटल है।
3: सुनो साहब, ओ भाई सुनो, अपने देश निकले थे हम लेके लुटिया डोरी, कौड़ी कौड़ी जोड़ी बन गए लाला आज करोड़ी, मारो नाम शेष करोड़ी, पास हमारे हत्ती घोड़ा फल्टन फौज सिपहिया, लेकिन ऐसे कैसे बने हम,
4: बोल दो बापू।
3: बोल दे बेटा
4: बाप।

0: रुपया।
1: लड़की के कारण मी पागल झाला, प्रेम का फेंका हमने जो भाला, लड़की ने मेरा पॉकेट संभाला, रुपया पैसा लूट के मेरा उसने निकाला मेरा दिवाला। इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है लोगों को सिखाने के लिए कि रुपया बचाओ, रुपया है तो तख्त है, रुपया है तो ताज है, रुपया है तो माँ है, रुपया है तो बाप है, रुपया है तो बहन है, रुपया है तो भाई है, रुपया है तो मकान है, रुपया है तो दुकान है, और आखिर में अगर रुपया है तो दुनिया है, रुपये के ही नाम का जहूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है।

ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार, जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर, तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

महमूद की वजह से कॉमेडी को इतनी अहमियत मिली कि उन दिनों फिल्म की मेन कहानी के अलावा कॉमेडी की एक पैरेलल कहानी भी हुआ करती थी और जिसके नायक होते थे महमूद।

0: ஆஷா பத்கம்மா பத்கம்மா
1: என் கண்ணா என் கண்ணா
0: பத்கம்மா பத்கம்மா
2: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं।
3: वनकम जी,
1: ओ पहुंच जाइए ना।
3: अयो एक मिनट टाइम ना दे, ये खिड़की बंद करना।
1: क्या है?
3: खिड़की बंद करना जी।
1: क्यों?
3: ये वो बड़ा बड़ा आंख खोल के देखता ना।
1: देखने दो, सुनने दो, जरा इनको भी पता चले कि गाना क्या होता है।
3: अयो पहला बोला ना ऐसा बात, डाई बोला तुम आना गाना गाना आना,
4: तुम नहीं गाना, तुम जाना हम गाना,
3: ये हम जाना तुम गाना, बाप का राज है या बोला, ये हम तेरा गोला बनाना गोला, या ताली दे रहा गाना गाना,
4: चल चल
3: देवी तुम बदाना बदाना
2: दोस्तों, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फिल्म पड़ोसन के डायलॉग थे। फिल्म पड़ोसन का संगीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। संगीतकार थे इसके राहुल देवबर्मन। पहले ये गाना सुन लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे।

लगाए चोटे कर दूंगा। तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्संगिर दक्षिण तत्तज्जम तकजम तकनम तकदम तत्संगिर दक्षिण तत्तज्जरि तदन तज्जनु तदनु तत्तिमि तदिमि तत्तनु तत्तर तरित दन

0: ही है यही, आओ ट्विस्ट करे कपटा मौसम, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही।
1: हास्य अभिनेता के रूप में महमूद ने 70 और 80 के दशक में अपने को किसी स्टार के रूप में ही स्थापित नहीं किया, बल्कि ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो मनोरंजन के लिहाज से बाकमाल हैं। इन फिल्मों में एक हास्य अभिनेता के अंदर छिपा संजीदा कलाकार पूरी शिद्दत के साथ हमें देखने को मिलता है।
2: हमारी बिटिया बच गई, भगवान आपको सुखी रखे बाबू साहब। गरीब को ऐसी खबर सुनाई, ऐसे लगता है जैसे हमको नया जीवन दे दिया।

0: आंखें खोलो बिटिया, देखो हम तो हर सतिया है, देखो बिटिया।
1: क्या?
0: हाँ बिटिया।
1: तुम इतने दिन से कहाँ थे सत्या?
0: अरे बिटिया वो तुम हमारी फिक्र छोड़ो बिटिया, तुम कैसी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
1: तुम आ गए हो, मैं अच्छी हो जाऊंगी।
0: जरूर अच्छी हो जाओगी बिटिया, जरूर अच्छी हो जाओगी। लेकिन बिटिया हमने तुम्हारी मिठाई में जहर नहीं मिलाया।
2: ऐसा कमाल तो सिर्फ महमूद जैसा कलाकार ही कर सकता है दोस्तों, जो एक हास्य कलाकार का लेवल लेकर इंडस्ट्री में हो, लेकिन जब लोगों को रुलाने की ठान ले तो ऐसा रुलाए कि आप रोते रोते भी वाह वाह कर उठे।
0: नहीं साहब, ने बड़े से बड़ी गाली दे ले पर हमको चोर मत कहो। ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। आप रानी बिटिया के पिताजी, गरीब के सामने हाथ फैलाकर हमको मिट्टी में न मिलाओ साहब, न मिलाओ।
3: नहीं रे बेटा, भूल गया वादा, मेरी कसम खाया था ना तू, मतलब मेरा बेटा नहीं।
2: दोस्तों हो गई ना आपकी भी आंखें नम, लेकिन क्या करें हम, महमूद साहब की अदाकारी के हर पहलू पर बात किए बिना ये प्रोग्राम शायद पूरा नहीं होता। हालांकि महमूद साहब के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद भी ये कार्यक्रम पूरा होगा नहीं, क्योंकि महमूद सिर्फ एक कलाकार का नाम नहीं है, महमूद एक पूरी किताब है।

इंटरनेशनल फकीर आए हैं, दिनार नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा।

क्या कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना। अय्यो अय्यो अय्यो अय्यो ओ मेरी मैना तू मान ले मेरा कहना, अरे मुश्किल हो गया रहना तेरे बिना बिना बिना बिना।

0: हर्रा सुहाना होगा।
1: अच्छा
0: हर्रा
2: 29 सितंबर सन 1932 में मुंबई में जन्म लेकर इसी माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री में महमूद ने अपना फिल्मी करियर बनाया। सही अर्थों में महमूद एक हरफन मौला कलाकार थे। उन्हें हम याद करते रहेंगे जब तक कि ये दुनिया है और इस दुनिया में फिल्मी दुनिया का माया जाल है।

0: तो ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर महमूद पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

पेश खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बारिशों का ये भीगता मौसम जाने कितनी ही कसक दिल में जगाता है। रात भीगती है तो भीगते हैं ये रेशमी नजारे, बूंदों में झिलमिलाता वो उनका हुस्न शबाब। अजब हुस्न की कारीगरी है ये उनका शबाब, बंद कलियों में हो जैसे फूलों का इंतखाब।

पास इतना भी न आइए कि सितारे देखते हैं, ये मोती सी चमक, ये पायल की खनक, क्या सोच कर ये रात आई है, ये हुस्न की कारीगरी, ये आँखों की जादूगरी, मोहब्बत के तिलस्म में गिरफ्तार, काश ये सारा जहां होता, कुछ होता न होता, प्यार में ये मुमकिन होता।

दूर कि जी घबराता है, दिल अपना था आपसे लगा बैठे, राज दिल आपसे सुना बैठे, कुछ आपने भी छुपाया है, कहिए न कहिए, कलियों के दिल को धड़काया है आपने, कहिए कि न कहिए, जाने बातों से बहलाते क्यों हैं, सच कहते नहीं कि हाँ हमने भी मोहब्बत की है, रात हमने भी तन्हाइयों में बसर की है।

शोलों से न खेलिए, ये नाजुकी की बात नहीं, जो इसको छेड़ा तो बारहा मचल जाएगी। पास आइए न फेरिए ये नजरें करम, दिल आपका है यकीन मानिए कि न मानिए। न देखो इधर ऐ शब के तारों, जरा छुप जाओ, चिराग हुस्न से आ रही है रोशनी थम थम।

भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। बादलों से बरसते बूंदों के मोती जा अटके हैं उनकी जुल्फों में, भीगते शानों पे कभी ढलते कभी आंचल में सिमट जाते हैं। ये बूंदों की खुशनसीबी कुछ ठहरी कुछ ढल गई कुछ टूट कर

काश ये रात थम जाए, बादलों से बूंदों का आशियां लरस जाए, इश्क हुस्न के दरमियां न रहे आज कोई फासला, पर्वतों से टूट के देखो काली घटा बरसती है, न पूछिए हमसे कि बारिशों से भी आग बरसती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी
1: जी विषय पर अपनी बात।
2: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।

0: उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना समाधान नहीं निकलेगा। श्री सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और वे खुद बातचीत के दौरान उपस्थित रहेंगे।
1: सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं, सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहे, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे, उनके हमराह उनके संग मैं भी रहूंगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार छात्रों की चिंताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में। सुश्री सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फास्ट ट्रैक अदालतों की घोषणा का उद्देश्य छात्रों और उनके परिवारों को आश्वस्त करना है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट पेपर लीक मामले के आरोपियों को त्वरित अदालतों के माध्यम से कड़ी सजा दी जाएगी। संसद परिसर में श्री गोयल ने विपक्षी दलों से चर्चा के माध्यम से इस मामले को हल करने का आग्रह किया।
2: हमारा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से अनुरोध है कि विषय का राजनीतिकरण ना करें। विपक्ष जो राजनीतिकरण कर रहे हैं इसकी घोर निंदा करते हैं। सबसे अनुरोध है शांति बनाए रखें और साथ ही साथ चर्चा के माध्यम से विषय के समाधान में हम सब मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मुझे उम्मीद है कि राहुल गांधी और उनके विपक्ष के मित्र युवा युवतियों की चिंता करेंगे।
0: संसद के दोनों सदनों में नीट पेपर लीक मामले और छात्र विरोध प्रदर्शनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार ने कहा है कि भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी से प्राप्त जानकारी के अनुसार इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन फेल होने या वाहन खराब होने की कोई व्यापक समस्या सामने नहीं आई है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने हितधारकों से परामर्श, फील्ड ट्रायल और मिश्रण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा स्थापन के बाद इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को शुरू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज तीन देशों की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में रोमानिया की बुखारेस्ट पहुंची। केटरोसिनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन ने राष्ट्रपति भवन में उनका स्वागत किया। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हो रहा है। इसमें 74 देशों के करीब 3000 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता के 10 खेलों में खिलाड़ी 215 स्वर्ण पदक जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ही ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। लवलीना ने बाय के माध्यम से सीधे सेमीफाइनल में जगह बना ली है। जिम्बाब्वे के हरारे में पहले 2020 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया है। जिम्बाब्वे के 126 रन के लक्ष्य को भारत ने 40 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंद में 50 रन की पारी खेली। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मयंक यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। गुजरात में तेज बारिश से कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई कस्बे और गांव जलमग्न है तथा रेल और सड़क परिवहन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति की समीक्षा की और केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर रात के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात के 11:05 हुए हैं। हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।